0: You're listening to Bradford Asian Radio.
1: 1413 AM and online. You're listening to Bradford Asian Radio. 1413 AM and online.
2: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
3: And the winner is...
4: And the winner is...
5: And the winner is...
3: Your business being heard on the radio.
6: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
7: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक, आटा चावल दालें मसाला जात, रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड ब्रेडफोर्ड BD88JL। बुखारी पसंद आपकी और हमारी बुखारी। दुल्हन वो जो पिया मन भाए,
8: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
7: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां कंगन कांटे,
8: बालियां अंगूठियां और हार,
7: जो दुल्हन करे सिंगार,
8: आज ही मामू काके की दुकान,
7: खालिस सोने की पहचान,
8: पाकिस्तान ज्वेलर्स से शरीफ लाइए
7: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
8: आपकी शान
7: हमारी आन,
8: क्वालिटी की पहचान।
7: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Dufferin Lane, ब्रेडफोर्ड, BD95ER, 01274 491 442।
8: पाकिस्तान ज्वेलर्स। अरे बेटी की शादी करीब आ रही है, समझ नहीं आ रही कि जेवर कहाँ से लूँ।
9: अरे भोली, तुम्हें नहीं पता कि सोफी बहन ने ऑकलैंड पर सोफी ज्वेलर्स के नाम से गोल्ड जेवरात की दुकान खोल दी है।
8: सोफी ज्वेलर्स?
9: सोफी नहीं, सोफी, नित नए डिजाइन के जेवरात, जिनकी क्या है बात, इंश्योरेंस और वैल्यूएशन का भी इंतजाम, लेडी स्टाफ।
8: सोफी ज्वेलर्स, 121 Oak Lane, BD94QU, 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
10: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
11: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
10: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
11: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
12: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।
1: You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
2: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
13: You're listening to
14: Bradford Asian Radio on 1413 AM.

0: listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
1: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
2: You're listening to Bradford Asian Radio,
0: 1413 AM and online.
3: You're listening to
4: Bradford Asian Radio on 1413 AM.
5: And the winner is...
6: Your business being heard on the radio.
7: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
8: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिलनवाज,
9: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
8: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
9: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
10: ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो।
11: आओ असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चले।
12: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं।
11: अरे पगली, अब दुबई ब्रैडफोर्ड में ही आ गई। जी हाँ, दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है।
12: झिलमिल करते कांटे, बालियां, कंगन, गले के हार 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार।
11: टॉप क्वालिटी, बेहतरीन सर्विस, ओपन 7 डेज।
12: 30 वेटले हिल, ब्रैडफोर्ड, BD8 8NG, फोन 01274 477 2577। दुबई ज्वेलर्स,
11: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका। पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक। आटा, चावल, दालें, मसाला जात, रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे। फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की खुआरी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर, नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड, ब्रैडफोर्ड, BD8 8JL। बुखारी, पसंद आपकी और हमारी बुखारी।
13: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
12: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रैडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
11: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रैडफोर्ड, BD8 8DR, टेलीफोन 07885 428 349, अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड रोड, ब्रैडफोर्ड।

0: Master Jewelers, 93 Hotham Grange Road, Bradford 7414760।
1: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
2: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
1: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग्स, BD3 ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
3: क्या आपकी आवाज़ खूबसूरत है? क्या आप में बोलने की जरूरत है? अगर ऐसी ही सूरत है तो ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो को आपकी जरूरत है। आज ही स्टूडियो नंबर 01274306677 पर कॉल कीजिए और अपनी आवाज सुनने वालों के दिलों तक पहुंचाइए और खुद को रेडियो स्टार बनाइए। याद रखिए, अगर आपको बड़ी बड़ी छोड़ने की आदत है तो ये आपके कल के बड़ा ब्रॉडकास्टर बनने की जमानत है। आज ही स्टूडियो नंबर 01274306677 पर कॉल कीजिए। एशियन रेडियो
4: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
5: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
4: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
5: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
6: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।
7: You're listening to Bradford Asian Radio,
8: 1413 AM and online.
9: You're listening to
10: Bradford Asian Radio on 1413 AM.

0: You're listening to Bradford Asian Radio,
1: 1413 AM and online. You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
2: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
3: And the winner is...
4: And the winner is...
5: And the winner is...
3: Your business being heard on the radio.
6: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
7: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक, आटा चावल दालें मसाला जात, रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की खुआरी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड ब्रेडफोर्ड BD88JL। बुखारी, पसंद आपकी और हमारी बुखारी। दुल्हन वो जो पिया मन भाए,
8: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
7: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां कंगन कांटे,
8: बालियां अंगूठियां और हार,
7: जो दुल्हन करे सिंगार,
8: आज ही मामू काके की दुकान,
7: खालिस सोने की पहचान,
8: पाकिस्तान ज्वेलर्स से शरीफ लाइए
7: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
8: आपकी शान
7: हमारी आन,
8: क्वालिटी की पहचान।
7: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 डुफर्ट लेन ब्रेडफोर्ड, BD95ER, 01274 491 442।
8: पाकिस्तान ज्वेलर्स। अरे बेटी की शादी करीब आ रही है, समझ नहीं आ रही कि जेवर कहाँ से लूँ।
9: अरे भोली, तुम्हें नहीं पता कि सोफी बहन ने ऑकलैंड पर सोफी ज्वेलर्स के नाम से गोल्ड जेवरात की दुकान खोल दी है।
8: सोफी ज्वेलर्स?
9: सोफी नहीं, सोफी, नित नए डिजाइन के जेवरात, जिनकी क्या है बात, इंश्योरेंस और वैल्यूएशन का भी इंतजाम, लेडी स्टाफ।
8: सोफी ज्वेलर्स, 121 ऑकलैंड, BD94QU, 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
10: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers, or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274-201-679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.
7: अरे ये पूरे ब्रेडफोर्ड में क्या है शोर?
11: आपको नहीं पता, ऑफर्स इन मेनी गो स्टोर, रोजाना ताजा सब्जियां, फल फ्रूट, सलाद, मीट, चिकन, आटा, दाल, चावल और मसाला, क्वालिटी में सबसे आला और सर्विस में सबसे बाला।
7: हर सम्त मचा है जिसका शोर, वो है मैनिंगम सुपर स्टोर। मैनिंगम सुपर स्टोर, कार्लाइल रोड ब्रेडफोर्ड, BD88AX, फोन ब्रेडफोर्ड 4955555। हफ्ते के सातों दिन आपकी खिदमत में पेश, मैनिंगम सुपर स्टोर।
11: मैनिंगम सुपर स्टोर,
12: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
7: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
12: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
7: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
13: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।
1: You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
2: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
3: You're listening to
14: Bradford Asian Radio on 1413 AM.
3: You're listening to
14: Bradford Asian Radio on 1413 AM.

0: अजान का वक्त हुआ चाहता है इस अजान के लिए हमें तावन हासिल है कूपर हॉल सिलिस्टर्स लिस्टर हिल्स साइंस पार्क कैंपस रोड ब्रेडफोर्ड BD71HR
1: अजान दे गई हजरत बिलाल की हस्ती अजान दे गई हजरत बिलाल की हस्ती नमाज पढ़ गए दुनिया में करबला वाले सामीन ब्रेडफोर्ड और इसके मुजाफात में अजान का वक्त हुआ चाहता है।

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
1: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
2: You're listening to Bradford Asian Radio,
0: 1413 AM and online.
3: You're listening to
4: Bradford Asian Radio on 1413 AM.
5: And the winner is...
6: Your business being heard on the radio.
7: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
8: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिलनवाज,
9: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
8: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
9: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
10: ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो।
11: आओ असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चले।
12: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं।
11: अरे पगली, अब दुबई ब्रैडफोर्ड में ही आ गई। जी हाँ, दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है।
12: झिलमिल करते कांटे, बालियां, कंगन, गले के हार 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार।
11: टॉप क्वालिटी, बेहतरीन सर्विस, ओपन 7 डेज।
12: 30 वेटले हिल ब्रैडफोर्ड, BD8 8NG, फोन 01274477257।
11: दुबई ज्वेलर्स, व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका। पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक। आटा, चावल, दालें, मसाला जात, रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे। फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की खुआरी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर, नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड, ब्रैडफोर्ड, BD8 8JL। बुखारी, पसंद आपकी और हमारी बुखारी।
13: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
12: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रैडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
11: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रैडफोर्ड, BD8 8DR। टेलीफोन 07885 428349। अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड्स रोड, ब्रैडफोर्ड 3।

0: Master Jewelers, 93 Hawson Grange Road, Bradford 7, 01274-414-760.
1: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
2: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
1: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग्स, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
3: Do you know there are 170,000 new cases of cancer each year in Pakistan? Do you know that Imran Khan Cancer Appeal provides free cancer treatment to...
4: Breakfast Asian Radio on 1413 AM.

0: You're listening to
1: Bradford Asian Radio on 1413 AM.

0: سيئاته يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار.
1: You're listening to Bradford Asian Radio
2: 1413 AM and online. You're listening to Bradford Asian Radio 1413 AM and online.
3: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
4: And the winner is...
5: And the winner is...
6: And the winner is...
4: Your business being heard on the radio.
7: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
8: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेश खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक, आटा चावल दालें मसाला जात, रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की खुआरी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड ब्रैडफोर्ड BD88JL। बुखारी पसंद आपकी और हमारी बुखारी। दुल्हन वो जो पिया मन भाए,
9: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
8: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां कंगन कांटे,
9: बालियां अंगूठियां और हार,
8: जो दुल्हन करे सिंगार,
9: आज ही मामू काके की दुकान,
8: खालिस सोने की पहचान,
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स से शरीफ लाइए
8: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
9: आपकी शान
8: हमारी आन,
9: क्वालिटी की पहचान।
8: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Duckworth Lane ब्रैडफोर्ड, BD95ER 01274 491 442।
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स। अरे बेटी की शादी करीब आ रही है, समझ नहीं आ रही कि जेवर कहाँ से लूँ।
10: अरे भोली, तुम्हें नहीं पता कि सोफी बहन ने ऑकलेन पर सोफी ज्वेलर्स के नाम से गोल्ड जेवरात की दुकान खोल दी है।
9: सोफी ज्वेलर्स?
10: सोफी नहीं, सोफी, नित नए डिजाइन के जेवरात, जिनकी क्या है बात, इंश्योरेंस और वैल्यूएशन का भी इंतजाम, लेडी स्टाफ।
9: सोफी ज्वेलर्स, 121 ऑकलेन, BD94QU 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
8: ब्रैडफोर्ड में फर्नीचर का सबसे खूबसूरत शोरूम लव फर्नीचर।
11: फर्नीचर तो आप घर घर देखते हैं, मगर जो देखते ही पसंद आ जाए वो है लव फर्नीचर, जहाँ पर ऑर्थोपेडिक डबल बेड सिर्फ 100 pounds से, जर्मन वार्डरोब, डाइनिंग टेबल, कॉफी टेबल, रग्स, कारपेट, मैट्रेसेस की वसी वैरायटी।
12: ओपन 7 days, 10 till 6, फ्री डिलीवरी ऑल ओवर वेस्ट यॉर्कशायर। लव फर्नीचर, कार्लाइल रोड, ब्रैडफोर्ड, अपोजिट बार्कलेज बैंक, पॉन्ड ब्रैडफोर्ड, 9627222, 9627222।
11: लव फर्नीचर, फर्नीचर यू लव।
13: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
14: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
13: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
14: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
15: ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो।
2: You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
3: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
4: You're listening to
16: Bradford Asian Radio on 1413 AM.
17: Zameen meri nahi hoti.
4: You're listening to
16: Bradford Asian Radio on 1413 AM.

ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولات الأحمال

0: You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
1: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
2: You're listening to Bradford Asian Radio,
0: 1413 AM and online.
3: You're listening to
4: Bradford Asian Radio on 1413 AM.
3: And the winner is...
5: And the winner is...
6: And the winner is...
3: Your business being heard on the radio.
7: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
8: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिलनवाज
9: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज
8: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज
9: हर वक्त आपके संग आपका दम साज
10: ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो मीडियम वेव 1413 AM ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो
11: आओ असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चले
12: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं
11: अरे पगली अब दुबई ब्रैडफोर्ड में ही आ गई जी हाँ दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है
12: झिलमिल करते कांटे बालियां कंगन गले के हार 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार
11: टॉप क्वालिटी बेहतरीन सर्विस ओपन 7 डेज
12: 30 वेटले हिल ब्रैडफोर्ड BD8 8NG फोन 01274477257
11: दुबई ज्वेलर्स व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक आटा चावल दालें मसाला जात रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट हलाल गोश्त और चूजे फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले बचिए इधर उधर की ख्वारी से शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक व्हाइट एबी रोड ब्रैडफोर्ड BD8 8JL बुखारी पसंद आपकी और हमारी बुखारी
13: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है
12: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा मिलान की शेरवानी शलवार कमीज वेस्ट कोट प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं मर्दाना मलबूसात का ब्रैडफोर्ड का मुनफरिद मरकज जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे
11: मिलान दुल्हा हाउस 8183 व्हाइट एबे रोड ब्रैडफोर्ड BD8 8DR टेलीफोन 07885 428349 अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम 1304

0: Master Jewelers, 93 Hotham Grange Road, Bradford 7414760.
1: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
2: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
1: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग्स, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078। शादी आ गई है सर पर और कोई फोटोग्राफर नहीं है घर पर।
2: लगता है आपने AsianWeddingsUK.com का नाम नहीं सुना, जो आपकी शादी के चलते फिरते हसीन लम्हात हमेशा के लिए फोटोज और वीडियोस के जरिए महफूज करते हैं और फिल्म ऐसी बनाते हैं दूल्हा दुल्हन जैसी चाहते हैं।
1: डिजिटल क्वालिटी, तेज और दोस्ताना सर्विस, मेल और फीमेल फोटोग्राफर्स,
2: जिंदगी के यादगार दिन को यादगार तरीन बनवाइए।
1: आज ही मुबीन का नंबर मिलाइए
2: 07548419678।
1: AsianWeddingsUK.com, जिनकी आम सी फिल्म भी बॉलीवुड से नहीं है कम।
3: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
4: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
3: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
4: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
5: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।
6: You're listening to Bradford Asian Radio,
7: 1413 AM and online.
8: You're listening to
9: Bradford Asian Radio on 1413 AM.

0: listening to Bradford Asian Radio.
1: 1413 AM and online. You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
2: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
3: And the winner is...
4: And the winner is...
5: And the winner is...
3: Your business being heard on the radio.
6: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
7: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक, आटा चावल दालें मसाला जात, रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड ब्रेडफोर्ड BD88JL। बुखारी पसंद आपकी और हमारी बुखारी।
8: दुल्हन वो जो पिया मन भाई,
9: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
8: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां कंगन कांटे,
9: बालियां अंगूठियां और हार,
8: जो दुल्हन करे सिंगार,
9: आज ही मामू काके की दुकान,
8: खालिस सोने की पहचान,
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स से शरीफ लाइए
8: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
9: आपकी शान
8: हमारी आन,
9: क्वालिटी की पहचान।
8: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Duckworth Lane ब्रेडफोर्ड, BD95ER 01274 491 442।
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स। अरे बेटी की शादी करीब आ रही है, समझ नहीं आ रही कि जेवर कहाँ से लूँ।
10: अरे भोली, तुम्हें नहीं पता कि सोफी बहन ने ऑकलैंड पर सोफी ज्वेलर्स के नाम से गोल्ड जेवरात की दुकान खोल दी है।
9: सोफी ज्वेलर्स?
10: सोफी नहीं, सोफी, नित नए डिजाइन के जेवरात, जिनकी क्या है बात, इंश्योरेंस और वैल्यूएशन का भी इंतजाम, लेडी स्टाफ।
9: सोफी ज्वेलर्स, 121 ऑकलैंड, BD94QU 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
11: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274 201679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.
12: Are you looking for nursery and after-school childcare in Bradford? Established in 2012, Raising Explorers provides outstanding childcare and education for children aged 0 to 16 years, all under one roof. From full-day nursery care for babies and young children to after-school pickups, homework support and exciting holiday clubs, language classes, madrasa services, with locations in Manningham, Lister Hill Science Park, Thornbury and Hare Hills Leeds, Raising Explorers. Visit www.raisingexplorers.co.uk.
13: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
14: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
13: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
14: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
15: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।
1: You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
2: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
3: You're listening to
16: Bradford Asian Radio on 1413 AM.
17: Parwana ek patanga, jugnu bhi ek patanga, wo roshni ka talib, ye roshni sarapa.

0: You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
1: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
2: You're listening to Bradford Asian Radio,
0: 1413 AM and online.
3: You're listening to
4: Bradford Asian Radio on 1413 AM.
5: And the winner is...
6: Your business being heard on the radio.
7: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
8: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिलनवाज,
9: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
8: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
9: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
10: ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो।
11: आओ असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चले।
12: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं।
11: अरे पगली, अब दुबई ब्रैडफोर्ड में ही आ गई। जी हाँ, दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है।
12: झिलमिल करते कांटे बालियां कंगन गले के हार 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार।
11: टॉप क्वालिटी, बेहतरीन सर्विस, ओपन 7 डेज।
12: 30 वेटले हिल ब्रैडफोर्ड, BD8 8NG, फोन 01274 477 257।
11: दुबई ज्वेलर्स, व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका। पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक। आटा, चावल, दालें, मसाला जात, रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे। फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की खुआरी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर, नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड, ब्रैडफोर्ड, BD8 8JL। बुखारी, पसंद आपकी और हमारी बुखारी।
13: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
12: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रैडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
11: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रैडफोर्ड, BD8 8DR। टेलीफोन 07885 428 349। अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड्स रोड, ब्रैडफोर्ड 3।

0: Master Jewelers, 93 Horton Grange Road, Bradford, Severn, 01274-414-760.
1: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
2: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
1: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3 ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
3: हिसाबे उम्र का इतना सा गोशवारा है, तुम्हें निकाल के देखा तो सब खसारा है। महमूद रिजवी अकाउंटेंट्स, जी हाँ, छोटे से छोटे टैक्सी अकाउंट से लेकर बड़ी से बड़ी कंपनी के अकाउंट्स बनवाने के लिए काबिल एतमाद नाम महमूद रिजवी अकाउंटेंट्स। ऑडिट एंड अकाउंटेंसी, टैक्सेशन, VAT, बुककीपिंग, पेरोल, फंडरेजिंग, कंपनी फॉर्मेशन, मॉर्गेजेस। अकाउंट्स के किसी भी मसले के लिए ना हो परेशान, क्योंकि आपकी मुश्किल करेंगे आसान महमूद रिजवी चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट्स। महमूद रिजवी, ग्रेट हॉटन रोड, ऑन ब्रैडफोर्ड, 424453। महमूद रिजवी,
4: आपकी दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
5: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
4: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
5: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
6: ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो।
7: यू आर लिस्निंग टू ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो
8: 1413 AM एंड ऑनलाइन।
9: यू आर लिस्निंग टू
10: Bradford Asian Radio on 1413 AM.

0: You're listening to Bradford Asian Radio.
1: 1413 AM and online. You're listening to Bradford Asian Radio. 1413 AM and online.
2: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
3: And the winner is...
4: And the winner is...
5: And the winner is...
3: Your business being heard on the radio.
6: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
7: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेश है खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक, आटा चावल दालें मसाला जात, रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की खुआरी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड, ब्रेडफोर्ड, BD88JL। बुखारी पसंद आपकी और हमारी बुखारी। दुल्हन वो जो पिया मन भाए,
8: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
7: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां कंगन कांटे,
8: बालियां अंगूठियां और हार,
7: जो दुल्हन करे सिंगार,
8: आज ही मामू काके की दुकान,
7: खालिस सोने की पहचान,
8: पाकिस्तान ज्वेलर्स से शरीफ लाइए
7: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
8: आपकी शान
7: हमारी आन,
8: क्वालिटी की पहचान।
7: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Duckworth Lane, ब्रेडफोर्ड, BD95ER, 01274491442।
8: पाकिस्तान ज्वेलर्स। अरे बेटी की शादी करीब आ रही है, समझ नहीं आ रही कि जेवर कहाँ से लूँ।
9: अरे भोली, तुम्हें नहीं पता कि सोफी बहन ने ऑकलैंड पर सोफी ज्वेलर्स के नाम से गोल्ड जेवरात की दुकान खोल दी है।
8: सोफी ज्वेलर्स?
9: सोफी नहीं, सोफी, नित नए डिजाइन के जेवरात, जिनकी क्या है बात, इंश्योरेंस और वैल्यूएशन का भी इंतजाम, लेडी स्टाफ।
8: सोफी ज्वेलर्स, 121 ऑकलैंड, BD94QU, 01274056014। सोफी ज्वेलर्स,
10: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
11: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
10: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
11: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
12: ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो।
1: You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
2: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
3: You're listening to
13: Bradford Asian Radio on 1413 AM.
14: Marhaba ya Mustafa, marhaba ya.

0: You're listening to Bradford Asian Radio on 1413 AM.
1: रगों में वो लहू बाकी नहीं है, वो दिल वो आरज़ू बाकी नहीं है, नमाज़ रोज़ा कुर्बानी हज ये सब बाकी हैं, तू बाकी नहीं है।

0: listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
1: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
2: You're listening to Bradford Asian Radio,
0: 1413 AM and online.
3: You're listening to
4: Bradford Asian Radio on 1413 AM.
5: And the winner is...
6: Your business being heard on the radio.
7: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
8: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिलनवाज,
9: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
8: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
9: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
10: ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो।
11: आओ असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चले।
12: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं।
11: अरे पगली, अब दुबई ब्रैडफोर्ड में ही आ गई। जी हाँ, दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है।
12: झिलमिल करते कांटे, बालियां, कंगन, गले के हार 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार।
11: टॉप क्वालिटी, बेहतरीन सर्विस, ओपन 7 डेज।
12: 30 वेटले हिल, ब्रैडफोर्ड, BD8 8NG, फोन 01274 477 2577।
11: दुबई ज्वेलर्स, व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका। पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ शोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक। आटा, चावल, दालें, मसाला जात, रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर, नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड, ब्रैडफोर्ड, BD8 8JL। बुखारी, पसंद आपकी और हमारी बुखारी।
13: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
12: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रैडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
11: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रैडफोर्ड, BD8 8DR, टेलीफोन 07885 428 349, अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड्स रोड।

0: Master Jewelers, 93 Hotham Grange Road, Bradford 7414760।
1: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
2: तुम्हें पता है भाभी ने बॉबीज कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
1: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो, और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग्स, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
3: क्या आपकी आवाज़ खूबसूरत है? क्या आप में बोलने की जरूरत है? अगर ऐसी ही सूरत है तो ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो को आपकी जरूरत है। आज ही स्टूडियो नंबर 01274306677 पर कॉल कीजिए और अपनी आवाज सुनने वालों के दिलों तक पहुंचाइए और खुद को रेडियो स्टार बनाइए। याद रखिए, अगर आपको बड़ी बड़ी छोड़ने की आदत है तो ये आपके कल के बड़ा ब्रॉडकास्टर बनने की जमानत है। आज ही स्टूडियो नंबर 01274306677 पर कॉल कीजिए। एशियन रेडियो
4: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
5: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
4: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
5: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
6: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।
7: You're listening to Bradford Asian Radio,
8: 1413 AM and online.
9: You're listening to Bradford Asian Radio on 1413 AM.

You're listening to Breakfast Asian Radio on 1413 AM.

0: You're listening to Bradford Asian Radio.
1: 1413 AM and online. You're listening to Bradford Asian Radio. 1413 AM and online.
2: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
3: And the winner is...
4: And the winner is...
5: And the winner is...
3: Your business being heard on the radio.
6: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
7: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेश खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक, आटा चावल दालें मसाला जात, रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की खुआरी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड ब्रेडफोर्ड BD88JL। बुखारी पसंद आपकी और हमारी बुखारी। दुल्हन वो जो पिया मन भाए,
8: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
7: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां कंगन कांटे,
8: बालियां अंगूठियां और हार,
7: जो दुल्हन करे सिंगार,
8: आज ही मामू काकी की दुकान,
7: खालिस सोने की पहचान,
8: पाकिस्तान ज्वेलर्स से शरीफ लाइए
7: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
8: आपकी शान
7: हमारी आन,
8: क्वालिटी की पहचान।
7: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Dufferin Lane ब्रेडफोर्ड, BD95ER 01274 491 442।
8: पाकिस्तान ज्वेलर्स। अरे बेटी की शादी करीब आ रही है, समझ नहीं आ रही कि जेवर कहाँ से लूँ।
9: अरे भोली, तुम्हें नहीं पता कि सोफी बहन ने ऑकलैंड पर सोफी ज्वेलर्स के नाम से गोल्ड जेवरात की दुकान खोल दी है।
8: सोफी ज्वेलर्स?
9: सोफी नहीं, सोफी, नित नए डिजाइन के जेवरात, जिनकी क्या है बात, इंश्योरेंस और वैल्यूएशन का भी इंतजाम, लेडी स्टाफ।
8: सोफी ज्वेलर्स, 121 Oak Lane, BD94QU 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
10: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers, or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274-201-679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.
7: अरे ये पूरे ब्रेडफोर्ड में क्या है शोर?
11: आपको नहीं पता, ऑफर्स इन मेनिंगम स्टोर, रोजाना ताजा सब्जियां, फल फ्रूट, सलाद, मीट, चिकन, आटा, दाल, चावल और मसाला, क्वालिटी में सबसे आला और सर्विस में सबसे बाला।
7: हर सम्त मचा है जिसका शोर, वो है मेनिंगम सुपर स्टोर। मेनिंगम सुपर स्टोर, कार्लाइल रोड ब्रेडफोर्ड, BD88AX, फोन ब्रेडफोर्ड 4955555। हफ्ते के सातों दिन आपकी खिदमत में पेश, मेनिंगम सुपर स्टोर।
11: मेनिंगम सुपर स्टोर,
12: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
7: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
12: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
7: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
1: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो। You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
2: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
3: You're listening to
13: Bradford Asian Radio on 1413 AM.
14: Bismillahir Rahmanir Rahim.

0: You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
1: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
2: You're listening to Bradford Asian Radio,
0: 1413 AM and online.
3: You're listening to
4: Bradford Asian Radio on 1413 AM.
3: And the winner is...
5: And the winner is...
6: And the winner is...
3: Your business being heard on the radio.
7: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
8: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिलनवाज
9: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज
8: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज
9: हर वक्त आपके संग आपका दम साज
10: ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो मीडियम वेव 1413 AM ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो
11: आओ असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चले
12: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं
11: अरे पगली अब दुबई ब्रैडफोर्ड में ही आ गई जी हाँ दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है
12: झिलमिल करते कांटे बालियां कंगन गले के हार 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार
11: टॉप क्वालिटी बेहतरीन सर्विस ओपन 7 डेज
12: 30 वेटली हिल ब्रैडफोर्ड BD8 8NG फोन 01274477257
11: दुबई ज्वेलर्स व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक आटा चावल दालें मसाला जात रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट हलाल गोश्त और चूजे फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले बचिए इधर उधर की ख्वारी से शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक व्हाइट एबी रोड ब्रैडफोर्ड BD8 8JL बुखारी पसंद आपकी और हमारी बुखारी
13: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है
12: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा मिलान की शेरवानी शलवार कमीज वेस्ट कोट प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं मर्दाना मलबूसात का ब्रैडफोर्ड का मुनफरिद मरकज जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे
11: मिलान दुल्हा हाउस 8183 व्हाइट एबे रोड ब्रैडफोर्ड BD8 8DR टेलीफोन 07885 428349 अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम 1304 लीड्स रोड ब्रैडफोर्ड

0: Master Jewelers, 93 Hawson Grange Road, Bradford 7, 01274-414-760.
1: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
2: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
1: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डाइट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग्स, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
3: Do you know there are 170,000 new cases of cancer each year in Pakistan? Do you know that Imran Khan Cancer Appeal provides free cancer treatment to 75?

0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो,
0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: You're listening to Bradford Asian Radio,
1: 1413 AM and online. You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
2: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
3: And the winner is...
4: And the winner is...
5: And the winner is...
3: Your business being heard on the radio.
6: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
7: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक, आटा चावल दालें मसाला जात, रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की खुआरी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड ब्रेडफोर्ड BD88JL। बुखारी पसंद आपकी और हमारी बुखारी। दुल्हन वो जो पिया मन भाई,
8: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
7: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां कंगन कांटे,
8: बालियां अंगूठियां और हार,
7: जो दुल्हन करे सिंगार,
8: आज ही मामू काके की दुकान,
7: खालिस सोने की पहचान,
8: पाकिस्तान ज्वेलर्स से शरीफ लाइए
7: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
8: आपकी शान
7: हमारी आन,
8: क्वालिटी की पहचान।
7: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 डुकफर्ट लेन ब्रेडफोर्ड, BD95ER 01274491442।
8: पाकिस्तान ज्वेलर्स। अरे बेटी की शादी करीब आ रही है, समझ नहीं आ रही कि जेवर कहाँ से लूँ।
9: अरे भोली, तुम्हें नहीं पता कि सोफी बहन ने ऑकलेन पर सोफी ज्वेलर्स के नाम से गोल्ड जेवरात की दुकान खोल दी है।
8: सोफी ज्वेलर्स?
9: सोफी नहीं, सोफी, नित नए डिजाइन के जेवरात, जिनकी क्या है बात, इंश्योरेंस और वैल्यूएशन का भी इंतजाम, लेडी स्टाफ।
8: सोफी ज्वेलर्स, 121 ऑकलेन, BD94QU 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
7: ब्रेडफोर्ड में फर्नीचर का सबसे खूबसूरत शोरूम लव फर्नीचर।
10: फर्नीचर तो आप घर घर देखते हैं, मगर जो देखते ही पसंद आ जाए वो है लव फर्नीचर, जहाँ पर ऑर्थोपेडिक डबल बेड सिर्फ 100 pounds से, जर्मन वार्डरोब, डाइनिंग टेबल, कॉफी टेबल, रग्स, कारपेट, मैट्रेसेस की वसी वैरायटी।
11: ओपन 7 days, 10 till 6, फ्री डिलीवरी ऑल ओवर वेस्ट यॉर्कशायर। लव फर्नीचर, कार्लाइल रोड ब्रेडफोर्ड, अपोजिट बार्कलेज बैंक, पॉन्ड ब्रेडफोर्ड, 9627229622।
10: लव फर्नीचर, फर्नीचर यू लव।
12: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
13: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
12: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
13: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
14: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।
1: You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
2: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
12: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
13: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
12: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
13: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
14: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।
12: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
13: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
12: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
13: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
14: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो,
0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
1: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
2: You're listening to Bradford Asian Radio,
0: 1413 AM and online.
3: You're listening to
4: Bradford Asian Radio on 1413 AM.
3: And the winner is...
5: And the winner is...
6: And the winner is...
3: Your business being heard on the radio.
7: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
8: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
9: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
8: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
9: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
10: ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो।
11: आओ, असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चले।
12: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं।
11: अरे पगली, अब दुबई ब्रैडफोर्ड में ही आ गई। जी हाँ, दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है।
12: झिलमिल करते कांटे, बालियां, कंगन, गले के हार 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार।
11: टॉप क्वालिटी, बेहतरीन सर्विस, ओपन 7 डेज।
12: 30 वेटले हिल ब्रैडफोर्ड, BD8 8NG, फोन 01274477257। दुबई ज्वेलर्स।
11: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ शोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक, आटा चावल दालें मसाला जात, रोजाना ताज़ा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर, नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड, ब्रैडफोर्ड, BD8 8JL। बुखारी, पसंद आपकी और हमारी बुखारी।
13: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
12: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रैडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
11: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रैडफोर्ड, BD8 8DR, टेलीफोन 07885 428349, अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड्स रोड, ब्रैडफोर्ड 3।

0: Master Jewelers, 93 Hotham Grange Road, Bradford 7414760।
1: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
2: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
1: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो, और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3 ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
3: शादी आ गई है सर पर और कोई फोटोग्राफर नहीं है घर पर।
4: लगता है आपने AsianWeddingsUK.com का नाम नहीं सुना, जो आपकी शादी के चलते फिरते हसीन लम्हात
5: हमेशा Bradford Asian Radio,
6: The Hindi Urdu Music Show on Bradford Asian Radio।

0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: You're listening to Bradford Asian Radio.
1: 1413 AM and online. You're listening to Bradford Asian Radio. 1413 AM and online.
2: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
3: And the winner is...
4: And the winner is...
5: And the winner is...
3: Your business being heard on the radio.
6: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
7: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेश खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक, आटा चावल दालें मसाला जात, रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की खुआरी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड ब्रेडफोर्ड BD88JL। बुखारी पसंद आपकी और हमारी बुखारी। दुल्हन वो जो पिया मन भाए,
8: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
7: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां कंगन कांटे,
8: बालियां अंगूठियां और हार,
7: जो दुल्हन करे सिंगार,
8: आज ही मामू काकी की दुकान,
7: खालिस सोने की पहचान,
8: पाकिस्तान ज्वेलर्स से शरीफ लाइए
7: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
8: आपकी शान
7: हमारी आन,
8: क्वालिटी की पहचान।
7: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Dufferin Lane ब्रेडफोर्ड, BD95ER 01274 491 442।
8: पाकिस्तान ज्वेलर्स। अरे बेटी की शादी करीब आ रही है, समझ नहीं आ रही कि जेवर कहाँ से लूँ।
9: अरे भोली, तुम्हें नहीं पता कि सोफी बहन ने ऑकलैंड पर सोफी ज्वेलर्स के नाम से गोल्ड जेवरात की दुकान खोल दी है।
8: सोफी ज्वेलर्स?
9: सोफी नहीं, सोफी, नित नए डिजाइन के जेवरात, जिनकी क्या है बात, इंश्योरेंस और वैल्यूएशन का भी इंतजाम, लेडी स्टाफ।
8: सोफी ज्वेलर्स, 121 Oak Lane, BD94QU 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
10: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers, or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274-201-679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.
11: Are you looking for nursery and after-school childcare in Bradford? Established in 2012, Raising Explorers provides outstanding childcare and education for children aged 0 to 16 years, all under one roof. From full-day nursery care for babies and young children, to after-school pickups, homework support and exciting holiday clubs, language classes, madrasa services, with locations in Manningham, Lister Hill Science Park, Thornbury and Hare Hills Leeds, Raising Explorers. Visit www.raisingexplorers.co.uk.
12: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिलनवाज,
13: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
12: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
13: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
14: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।
1: You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
2: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
0: You're listening to Bradford Asian Radio.
1: 1413 AM and online.

0: You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
1: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
2: You're listening to Bradford Asian Radio,
0: 1413 AM and online.
3: You're listening to
4: Bradford Asian Radio on 1413 AM.
3: And the winner is...
5: And the winner is...
6: And the winner is...
3: Your business being heard on the radio.
7: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
8: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिलनवाज
9: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज
8: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज
9: हर वक्त आपके संग आपका दम साज
10: ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो मीडियम वेव 1413 AM ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो
11: आओ असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चलें।
12: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं
11: अरे पगली अब दुबई ब्रैडफोर्ड में ही आ गई जी हाँ दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है
12: झिलमिल करते कांटे बालियां कंगन गले के हार 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार
11: टॉप क्वालिटी बेहतरीन सर्विस ओपन 7 डेज
12: 30 वेटले हिल ब्रैडफोर्ड BD8 8NG फोन 01274477257 दुबई ज्वेलर्स
11: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक आटा चावल दालें मसाला जात रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट हलाल गोश्त और चूजे फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले बचिए इधर उधर की ख्वारी से शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक व्हाइट एबी रोड ब्रैडफोर्ड BD8 8JL बुखारी पसंद आपकी और हमारी बुखारी
13: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है
12: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा मिलान की शेरवानी शलवार कमीज वेस्ट कोट प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं मर्दाना मलबूसात का ब्रैडफोर्ड का मुनफरिद मरकज जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे
11: मिलान दुल्हा हाउस 8183 व्हाइट एबे रोड ब्रैडफोर्ड BD8 8DR टेलीफोन 07885428349 अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम 1304 लीड्स रोड ब्रैडफोर्ड 3

0: Master Jewelers, 93 Horsham Grange Road, Bradford, Severn, 01274-414-760.
1: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
2: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
1: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डाइट, ट्रैफिक लाइट, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
3: हिसाबे उम्र का इतना सा गोशवारा है, तुम्हें निकाल के देखा तो सब खसारा है। महमूद रिजवी अकाउंटेंट्स, जी हाँ, छोटे से छोटे टैक्सी अकाउंट से लेकर बड़ी से बड़ी कंपनी के अकाउंट्स बनवाने के लिए अपने एतमाद नाम महमूद रिजवी अकाउंटेंट्स। ऑडिट एंड अकाउंटेंसी, टैक्सेशन, VAT, बुककीपिंग, पेरोल, फंडरेजिंग, कंपनी फॉर्मेशन, मॉर्गेजेस, अकाउंट्स के किसी भी मसले के लिए ना हो परेशान, क्योंकि आपकी मुश्किल करेंगे आसान महमूद रिजवी चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट्स। महमूद रिजवी, ग्रेट हॉटन रोड, ऑन ब्रैडफोर्ड, 424453। महमूद रिजवी,
4: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
5: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
4: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
5: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
6: ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो।
7: You're listening to Bradford Asian Radio,
8: 1413 AM and online.

0: You're listening to Bradford Asian Radio,
1: 1413 AM and online. You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
2: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
3: And the winner is...
4: Your business being heard on the radio.
5: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
6: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेश है खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक, आटा चावल दालें मसाला जात, रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की खुआरी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड ब्रेडफोर्ड BD88JL। बुखारी पसंद आपकी और हमारी बुखारी। दुल्हन वो जो पिया मन भाई,
7: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
6: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां कंगन कांटे,
7: बालियां अंगूठियां और हार,
6: जो दुल्हन करे सिंगार,
7: आज ही मामू काकी की दुकान,
6: खालिस सोने की पहचान,
7: पाकिस्तान ज्वेलर से शरीफ लाइए
6: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
7: आपकी शान
6: हमारी आन,
7: क्वालिटी की पहचान।
6: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 डुकफर्ट लेन ब्रेडफोर्ड, BD95ER, 01274 491 442।
7: पाकिस्तान ज्वेलर्स। अरे बेटी की शादी करीब आ रही है, समझ नहीं आ रही कि जेवर कहाँ से लूँ।
8: अरे भोली, तुम्हें नहीं पता कि सोफी बहन ने ऑकलैंड पर सोफी ज्वेलर्स के नाम से गोल्ड जेवरात की दुकान खोल दी है।
7: सोफी ज्वेलर्स?
8: सोफी नहीं, सोफी, नित नए डिजाइन के जेवरात, जिनकी क्या है बात, इंश्योरेंस और वैल्यूएशन का भी इंतजाम, लेडी स्टाफ।
7: सोफी ज्वेलर्स, 121 ऑकलैंड, BD94QU, 01274056014। सोफी ज्वेलर्स, आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
9: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
7: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
9: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
10: ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो।
1: You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
2: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
0: You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.

0: listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
1: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
2: You're listening to Bradford Asian Radio,
0: 1413 AM and online.
3: You're listening to
4: Bradford Asian Radio on 1413 AM.
5: And the winner is...
6: And the winner is...
7: And the winner is...
5: Your business being heard on the radio.
8: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
9: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिलनवाज
10: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज
9: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज
10: हर वक्त आपके संग आपका दम साज
11: ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो मीडियम वेव 1413 AM ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो
12: आओ असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चले
13: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं
12: अरे पगली अब दुबई ब्रैडफोर्ड में ही आ गई जी हाँ दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है
13: झिलमिल करते कांटे बालियां कंगन गले के हार 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार
12: टॉप क्वालिटी बेहतरीन सर्विस ओपन 7 डेज
13: 30 वेटले हिल ब्रैडफोर्ड BD8 8NG फोन 01274477257 दुबई ज्वेलर्स
12: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक आटा चावल दालें मसाला जात रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट हलाल गोश्त और चूजे फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले बचिए इधर उधर की ख्वारी से शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक व्हाइट एबी रोड ब्रैडफोर्ड BD8 8JL बुखारी पसंद आपकी और हमारी बुखारी
14: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है
13: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा मिलान की शेरवानी शलवार कमीज वेस्ट कोट प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं मर्दाना मलबूसात का ब्रैडफोर्ड का मुनफरिद मरकज जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे
12: मिलान दुल्हा हाउस 8183 व्हाइट एबे रोड ब्रैडफोर्ड BD8 8DR टेलीफोन 07885 4283 49 अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम 1304 लीड रोड ब्रैडफोर्ड

0: Master Jewelers, 93 Hotham Grant Road, Bradford 7414760।
1: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
2: तुम्हें पता है भाभी ने बॉबीज कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
1: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग्स, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
3: क्या आपकी आवाज़ खूबसूरत है? क्या आप में बोलने की जरूरत है? अगर ऐसी ही सूरत है तो ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो को आपकी जरूरत है। आज ही स्टूडियो नंबर 01274306677 पर कॉल कीजिए और अपनी आवाज सुनने वालों के दिलों तक पहुंचाइए और खुद को रेडियो स्टार बनाइए। याद रखिए, अगर आपको बड़ी बड़ी छोड़ने की आदत है तो ये आपके कल के बड़ा ब्रॉडकास्टर बनने की जमानत है। आज ही स्टूडियो नंबर 01274306677 पर कॉल कीजिए। एशियन रेडियो
4: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
5: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
4: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
5: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
6: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।
7: You're listening to Bradford Asian Radio,
8: 1413 AM and online.

मेरे सामीन इकराम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक नई सुबह और नई उमंग और नई तरंग के साथ अल्लाह करीम के बाबरकत नाम से आज की प्यारी सुबह का आगाज़ ब्रॉडफोर्डेशन रेडियो 1430 एम पर आयशा अख्तर के संग करते हैं। जी बिल्कुल मोज़ेसो मोहतरम सामईन इकराम, हज़ारों करोड़ों दुरूद सलाम हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, के जो हमारे लिए बाइसे रहमत हैं। बिल्कुल जी बिल्कुल मोज़ेसो सामईन इकराम, हर सुबह जो है जैसे अल्लाह करीम एक नई शान के साथ जो है वो आसमान पर अब नाजिल होता है, अल्लाह ताला हर रोज़ एक नई शान के साथ आता है और हमारे लिए कि जो सुबह नई सुबह होती है हर रोज़ वो एक ताज़ा पैगाम लेकर आती है। और हमने सोचना है कि हम इन रोशनियों के सफ़र पर जा रहे हैं या गुमराही और अंधेरों की तरफ जो भटकने वाले हैं, बल्कि उनको भी साथ लेकर रोशनियों की तरफ निकलना है। जी बिल्कुल ये तो है कि हमारे ब्रैडफोर्ड का जो वेदर है उसमें जो अब मैं क्या कहूँ, कुछ लोग कहते हैं कि भाई सूरज जो है वो आबोताब के साथ नहीं चमकता, और कुछ कहते हैं कि यहाँ पे ऑलमोस्ट कुछ डार्क डार्क अंधेरा सा रहता है, लेकिन हमने अंधेरों की तरफ जाने की बजाय रोशनियों की तरफ ना खुद चलना है बल्कि अपने हम सफ़र जो हैं उनको भी इन खूबसूरतियों के रास्ते की तरफ लेके जाना है। क्या ख्याल है मौजूद सामईन इकराम? और बिल्कुल जब हम एक प्रोग्राम कर रहे तो फिर हमारा जो ताल्लुक है आपस का थ्री वे सिस्टम, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, बिल्कुल ये तो भाई रेडियो टीम तो हमें ऑर्गेनाइज कर देती है एवरीथिंग, और फिर प्रोग्राम जो प्रेजेंटर है हमारा और आपका साथ रहता है। सुबह नौ में आप भी शिरकत कर सकते हैं हमारे साथ। हमारा स्टूडियो टेलीफोन नंबर 01274306677 है जी। हमारी वेबसाइट bradfordasianradio.co.uk, और हमेशा की तरह आयशा अख्तर अपने मिलने जुलने वाले हमारा हल्का अहबाब जो है उन सबको मैंने ये जो है डाउनलोड करवाया हमारा ऐप, और इस वक्त मेरे जितने भी न्यू जो फॉलोअर्स हैं, न्यू साथी जिन्हें हम अपने हल्का अहबाब में शामिल करते हैं, अगर वो मेरा प्रोग्राम सुन रहे हैं तो एक दफ़ा फिर दिल की गहराइयों से उनको सुबह का सलाम। जी बिल्कुल हम मुंतज़िर रहते हैं कि आप हमारा प्रोग्राम जो है वो सुने, अपनी शिरकत भी इसमें डालें अपने स्मार्टफोन के ऊपर, जो कि मैंने बहुत से अपने हल्के अहबाब को भी ये डाउनलोड करवाया और दिन तारीख सब कुछ से आगाह किया। तो इस वक्त जितने भी मेरे मौजूद सामईन इकराम प्रोग्राम समाप्त फरमा रहे हैं उन सबको खुश आमदीद। ये अलहदा बात है कि मैं हमेशा से वैसे कुछ नए सेंटेंसेस जो खुश आमदीद के हर लैंग्वेज में सुनती हूँ, लेकिन थोड़ी सी कंफर्टेबल हो जाऊँ इधर, अभी प्रोग्राम का आगाज़ हुआ है, धीरे धीरे हम बढ़ते हैं इन डिफरेंट जो हमारे स्टेप्स हैं प्रोग्राम के। वो कहते हैं कि सरप्राइज़ को बता देना भी फिर सरप्राइज़ नहीं रहता है, तो खैर मुझे ये बहुत अच्छा लगता होता है कि मेरा प्रोग्राम जारी और सारी हो और उसमें मैं अपने प्रोग्राम के अंदर होने वाले जितने भी मेरे कंटेंट्स हैं वो मैं आपको बता दूं, भाई फिर तो सस्पेंस ही ख़त्म हो जाए।

0: जाएगा, फिर तो आप कहेंगे कि ओ आई डोंट लाइक दिस पार्ट ऑफ दिस प्रोग्राम सो इट्स ओके लेट्स गो. नो नो नो, ये नहीं करना. हमने बैठ के बड़े ध्यान से ये प्रोग्राम सुनना है और हम कैसे ऐसे कैसे वो कहते ऐसे कैसे आपको जाने देंगे. इधर ही रहें हमारे साथ. चलें ऐसा करते हैं कि प्रोग्राम की खूबसूरती को बढ़ाने के लिए सुबह सुबह जैसे कि मेरा प्रोग्राम मतलब अभी शुरू हुआ है तो शुरू शुरू में बहुत ही एक खूबसूरत सा कलाम सुनते हैं. यकीन करें कि आप इससे वाकई लुत्फंदोज होंगे. आइए खूबसूरत सा कलाम सुनते हैं.
1: हर उस रात में मांगा था जहां नींद भी मुझसे दूर रहती थी,

आंखों में आंसू लेकर और कहा था, ऐ रब अगर तू सुन रहा है तो मुझे वो दे दे जो मेरी रूह को सुकून दे। और फिर तू आया।

आंखें बदलने लगी, तेरी बातें भी कम होने लगी। जो सुकून पहले मिलता था, अब वही सांसें भारी होने लगी।

वो दिन जब तूने मुड़कर देखा भी नहीं, जैसे मेरी पूरी दुनिया रुक गई, मेरे लफ्ज वहीं रह गए,

0: मेरे लफ्ज वहीं रह गए।
1: जी बिल्कुल मौजूद सामीन इकराम, ब्रेफरेशन रेडियो 1413 AM की ये सुबह नौ का आगाज है जी आपके साथ। हमारी वेबसाइट bradfordationradio.co.uk और स्टूडियो टेलीफोन नंबर 01274306677। यकीन करें बिल्कुल भी मकसद नहीं है मेरा कि इतने अफसरदा से सॉन्ग जो हैं वो सुने या सुनाए जाएं, लेकिन यकीन करें कि खुशी का एहसास जो होता है ना, ऐसे ही जब कहीं से दिल टूट सा जाता है तो फिर आने वाली खुशी जो है उसका बहुत ही खूबसूरती से इस्तकबाल किया जाता है। अल्लाह ताला हम सबको खुशियाँ नसीब करे, आमीन सुम्मा आमीन। बस कभी कभी ज़िंदगी में कुछ लोगों से वास्ता और सामना जिसे कहते हैं पड़ ही जाता है, तो बस फिर कभी कभी ये एहसास भी साथ चलता है। एनीवे हम आपकी जो दिन भर की थकान है उसको मद्देनज़र रखते हुए अब बहुत ही खूबसूरत से नगमात का भी सहारा लेंगे। और अभी हमेशा की तरह मेरी नज़र घड़ी के ऊपर है, आफ्टर द ब्रेक आपके लिए खूबसूरत से नगमात जो हैं बहुत ही दिलकश वो रखे हैं जी प्रोग्राम में। प्रोग्राम का हम टॉपिक भी जो है आपके साथ शेयर करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप जहाँ कहीं भी हैं बहुत अल्हम्दुलिल्लाह खुशी से अपने अपने कामों में मगन होने के साथ साथ हमारे प्रोग्राम को हमेशा की तरह सुन रहे हैं। फीडबैक का आपका इंतज़ार रहेगा और आपकी चॉइस, आपकी आरा और कोई भी आप हमें अपनी जो जिसे कहते हैं भेजते हैं चॉइस, तो उसको मद्देनज़र रखा जाएगा। खूबसूरत से सॉन्ग्स आपको जो भी पसंद है हमें फरमाइश करें, आपकी फरमाइश हम हमेशा की तरह बजा लाएंगे। इस वक्त इंतज़ार है एक छोटी सी ब्रेक का और आफ्टर द ब्रेक आपके साथ हम प्रोग्राम जो है दिलकश अंदाज के साथ करते हैं हमेशा की तरह। जी बिल्कुल अभी कुछ ही लम्हों में हमारी ब्रेक का टाइम है, आफ्टर द ब्रेक आपसे मिलते हैं जी एक खूबसूरत से अंदाज के साथ। जी बिल्कुल जी, हमारा ये जो होता है लम्हात ब्रेक के ये बड़े वो जिसे कहते हैं इंतज़ार पर मबनी होते हैं, क्योंकि ये ब्रेक बहुत ज़रूरी होती है। जितने भी हमारे बिजनेसेस हमसे रिलेटेड हैं वो उनको भी इसका इंतज़ार रहता है। ब्रेक से पहले छोटी सी बात, कहीं मत जाइएगा।
2: 1413 AM and online. You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
3: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
4: And the winner is.
5: And the winner is.
6: And the winner is.
4: Your business being heard on the radio.
7: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
8: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक, आटा चावल दालें मसाला जात, रोजाना ताज़ा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड ब्रेडफोर्ड BD88JL। बुखारी पसंद आपकी और हमारी बुखारी। दुल्हन वो जो पिया मन भाए,
6: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
8: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां, कंगन, कांटे,
6: बालियां, अंगूठियां और हार,
8: जो दुल्हन करे सिंगार,
6: आज ही मामू काके की दुकान,
8: खालिस सोने की पहचान,
6: पाकिस्तान ज्वेलर्स तशरीफ लाइए
8: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए,
6: आपकी शान
8: हमारी आन,
6: क्वालिटी की पहचान,
8: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Dufferin Lane, ब्रेडफोर्ड, PD95VR, 01274-491-442,
6: पाकिस्तान ज्वेलर्स। अरे बेटी की शादी करीब आ रही है, समझ नहीं आ रही कि जेवर कहाँ से लूँ।
9: अरे भोली, तुम्हें नहीं पता कि सोफी बहन ने ऑकलेन पर सोफी ज्वेलर्स के नाम से गोल्ड जेवरात की दुकान खोल दी है।
6: सोफी ज्वेलर्स?
9: सोफी नहीं, सोफी, नित नए डिजाइन के जेवरात, जिनकी क्या है बात, इंश्योरेंस और वैल्यूएशन का भी इंतजाम, लेडी स्टाफ,
6: सोफी ज्वेलर्स, 121 ऑकलेन, BD94QU, 01274056014, सोफी ज्वेलर्स।
10: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274-201-679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.
8: अरे ये पूरे ब्रेडफोर्ड में क्या है शोर?
11: आपको नहीं पता, ऑफर्स इन मेनी गो स्टोर, रोजाना ताजा सब्जियां, फल, फ्रूट, सलाद, मीट, चिकन, आटा, दाल, चावल और मसाला, क्वालिटी में सबसे आला और सर्विस में सबसे भाला।
8: हर समत मचा है जिसका शोर, वो है मैनिंगम सुपर स्टोर। मैनिंगम सुपर स्टोर, कार्लाइल रोड, ब्रेडफोर्ड, BD88AX, फोन ब्रेडफोर्ड 4955555। हफ्ते के सातों दिन आपकी खिदमत में पेश, मैनिंगम सुपर स्टोर।
11: मैनिंगम सुपर स्टोर,
12: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
8: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
12: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
8: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
13: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।
2: You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
3: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
1: जी बिल्कुल, ये ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो 1413 AM है, हमारी वेबसाइट bradfordasianradio.co.uk और स्टूडियो टेलीफोन नंबर 01274306677। सुबह का आगाज सुबह 9 में, और इस वक्त सबका ख्याल है, सब अपने कामों में भी बिजी हैं। बहुत ज़्यादा दिन भर की एक कोशिशें, काविशें होती हैं, और एक दिन का पूरा स्केड्यूल जिसे कहते हैं हमारे सामने होता है, उसको निभाना है। काम पे जो मेरे जितने भी मौजूदा इकराम हैं इस वक्त प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं, बिल्कुल मैं आपकी पसंद जो है उसको भी मद्देनज़र रखूँगी और बिल्कुल भी बोर नहीं होने दूंगी। और कोशिश है मेरी कि अभी ताज़ा दम होने के लिए एक खूबसूरत सा नगमा सुनते हैं। यकीन करें वाकई खूबसूरत है, और आपकी तबीयत शाश बशाश रखनी है बिल्कुल, ताकि पूरा प्रोग्राम जो है आपके साथ 1 बजे तक हमारा और आपका साथ रहे। आपने कहीं इधर उधर नहीं जाना, प्रोग्राम को हमेशा की तरह सुनते हुए मुझे फीडबैक साथ साथ कॉल्स आती हैं, वो ज़रूर करनी है। और आइए खूबसूरत सा नगमा, वाकई खूबसूरत सा, वो थोड़ा सा अगर पहले वाला मैं नगमा ना सुनाती, मेरा मतलब है दिलकश सा कलाम, तो वो फिर हमें जो खूबसूरत और खुशी के साथ साथ होते हैं ना, फिर उनकी कदर जो है ना वो इतनी नहीं होती, तो इसलिए खुशी के एहसास की कदर अब महसूस होगी। जी सुनते हैं आइए एक कलाम सॉन्ग।

जी बिल्कुल मज़े सामने इकराम, दर्द की शिद्दत हो या खुशी का एहसास, अपनी नियतों को दुरुस्त रखना है और अपने जज्बात को काबू में रखना है। बिल्कुल, नियत साफ हो तो मंजिल बहुत करीब आ जाती है। यही है हमारा आज का टॉपिक कि हमारी ट्रू इंटेंशंस जो है वो हमें अपने कामयाबियों के रास्तों की तरफ रवा दवा कर देती हैं। जी बिल्कुल मज़ा सामईन इकराम, विद ट्रू इंटेंशंस आपसे इस वक्त मुखातिब है जी आपकी होस्ट, आपकी मेजबान, आपकी प्रेजेंटर आशा अख्तर, प्रोफरेशन रेडियो 1413 AM पर। खूबसूरत सा हमारा ये चैनल जो है, आपने कहीं इधर उधर नहीं जाना, आशा अख्तर के संग ये पूरा प्रोग्राम 1 बजे तक आपने समाप्त फरमाना है। प्रोग्राम में आप भी शिरकत कर सकते हैं हमारे साथ जी। हमारा स्टूडियो टेलीफोन नंबर 01274306777 मिलाकर कोई भी फरमाइश करे, और हमेशा की तरह बहुत दफ़ा आप कह देते हैं कि जी आप अपनी पसंद का कोई खूबसूरत सा नगमा, कोई गीत लगा दें, तो वो फिर मैं इसी तरह से प्रोग्राम जो है आगे बढ़ाती चली जाती हूँ। तो खैर, आपकी मौजूदगी का एहसास भी हमें रहता है, होता है इंतज़ार जी आपकी कॉल्स का। हमारी वेबसाइट preferationradio.co.uk। जी बात हो रही है इंटेंशंस की कि हमें अपनी नियतें जो है वो खालस रखनी है। यकीन करें बहुत ही खूबसूरत सा ये टॉपिक भी है, और मैं कहती हूँ हम जो भी रोज़मर्रा डेली रूटीन लाइफ के जो मैटर्स जो हैं वो कर रहे हैं, हमारा मज़हब से ताल्लुक़ है, हमारा इस वक्त ज्ञान की तरफ जो है ध्यान है, तो ये सारी जब इंटेंशंस ट्रू होती हैं तो हम जो भी अपने गोल्स अचीव करना चाहते हैं ट्रू ट्रू इंटेंशंस के साथ अल्लाह ताला से मांगते तो ज़रूर मिलता है जी, क्यों नहीं। बहुत ही एक खूबसूरत सी, मेरे पास एक छोटी सी स्टोरी कह लें, एक बात कह लें, बहुत ही खूबसूरत सी है, आपसे शेयर करना चाहती हूँ। मौजूद ख़वातीन के हवाले से है खूबसूरत सी बात ये कि एक खातून जो थी वो टिल पे अपने फ़्राइज़ अंजाम दे रही थी, और बहुत रश था सुपर स्टोर में। लोग, आपको पता है सुपर स्टोर्स में जब रश होता है तो हर कोई जल्दी में, क्यों एक लंबी सी बनी हुई है, और वो खातून जल्दी जल्दी से टिल के ऊपर जो है सामान को आगे आगे गुजार रही है, और ऑब्वियसली काम का प्रेशर होता है और अपनी ड्यूटी जो होती है उसको अंजाम देना होता है, मुकर्रा आवर्स जो होते हैं उनमें अपनी एफिशिएंसी दिखानी होती है कि वी आर द रियली बेस्ट वर्कर्स। तो लगी हुई है खातून, और इतने में एक खातून आती हैं अपना निकाब और बुरका संभालते हुए, जो कि इर्द गिर्द ऐसे फैला हुआ है, और वो यूं लग रहा है कि जैसे उसने बुरके को नहीं संभाला बल्कि बुरके ने उसे संभाला हुआ, कुछ ऐसा ही मामला था कि वो उसको थोड़ी दिक्कत पेश आ रही थी अपने नकाब को, अपने जो कुछ अबाया पहना हुआ था कि उसको संभालने में, लेकिन वो खातून फिर भी हिम्मत नहीं आ रही थी और अपना सामान जो है टिल पे रखने में थोड़ी सी मज़ाहमत कर रही थी कि, लेकिन इतने में वो जो टिल पे बैठी हुई खातून थी तो उसने बड़े गुस्से से और हकारत से कहा कि तुम लोग जो होती हो यूरोपियन कंट्रीज़ में, देखिए ये मैंने जैसे, मेरा कोई भी मकसद किसी को भी हर्ट करने का नहीं, मैं बिल्कुल स्टोरी आपको एक जो है एक पॉइंट की तरफ हमने जाना है, कंक्लूजन की तरफ, और देखना है कि क्या ये खूबसूरत सी बात है, राइट तो तुम लोग यूरोपियन कंट्री में आ जाती हो और तुम्हें पता नहीं होता है कि तुमने जो है तुम हमारा भी वकार खराब कर देती हो और पर्दे में रहती हो, दिस एंड दैट, तो क्या तुम, अगर तुमने ऐसे कंट्रीज में रहना होता तो तुम्हें नहीं पता कि यहाँ पे लिबास जो है ज़रा तहजीबदार, जिसे वो तहजीबदार कह रही थी कि
कुछ देखिए, अब जैसे मैंने पढ़ा है तो मतलब इंग्लिश माहौल में हम जैसे मैं यहाँ पे एक यूरोपियन कंट्रीज़ में रहते, तो तुम लोग जो हो बड़ा अपने मज़हब को प्रचार करते हो और इनको अपने ममालिक में छोड़ के आया करो, और आपको पता नहीं है कि यहाँ की लाइफ जो है कितनी बिजी तरीन है, और यहाँ पे इस तरह के जो हैं लवाजमात तो उनको घरों में छोड़ के आना पड़ता है। तो खैर वो बड़ी बरहम हो रही है और अपनी बात पर बात जब किए जा रही है तो उस खातून ने अपने चेहरे से जरा नकाब उठाया और जरा दिखाया उसने जब अपना चेहरा, तो वो खातून लरस गई और वहीं पे उसको ब्रेक लग गई है, चुप हो गई, क्योंकि वो एक इंतहाई खूबसूरत हस्पानवी उसके अंदर खातून थी, और उसने जब फिर इंग्लिश में प्योर, क्योंकि शी वॉज स्पीकिंग इन इंग्लिश इज वेल, क्योंकि टिल पे वो कह रही थी कि मैं जो इंग्लिश बोल रही हूँ, मैं यहाँ का इंग्लिश, मतलब ये एनवायरमेंट दिस एंड दैट, तुम ये लोग कहां से अपना कल्चर उठा के ले आते हो। उसने जब फिर प्योर इंग्लिश में जो अपनी सारी बात बताई, और उसने खातून ने कहा कि तुमने मुझे क्या समझा कि मैं यहां पे दिखावा करने के लिए ये सारा कुछ, और ये जो है द डेप्थ एंड ब्यूटी ऑफ इस्लाम ये तुम लोगों के लिए है, हम लोग जो है अल्लाह ताला जिसे भी हिदायत के ऊपर लेके आए, तो तुमने मेरा मजाक उड़ाया, और ये लिबास जो है जितना मेरे लिए कंफर्टेबल और इजी है कि तुम्हें इसकी वकार और अहमियत का क्या पता, और ये सिर्फ तुम लोगों के लिए मुख्तस कर दिया गया है, क्या हम लोग ये नहीं पहन। तो वो शर्मिंदगी से, नदामत से बैठी हुई, सॉरी मैम, सॉरी मैम, सॉरी मैम, सॉरी मैम, व्हाट यू मीन बाय दिस, कि क्या तुम्हें इस चीज से गर्ज है कि कोई क्या लिबास पहनता है, वो किस हुलिये में है, कैसे है, तुम अपने फर्ज फरा, और तुम यहां पे लेक्चर किस सिलसिले में मुझे दे रही हो। वो इतनी शर्मिंदा और फिर ताइब भी हुई और उससे सॉरी बोल रही है कि जी, वो कह रही है कि तुम्हें कोई राइट नहीं है किसी के रिलीजन को कुछ कहना, किसी के कल्चर को कुछ कहना, तुम लोग यहाँ पे ड्यूटी दे रहे हो, बस ड्यूटी दो, ड्यूटी इज ड्यूटी। तो वो कह रही है कि मैं जब मैंने इस चीज को अपनाया तो मैंने फुली अपनाया कि मैं मुझे ये बहुत अच्छा लगता है, मैंने अपनी खुशी से, मैंने पता नहीं कितनी डीप डाउन ये इसकी डेप्थ में मैं गई हूँ इन चीज़ों की, और जो कुछ मैंने इस्लाम के बारे में मैं बहुत देर से सर्च कर रही थी, फिर मैंने इतना अपने आप को कंफर्टेबल फील किया इसमें, मैं इतना सुकून महसूस करती हूँ, और तुम लोग जो होते हो ना फिर ऐसे दिल आजारी करके दूसरों को भी इधर उधर राह रास्त से भटकाने में कोई कसर नहीं छोड़ते हो। एनीवे वो कह रही है कि वो जो खातून थी वो कह रही है कि मेरी खूबसूरती जो है मुझे पता है कि मैंने किसके लिए सेव करके रखी है, मैं एक अमानत किसकी हूं अपने रब की, और ये सारा फिर जब उसने बताया कि, और फिर वो इतनी शर्मिंदा हुई कि हम लोगों को कोई भी किसी के ऊपर उंगली उठाने का कोई हक नहीं होता। बड़ा खूबसूरत मुझे वाकया लगा, और मैंने सोचा कि मैं अपने मौजूद सामईन इकराम के साथ ये शेयर करती हूं, और चूंकि हम मल्टी कल्चरल सोसाइटी में रहते हैं, हमें सबके साथ जो है बहुत हुस्न सलूक के साथ पेश आना है। ये एक बहुत ही, मैं कहती हूँ कि सबक आमोज एक वाकया था जिसे मैंने सोचा कि मैं ज़रूर शेयर करूँ, और वो हस्पानवी खातून के जिसके अंदर इतनी खूबसूरतियाँ, उसकी ज़ाहर बातन जो खूबसूरतियों से भरा हुआ, और कैसे उसने जो है सबको एक तहफ़्फ़ुज़ फ्राहम कर दिया और सबकी तरफ से वो बोली, और मुझे बहुत अच्छा लगा जी। हम सब ने सोचना है अपना अपना कैरेक्टर जो है, रोल प्ले किधर करना है। अब बात फिर जो है, फिर मैं ज्यादा मजीद तवील नहीं करना चाहती, बस यही है कि जहां रहें बस खुश रहें, अपनी इंटेंशन ट्रू रख के और नियत खालिस हो तो अल्लाह ताला सब कुछ अता कर देता है। जी बिल्कुल, आइए चलिए एक खूबसूरत सा सॉन्ग सुनते हैं, थोड़ी सी तबीयत जो है वो बहाल हो, और दिन भर की मशक्कत भी होती है, काम काज भी होता है, उसको भी साथ साथ करना होता है, सारे मराहल जिंदगी के साथ साथ होते हैं। जी

0: जी मज़ा सामीन इकराम, आप स्मार्ट फरमा रहे हैं ब्राडफोर्ड एशियन रेडियो 1413 एएम की खूबसूरत नशियात अपनी प्रेजेंटर आयशा अख्तर के संग। हमारी वेबसाइट ब्राडफोर्ड एशियन रेडियो .co.uk और स्टूडियो टेलीफोन नंबर 01274306677। बिल्कुल ब्रेक पे जाने से पहले आपके साथ गुफ्तगू हो रही है। वो कहते हैं कि ट्रू इंटेंशन खलूस नीयत, खालिस नीयत जो है खोटी किस्मत को भी खरी कर देता है, खरी कर देती है इंटेंशन वो जो दिल से होती है। और बहुत से वो कहते हैं ऐसे लोगों को राज करते देखा है कि जिनकी इंटेंशंस ट्रू होती हैं, जिनको अपनी मंजिल की तरफ बढ़ने के लिए खालिस नीयत के साथ साथ उनके इरादे पुख्ता और मजबूत होते, सबसे पहले अल्लाह पर उनका ईमान और यकीन कामिल होता है। यही जो ईमान की ताजगी है ये खलूस नीयत से जुड़ी होती है। और बहुत से ऐसे जिनके पास बहुत पैसा लेकिन उनकी नाकदरी होते हुए देखी माशरे में, ये चीज़ें जो होती हैं हमारे इर्द गिर्द माहौल में होती हैं, हमसे जुड़ी होती हैं। हम बाज़ औक़ात नॉलेज को और इल्म को बड़ी बड़ी किताबों में ढूंढ रहे होते हैं, बड़े बड़े अफसरान से हमारा रابطہ वास्ता होता है और बड़ा मुशाहिदात होते हैं, बहुत हम बड़ी से बड़ी सर्च की तरफ उनकी तलाश में लगे हुए थे। यकीन करें कि ज़िंदगी के बहुत बहुत बड़े राज जो होते हैं ना, वो रोज़मर्रा रूटीन लाइफ में हमें नज़र आ रहे होते हैं। बात ये है, अपने अपने ज़र्फ की बात है, अपनी अपनी नीयतों की बात है। इश्क की चोट हर एक पे पड़ती है यकसां, ज़र्फ के फ़र्क से आवाज़ बदल जाती है। बिल्कुल, जितना जिसमें ज़र्फ है उसको ब्रोएकार लाते हैं जी। ये ज़िंदगी के जो डेली रूटीन मैटर्स होते हैं, हमारा रابطہ वास्ता एक दूसरे के साथ होता है, घर से शुरू हो के फैमिली के साथ और फिर बाहर और फिर मुल्कों दर मुल्कों। लेकिन आपने एक बात ज़रूर नोट की होगी, हम जहाँ कहीं भी जाते हैं हम अपनी नुमाइंदगी कर रहे होते हैं। किस लिहाज से, कैसे, क्यों, ये सब आपने भी इस बारे में ज़रूर सोचना है और देखना है कि हमें डिग्निटी, अपना वकार जो है बहुत से मकामात पर खुद लेना होता है। वो कैसे, नीयत खालस रखें, नीयत ट्रू रखें तो मंजिल मिल ही जाती है जी। बहुत कुछ लगा होता है इंसानों के साथ, बहुत कुछ। वो कहते हैं ना कि हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। ज़िंदगी की ये सच्चाइयाँ और गहराइयाँ जो हैं इंसान के मरातब भी तय करती हैं, मरातब भी मेरा मतलब है बनाती है। किस मरतबे पे कौन फाइज है, कहाँ जाता है, जलसी को छोड़ें, अपने मकासद पे विद ट्रू इंटेंशंस नज़र रखें। फिर जब हमारी नीयत खालिस होती है, अल्लाह ताला ज़रूर हमारा साथ देता है जी। बिल्कुल मज़े सामीन इकराम, छोटी सी ब्रेक, after the break aap se milte
1: 1413 AM and online.
2: Listen on your PC or laptop, the best Asian music online.
3: You're listening to Bradford Asian Radio
1: 1413 AM and online.
4: You're listening to
5: Bradford Asian Radio on 1413 AM.
4: And the winner is... Your business being heard on the radio.
6: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
7: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिलनवाज,
8: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
7: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
8: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
9: ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो।
10: आओ असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चलें।
11: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं।
10: अरे पगली, अब दुबई ब्रैडफोर्ड में ही आ गई। जी हाँ, दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है।
11: झिलमिल करते कांटे, बालियां, कंगन, गले के हार 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार।
10: टॉप क्वालिटी, बेहतरीन सर्विस, ओपन 7 डेज।
11: 30 वेटले हिल, ब्रैडफोर्ड, BD8 8NG, फोन 01274 477 2577। दुबई ज्वेलर्स,
10: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका। पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक। आटा, चावल, दालें, मसाला जात, रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे। फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की खुआरी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर, नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड, ब्रैडफोर्ड, BD8 8JL। बुखारी, पसंद आपकी और हमारी बुखारी।
12: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
11: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रैडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
10: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रैडफोर्ड, BD8 8DR, टेलीफोन 07885 428 3489, अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड रोड, ब्रैडफोर्ड 3।

0: Master Jewelers, 93 Hawson Grange Road, Bradford 7, 01274-414-760.
1: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
2: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
1: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग्स, BD3 ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
3: Do you know there are 170,000 new cases of cancer each year in Pakistan? Do you know that Imran Khan Cancer Appeal provides free cancer treatment to 75% of its patients? Do you know that the third specialist Shaukat Hanum Cancer Hospital is being built in Karachi? We need your support more than ever now. Please donate today by calling 01274 424444 or donate online at ikca.org.uk.
4: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
5: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
4: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
5: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
6: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।
7: You're listening to Bradford Asian Radio,
8: 1413 AM and online.
9: जी बिल्कुल बिल्कुल, मज़े सामने देख रहा हूँ। ये ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो 1413 AM की नशियात जारी और सारी है। आपके संग संग हम सफ़र कर रहे हैं खूबसूरतियों का, रानाइयों का। कहीं मत हिलिएगा, हमारी वेबसाइट bradfordasianradio.co.uk से ज़रूर इस्तेफादा हासिल कीजिएगा। और स्टूडियो टेलीफोन नंबर 01274306677 की रेपिटेशन का मतलब ये है, आप फ़ोन उठाएं, हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल हों, अपनी खूबसूरत सी फरमाइश का इजहार करें। और अदरवाइज अगर आप मुत्तफिक हैं कि आपके लिए बहुत से खूबसूरत नगमात का एहतमाम कर रही हैं आपकी प्रेजेंटर ऑलरेडी, तो इस ओके चलें, आप हमारी पसंद से मुत्तफिक हो जाएं और एक खूबसूरत सा नगमा जो है आइए समात फरमाते हैं। आई होप यू विल इंजॉय दिस सॉन्ग।

जी सच्चियां मोहब्बतां जी मोहब्बतां सच्चियां। वैसे सच्चे हर मामले में ही रहना चाहिए, हर जगह पे सच को नहीं छोड़ना चाहिए, तो मोहब्बत खुद ब खुद सच्ची हो ही जाती है। और वाकई सच्ची और ट्रू मोहब्बत मिल जाना जिंदगी की कामयाबियों में से बड़ी, बहुत बड़ी कामयाबी है। वैसे आपस की बात है कि ये वाला जो टॉपिक है ना कि सच्चियां मोहब्बतों पे आके अगर हम ख्वातीनों हजरात जिस किसी से भी बोलेंगे पूछेंगे ना, वो फोलने वाला हिसाब हो जाता है, किसी को टटोलेंगे ना तो वो सब कहेंगे जो खामोश है वो ही खुश है। तो बस ये मत पूछे। ये टॉपिक जो है ना फिर बड़ा थोड़ा सा वो स्किल भी हो जाएगा और जू मानी भी हो जाएगा। छोड़िए भाई, इतना ही काफी है कि रोजमर्रा जीने के लिए अच्छा लाइफ पार्टनर मिल जाए तो ये भी बहुत कामयाबी होती है। बस एक दूसरे की तबीयत को समझना, ख्याल रखना और माहौल को खराब नहीं होने देना, ये भी बहुत बड़ा एक आर्ट होता है। बड़े आर्ट से गुजरना पड़ता है जी, बिल्कुल। खैर, अगर हम इसको इस सेंस में लें कि ये जिंदगी के स्टेप्स हैं, स्टेप बाय स्टेप हमने अपनी जिंदगी का सफर तय करना है, तो ऑनेस्टली बहुत खूबसूरत जर्नी रहता है ज़िंदगी का। अल्लाह ताला हम सबको बहुत खूबसूरत अपनी ज़िंदगियों का पैकेज और जर्नी अता फरमाए, आमीन। क्योंकि ज़िंदगी एक बार मिलती है, इसको जिए भरपूर तरीके से, दुआएं करते हुए कि अल्लाह ताला भरपूर तरीके से हमें अपनी ज़िंदगियां जीने की तौफीक अता फरमाए। यकीन करें कि जिंदगी, वैसे मेरी टीचर्स भी अक्सर कहा करती थी, कभी कभी, जरूरी तो नहीं, मैं कहती थी कि जरूरी तो नहीं कि भाई हर रोज आप लोग मुझसे कहते हो कि भाई आपके ग्रुप में बस मैं बहुत बोलूं, नहीं भाई आज मैंने क्वाइट रहना है। तो हमारी उस्ताद मोहतरम की, हमारी टीचर की नज़र पड़ती तो कहती भाई देख के चेहरे की तरफ, जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खा जिया करते हैं। अच्छा जी चलें, ठीक है। खैर, ये छोटे मोटे चुटकुले जो होते हैं हमारे प्रोग्राम को भी अच्छा बनाते हैं और आपकी तवज्जो समेटने के लिए भी कुछ ऐसी खूबसूरत सी बातों का सहारा भी लेना पड़ता है। बहुत ही खूबसूरत सी बात भी मेरे पास है, मैं ज़रूर आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि एक दफ़ा आका नबी करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफ़िल पाक हो रही है और वहाँ पे एक नॉन बिलीवर भी बैठा है, तो वॉच कर रहा है, देख रहा है सारी सिचुएशन को। तो एक सहाबी आए बड़े परेशान और फरमाया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा बच्चा 3 दिन से गुम है, मैं बहुत परेशान हूँ।

खत्म भी नहीं हुई तो भागने लगे हैं, मुझे बताओ वो उस जगह का पता बताओ तो मैं जाके अपने बच्चे को जो है वो लेके आऊं। तो ऑब्वियसली 3 दिन के बाद की इतनी खुशी की उसे जो खबर मिली है, तो आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुर्बान जाऊं तो पूछा कि तुम्हें बहुत खुशी है अपने बच्चे के मिलने की? जी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत खुशी है, लबा कमी बेशी माँ फरमाए बयान करने में, तो मैं तो बहुत खुश हूँ। तो अच्छा, तो तुम जब उसे मिलोगे तो क्या करोगे? तो मैं तो या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको ज़ोर से खुशी से वो जैसे कहते हैं ना जप्पी डालूंगा, उसे गले मिलूंगा, उसको मैं तो बहुत प्यार करूंगा अपने बच्चे को, 3 दिन के बाद देख रहा हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, अपने जज्बात को थोड़े कंट्रोल में रखो, देखो तुम जब जाओगे, तुम 3 दिन के बाद अपने बच्चे से जब मिलोगे तो वहाँ पे यतीम बच्चे भी खेल रहे होंगे, उनके दिलों में एहसास जाग उठेगा कि हमारा भी बाप होता तो आज हमें भी यूं गले लगाता। इतनी मोहब्बत का इजहार उसे ले आना आराम से, और घर लाके जितना प्यार करना होगा तन्हाई में उससे करना, लेकिन वहां पे यतीम बच्चों का ख्याल रखना। बहुत से बच्चे जिनके माँ बाप नहीं होंगे, वो इस तुम्हारी मोहब्बत में देख के वो उनके दिलों पे क्या गुजरेगी, और बहुत से उनके आंसू निकल आएंगे। जब ये बातें महफिल पाक में हो रही हैं तो वो जो नॉन बिलीवर था उसका दिल पसीज गया। उसने सोचा कि एक ऐसा मज़हब और उसके नबी जो हैं लोगों को ये तालीम दे रहे हैं कि दूसरों की के जज्बात का ख्याल रखना है, अपनी खुशी का। और वो ख़ुद भी सोच रहा था कि 3 दिन के बाद जब फादर मिलेगा अपने बच्चे से, ऑब्वियसली वो तो हो जाएगा निसार अपने बच्चे पे, और वो खुशी जो दीदनी होगी उसको छुपा के मुख्तस कर दिया है इनके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, कि तन्हाई में उससे बच्चे से प्यार करना। वो इतना इम्प्रेस हुआ और फौरन उसने इस्लाम कबूल कर लिया। बाद में लोगों ने उससे पूछा कि तुम्हें कौन सी ऐसी चीज ने, इस्लाम की इकदार ने तुम्हें मुतासर किया कि तुमने इस्लाम कबूल किया? तो उसने कहा कि मुझे ये चीज़ बड़ी इनकी खूबसूरत लगी कि इनकी जो टीचिंग्स हैं वो एक फर्द वाहद तक नहीं है, वो एक पूरी सोसाइटी क्या पूरे कहते हैं कि नस्लों तक वो इनकी जो टीचिंग्स हैं वो पहुंचती हैं। और मुझे हिला के वो कहता कि रख दिया इस वाक्य ने, और मैंने कहा कि इससे बेहतरीन मज़हब जो है कोई और हो ही नहीं सकता। सामईन इकराम, यही हमारे इर्द गिर्द के हालात व वाकियात हैं जिससे मैंने जब जब खुद भी मैं देखती हूँ, पढ़ती हूँ, सोचती हूँ, मैं कहती हूँ कि वाकई हम इंसान होने की जो अपनी कदर है वो किससे करवाते हैं? क्या बस बहुत ज़्यादा नमाज़ें हम पढ़ते हैं, प्रचार करते हैं, अपने मज़हब का प्रचार करते हैं, कभी हमने इर्द गिर्द देखा है कि हमारे इर्द गिर्द हालात क्या है, लोग किन हालात में जी रहे हैं, सबकी खुशियों को कभी हमने मद्देनज़र रखा, ये सबके दुखों को हमने कभी मद्देनज़र रखा? ये चीज़ें जो है ना, आप यकीन करें कि मैं बहुत जब इनको देखती हूँ, मेरा हमेशा से, आप सब भी जानते हैं कि यही मैं मकसद भी, और मैं सोचती हूँ कि हम ये सोसाइटी प्रैक्टिकली हम जैसे जी रहे हैं, हमारे एहसासात, हमारे जज्बात लोगों से कैसे जुड़े हुए, हमने अपनी खुशियों की खातर दूसरों की खुशियों का गला नहीं घोंटना, देखना है। यकीन करें कि ये चीज़ें जो है इंसान को इतनी राहत देती हैं, ये सबका एक जारिया बन जाता है, हमारी इंटेंशंस जो हैं ट्रू होती हैं जब, और हमारे आमाल अकॉर्डिंगली होते हैं, तो यकीन करें एक दुनिया

जी मज़े सामने इकराम ब्रफरेशन रेडियो 1413 AM की खूबसूरत सी नशरियात आयशा अख्तर के संग आप समात फरमा रहे हैं हमारी वेबसाइट bradfordationradio.co.uk और स्टूडियो टेलीफोन नंबर 01274306677। बहुत अच्छा लग रहा है आप सबके साथ बातें करना और उम्मीद करती हूँ कि आप भी बड़े मुनहमिक हो गए और मुझे जब कहीं से फीडबैक भी मिली थी कि दिल जुमाई बड़ी खूबसूरती से आप अदा करती हैं, जी बिल्कुल वही वर्ड यूज करती हूँ, दिल जमाई मुनहमिक और बहुत वो कहते हैं ना जिंदा और जावेद दिल के साथ, दिल की गहराइयों से प्रोग्राम जो है आप समाप्त फरमा रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत क्यों ना हो भाई, मैं पूरा एहतमाम कर रही हूँ आपकी तफरीह तबाह का। जी बिल्कुल बहुत ही दिलकश सा एक सॉन्ग है, आइए सुनते हैं ताकि तबीयत और कुछ बहाल हो जाए।

जी बहुत क्या कहते हैं कमाल की अदाकारी है जी अनुष्का शर्मा की इस सॉन्ग में। वैसे कहा जाता है कि जी अनुष्का शर्मा और जो है वो ये जो साथ शाहरुख खान है इनका जो बहुत ही एक मूवी बड़ी हिट हुई थी आप समझ गए होंगे, उसमें इनकी जोड़ी कमाल की है जी। जोड़ी से आपको याद आ गई होगी मूवी भी, रब ने बना दी जोड़ी। उसमें दोनों लगते हैं कि जैसे कमाल की इनकी फिल्मी जोड़ी है, लेकिन ये सॉन्ग में अब सलमान खान के साथ जो है अनुष्का शर्मा जो है वो क्या कमाल के जौहर दिखा रही हैं। और इस वक्त तो आप भी हैरानगी के समंदर में गुम हो रहे होंगे कि आयशा अख्तर भी जो है वो ये बातें, जी हम भी बातें कर लेते हैं ऐसी, क्योंकि अनुष्का शर्मा जो है वो सबकी फेवरेट हैं। और मैं तो इसे थोड़ी सी हट के मुनफरद सी अदाकारी करती है, और फिर जब अपनी वो कुछ कुछ हरकतें नजर आए तो फिर ऑब्वियसली इंसान उस तरफ देखता है, अरे ये क्या भाई। तो बस कुछ ऐसा ही है। बाकी आप सब जब दोबारा से ये सॉन्ग का एहतमाम करेंगे, सुनेंगे सुनेंगे और देखेंगे कि अनुष्का शर्मा और सलमान खान ने क्या बेहतरीन जौहर दिखाए हैं इस सॉन्ग में, वो तो आप खुद भी देख लेंगे जी। बिल्कुल मौजूद सामीन इकराम, ये जौहर हम सुना रहे हैं, दिखाने की बात तो आप खुद करेंगे, और इस वक्त जौहर और कमालात जो हैं वो सुन रहे हैं ब्रॉड फेडरेशन रेडियो 1413 AM पर। बिल्कुल जी, बहुत से न्यू कंटेंट्स वंस अगेन आपको खुश आमदेद। और जी बिल्कुल आयशा अख्तर हैं जी आपकी मेज़बान, और प्रेफरेशन रेडियो 1413 AM पर है। और इससे पहले कि आपसे फिर लाइव मुलाकात हो जी, हमारी वेबसाइट भी आप सुन लें preferationradio.co.uk है जी। अभी आपने तसल्ली करनी है दिल की कि जी आप प्रेफरेशन रेडियो पर आयशा अख्तर को समात फरमा रहे हैं, तो जी नंबर मिलाइए हमारा स्टूडियो का 01274 3 0 6 7 7।

0: जी बिल्कुल, हमेशा की तरह यही तो बात है कि ब्रेक का बड़ा ख्याल रखना पड़ता है जी। ब्रेक हमारे सर पे खड़ी है, तो हमने थोड़े से ये 1-2-3 मिनट जो है बस बातों में गुजारने हैं। और बातें भी वो जब ब्रेक बिल्कुल एन आपके इंतजार कर रही हो, तो बात मुख्तसर सी हो लेकिन इफेक्टिव एंड वेरी मोस्टर, बहुत जामे, जिसमें सबसे बेहतरीन बात यही है, ह्यूमैनिटी कम्स फर्स्ट, इंसानियत का बहुत ख्याल रखना है। ये एक लफ्ज़ जो है इंसानियत का, हमारे हमारी किताब, मजहबी किताब कुरान पाक भी हमें यही दर्स देती है कि कुरान हमें दर्स देता है कि जिसने एक जान बचाई, गोया के उसने पूरी इंसानियत को बचा लिया। सोचना है इस बारे में कैसे सबके लिए हमने। अब आप बात घर से जब शुरू करते हैं अपने बेहतरीन, तो जाहिर बात है कि हमने अपने घर से बात शुरू करनी होती है। बहुत कुछ हम जो है अपने आप से लगे हुए हालात तो वाकयात को समेट कर कहीं एक मंजिल की जानिब जब बड़े होते हैं, विथ ट्रू इंटेंशंस, टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू गाइस, अल्हम्दुलिल्लाह इंसानियत तक का सफ़र फिर बहुत सुहाना रहता है। सोचना है हम सब ने मिलके, अमल करना है हम सब ने मिलके इस बात पर। और मुझे ये बहुत बेहतरीन बात लगी, उम्मीद करती हूँ कि आपको भी मेरी बात ये पसंद आई होगी। यही तो बात है कि बात पसंद की ही करनी है। जब बात पसंद की हो तो आइए चलते हैं एक ब्रेक की तरफ।
1: 1:03 AM and online. You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
2: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
3: And the winner is...
4: And the winner is...
5: And the winner is...
3: Your business being heard on the radio.
6: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
7: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक, आटा चावल दालें मसाला जात, रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की खुआरी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड ब्रेडफोर्ड BD88JL। बुखारी, पसंद आपकी और हमारी बुखारी। दुल्हन वो जो पिया मन भाई,
8: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
7: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां कंगन कांटे,
8: बालियां अंगूठियां और हार,
7: जो दुल्हन करे सिंगार,
8: आज ही मामू काके की दुकान,
7: खालिस सोने की पहचान,
8: पाकिस्तान ज्वेलर्स से शरीफ लाइए
7: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
8: आपकी शान
7: हमारी आन,
8: क्वालिटी की पहचान।
7: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Duckworth Lane, Bradford, BD95ER, 01274 491 442।
8: पाकिस्तान ज्वेलर्स। अरे बेटी की शादी करीब आ रही है, समझ नहीं आ रही कि जेवर कहाँ से लूँ।
9: अरे भोली, तुम्हें नहीं पता कि सोफी बहन ने ऑकलैंड पर सोफी ज्वेलर्स के नाम से गोल्ड जेवरात की दुकान खोल दी है।
8: सोफी ज्वेलर्स?
9: सोफी नहीं, सोफी, नित नए डिजाइन के जेवरात, जिनकी क्या है बात, इंश्योरेंस और वैल्यूएशन का भी इंतजाम, लेडी स्टाफ।
8: सोफी ज्वेलर्स, 1:1 Oak Lane, BD94QU, 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
7: ब्रेडफोर्ड में फर्नीचर का सबसे खूबसूरत शोरूम लव फर्नीचर।
10: फर्नीचर तो आप घर घर देखते हैं, मगर जो देखते ही पसंद आ जाए वो है लव फर्नीचर, जहाँ पर ऑर्थोपेडिक डबल बेड सिर्फ 100 pounds से, जर्मन वार्डरोब, डाइनिंग टेबल, कॉफी टेबल, रग्स, कारपेट, मैट्रेसेस की वसी वैरायटी।
11: ओपन 7 days, 10 till 6, फ्री डिलीवरी ऑल ओवर वेस्ट यॉर्कशायर। लव फर्नीचर, कार्लाइल रोड, ब्रेडफोर्ड, अपोजिट बार्कलेज बैंक, पॉन्ड ब्रेडफोर्ड, 9627229627222।
10: लव फर्नीचर, फर्नीचर यू लव।
5: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
12: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
5: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
12: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
13: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।
1: You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
2: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
14: You're listening to Bradford Asian Radio,
1: 1413 AM and online.
0: जी बिल्कुल, मौजूद सामने इकराम, ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो 1413 AM की बहुत ही खूबसूरत, क्या कहते हैं, दिलकश नशियात जो है आप समाप्त फरमा रहे हैं। हमारे स्टूडियो टेलीफोन नंबर 01274306677 पर अपनी आरा जो है वो देना मत भूलिएगा। हमारी वेबसाइट bradfordasianradio.co.uk, ऑनेस्टली बहुत अच्छा लगता है, जेन्युइन रहना, नेचुरल जो अल्लाह ताला ने हमें तख्लीक किया है, और पुरसकून अल्लाह ताला हम सबको रखे, आमीन, पुरसकून सी एनवायरनमेंट हो और बहुत अच्छे लोगों का साथ हो। अल्लाह ताला हमारे जीवन साथियों को, हम सबको अल्लाह ताला इतने खूबसूरत सफ़र और सुहाने सफ़र में रखे, आमीन। बहुत सी दुआएं भी हैं और दुआओं के मरहूने मिन्नत, अपनी इंटेंशंस को ट्रू रखते हुए एक सुहाने सफ़र की तरफ बढ़ते चले जाएं। जिंदगियां जो हैं वो खूबसूरत जिसे कहते हैं ना, सफ़र पर रवा दवा हो तो बहुत ही अच्छा लगता है। खूबसूरत वर्ड अदा करते हुए कभी कभी एक चुटकुला सा जिसे कहते हैं वो ये कि बहुत से फेलोज़, और अक्सर ही मैं अपनी उस फेलो को आपके साथ ज़रूर शेयर करती हूँ, उसका ज़िक्र करना शेयर करती हूँ। ज़िंदगी में बहुत से लोग, अल्लाह पाक हम सबको सलामत रखे, आमीन, हमारी फैमिलीज़ को, बहुत से ऐसे फेलोज़ होते हैं जो कभी कभी बिछड़ जाते हैं लेकिन यादें बहुत अनमिट सी छोड़ जाते हैं। जेन का वंस अगेन ज़िक्र आ गया तो वो बड़ी अच्छी मुझे उसकी खूबसूरत सी बात याद रह जाती है। अक्सर देखिए आप इतनी खौफसूरत क्यों लग रही हैं मजाक के तौर पे जब वो कहती है, जोकिंग यार, जोकिंग क्या हो गया है। तो ये ऐसी बातें जो है ना ज़िंदगी का हिस्सा है। खैर, बहुत इस वक्त मेरे सामने एक प्यारा सा नगमा है, गीत है, और मज़ीद हम अपनी गुफ्तगू में आगे बढ़ें तो मेरे ख़्याल में सुन लेना चाहिए, लेकिन शुरू में ही इस बारे में आप कोई आरा ना कायम कर लीजिएगा, पूरा सॉन्ग सुनिएगा, आप रियली इससे महसूस होंगे। आइए सुनते हैं।

जी बिल्कुल मौजूद इकराम ब्रॉडकास्टेशन रेडियो 1413 AM की खूबसूरत सी नशात जेरे समात आप सबके, हमारी वेबसाइट ब्रॉडकास्टेशन रेडियो .co.uk और स्टूडियो टेलीफोन नंबर 01274306677। क्या ख्याल है कि जिंदगी की इस गहमा गहमी में, इस शोर में, और बाज़ औक़ात चाहते हुए और बाज़ औक़ात ना चाहते हुए भी हमारी शिरकत जो है कुछ जगहों पे होती है, कैसे अपने आप को हमने अपनी नुमाइंदगी का एहसास दिलाना है और दूसरों की कुछ ऐसे लोगों से वास्ता पड़ जाता है कि हमें वहाँ पे बाज़ औक़ात ठहरना भी मुश्किल लगता है, लेकिन लेकिन यहाँ पे हमें अपने ज़र्फ को दिखाना होता है। यही है ज़िंदगी, और इसी का नाम, इसी को जीने का नाम देते हैं, इसी को ज़िंदगी कहते हैं। मुझे अपनी टीचर्स की फिर वही बात याद आ जाती है कि वो हमारी एक बहुत अच्छी इंग्लिश टीचर होती थी, मैं अब कहूँगी कि वो मुझे हमेशा कहती है, प्लीज़ लाइफ इज़ ऑलरेडी वेरी टफ, डोंट मेक इज मोर टफ, ओके, डोंट मेक इट मोर टफ, ओके। तो मैं कभी कभी क्वेश्चन ऐसे करती ना, तो वो कहती है, तुम पता नहीं किधर से क्वेश्चन निकालती हो, मेरे मुझे तुम्हारे सवालों का जवाब देना ना बहुत मुश्किल लगता है। तो फिर मुझे बात बहुत अच्छी तरह याद रही कि वाकई ईजी वर्जन में लेना है, सुख शांति के साथ इंशाल्लाह लाइफ को, और अपनी फीलिंग्स और एहसास जज्बात जो हैं दूसरों के भी देखने होते हैं, और बहुत कुछ जिसे कहते हैं अपनी ज़ात की भी नफ़ी ही हो जाती है प्रैक्टिकल लाइफ में। बातें मैं कर लूँ, अनमोल मोती आपको सुनाऊँ, बड़ी बड़ी बातें सुनाऊँ और ये करूँ, लेकिन बात जब प्रैक्टिकल लाइफ में होती है ना, तो आई रियली लाइक इट कि टू बी वेरी वेरी प्रैक्टिकल। वो हमें अपनी ज़िंदगी में प्रैक्टिकल बनना है, और प्रैक्टिकली जब हम देखते हैं तो फिर वो लाइफ जो मैं कहती हूँ, ओ वो तो पढ़ा तो ऐसे था, तो वो कहते हैं मेरे ब्रदर बड़े जो, उनकी बात मुझे याद आ गई कि जब बेबी था, मेरा बेटा छोटा सा था, तो वो पता है कि माँ को बड़ा कहा, वो जॉली सी लाइफ, आप एकदम से वो बच्चों की जब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में पड़ते हैं तो कैसा वो ना, मेरे बात करने से पहले ही ऑब्वियस, मैं कहती इनको कैसे पता चल जाता, ऑब्वियसली वो एक एक्सपीरियंस से गुजरे होते हैं। तो वो कहते हैं, बेटा जी ये वो फिल्मों वाला मूवीज़ वाला सीन नहीं है कि तुम्हारा बेटा अभी तुम्हारे हाथ में छोटा है, यूं करके आप खेत से गुजर के आओगी किसी पार्क वगैरह से, तो ये बड़ा हुआ बड़ा आपके हाथों में हो जाएगा। ये प्रैक्टिकल लाइफ है, प्रैक्टिकली आपने अब आगे बच्चों के साथ टाइम गुजारना है, तो ये लाइफ हो जाती है। सेम फिर मैंने कहा कि यही बात मेरे लिए काफ़ी है। एनीवे हम सब, आप सब सोच रहे होंगे कि वाकई जब हम कोई चीज़ जितना भी जैसे कहते इल्म भी पढ़ लें, और बड़ी बड़ी किताबें, बड़ी स्किल, फ़लसफे जो फिलॉसफी होती है वो पढ़ लें, तो जब हम प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं ना, तो फिर हमें वो एक साइड पे बाज़ौकात रख के, तो लेकिन अगर हम उन बड़ी बड़ी बातों को अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में भी अप्लाई करें, तो ये भी एक आर्ट है। इस बारे में भी आप सोचिएगा। मेरी अपनी फ्रेंड की मुझे बड़ी खूबसूरत सी बात याद आ गई, मुझे कहती हो, अल्लाह की बंदी कभी ये सिंपल सादे लोगों को देखा है कैसे लाइफ इंजॉय करते हैं, और तुम लोग जो होते हैं तुम बड़ी बड़ी किताबों के बुक वर्म बने हुए हो, और फिर कहते हो मुझे ये टेंशन मुझे वो, हम देखो गरीब, तो गरीब मैं खुद अपने आप को गरीब कहती हूँ, अल्लाह ताला का करम है, फजल है, हम सादा से लोग देखो लाइफ को इंजॉय करना सीखते हैं। तो लाइफ जो होती है ना, इंजॉयमेंट का मतलब मैं इन अ गुड सेंस बात कर रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह,
तो ये सारी बातों की, रंगों की, बातों की अमेजिश जो होती है ना, ये हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में होती है। वहाँ पे हमने अपनी एजुकेशन कैसे यूज़ करनी है, अपने स्किल्स कैसे यूज़ करने हैं, और बाज़ुकात स्किल्स और एजुकेशन को जो हम अपने यूँ बिखरते देखते हैं, उनको समेटना कैसे है, निभाना, सुलझाना, ये सारे ज़िंदगी के साथ साथ हैं जी लगे हुए मामलात। कोशिश होती है खूबसूरत सा प्रोग्राम हो, लाइवली, जॉली और रंगों से भरपूर। अल्लाह ताला ने हमें जो लाइफ दी, मेरी बहुत सी बल्कि फ्रेंड्स कहती तो लाइफ एक दफ़ा मिलती है भाई, इतना सा दिमाग होता है उसमें इतना कुछ ना भर लिया करो। एनीवे तो इसलिए फिर मैं बड़ा लाइफ का जो सफ़र है ना, इसको बहुत से मैं खुद सोचती हूँ, देखती हूँ कि मोड़ बड़े काटने पड़ते हैं, बड़े बड़े मोड़ आते हैं। खैर, इन सब चीज़ों को, बातों को हम लेके चलेंगे। आइए एक खूबसूरत सा, इस वक्त जो ये सॉन्ग्स का इम्तिजाज जो सिलेक्शन है ना, मैं देख रही हूँ कि चूंकि बातें भी लाइट लाइट सी और इतने स्किल से, और जो सम टाइम अल्लाह ताला हम सबको खतरा से महफूज रखे, आमीन, पुर ख़तर से जो मोमेंट होते हैं, मराहिल, अल्लाह ताला हम सबको महफूज रखे, आमीन, तो अपनी हिफाजत में रखे, आमीन। तो ये रियलिटीज़ ऑफ लाइफ को फेस करने में तो अल्लाह ताला से आसानियों की दुआ है कि अल्लाह ताला हमें आसानियाँ दे और आसानियाँ तकसीम करने की तौफीक अता फरमाए। हल्का फुल्का सा ये कोशिश कर रही हूँ, आज मैंने कोई गज़लों का इंतखाब नहीं किया, कोई ऐसे जो ओल्ड सॉन्ग्स हैं उनसे मे भी कि मैं जैसे कहते हैं ना कि इरादतन अवॉइड कर रही हूँ, और लाइट लाइट सा म्यूज़िक इस वक्त टोन लाइट रखें और हल्के हल्के धीमे धीमे से सुरों के साथ अपने आप को महसूस करें तो कैसा लगता है। बहुत कुछ चलता रहता है हमारी, आप सब नशरियात सुनते रहते हैं, बड़े बड़े सॉन्ग्स और वो इम्तिजाज ओल्ड, लाइक ओल्ड इज़ गोल्ड, ओल्ड न्यू, फिर लेटेस्ट, इस तरह से। लेकिन इस वक्त ऑनेस्टली मैं ये सोच रही हूँ कि बात बड़े धीरेपन में और मध्यम सुरों के साथ हम अपनी बातों को मिला के, तो ये मध्यम मध्यम जिसे कहते हैं ना प्रोग्राम रखें, तो क्या ख्याल है, अच्छा लगता है। अगर कोई ऐसी बात है तो आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं हमारे स्टूडियो नंबर पर 01274306677। धमाकादार म्यूज़िक सुनना चाहते हैं तो भी आप अपनी फरमाइश का इजहार कर सकते हैं, अदरवाइज़ तो यही होता है, मैं पूछती हूँ अपने कॉलर से तो कहते हैं आप अपनी चॉइस का कोई अच्छा सा नगमा सुना दें, तो मुझे अच्छा लगता है कि धीरा धीरापन और लाइट मोड, और कभी कभी क्या ख्याल है, ऐसा सुनना अच्छा लगता है। आइए एक खूबसूरत सा नगमा सुनते हैं, आई होप यू विल इन्जॉय दिस।

0: Master Jewelers, 93 Hotham Grange Road, Bradford 7414760।
1: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
2: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट के स्पेशल ऑफर का फायदा उठाया है, जहाँ कारपेट फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
1: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग्स, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078। शादी आ गई है सर पर और कोई फोटोग्राफर नहीं है घर पर।
2: लगता है आपने एशियन वेडिंग्स UK.com का नाम नहीं सुना, जो आपकी शादी के चलते फिरते हसीन लम्हात हमेशा के लिए फोटोज और वीडियोस के जरिए महफूज करते हैं और फिल्म ऐसी बनाते हैं दूल्हा दुल्हन जैसी चाहते हैं।
1: डिजिटल क्वालिटी, तेज और दोस्ताना सर्विस, मेल और फीमेल फोटोग्राफर्स,
2: जिंदगी के यादगार दिन को यादगार तरीन बनवाइए।
1: आज ही मुबीन का नंबर मिलाइए
2: 07548419678।
1: एशियन वेडिंग्स UK.com, जिनकी आम सी फिल्म भी बॉलीवुड से नहीं है कम।
3: आपकी दिलों में रस खोलने वाली सदाई दिल नवाज,
4: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
3: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
4: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
5: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।
6: You're listening to Bradford Asian Radio,
7: 1413 AM and online. This is Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
8: जी बिल्कुल मौजूद सामईन इकराम, ये ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो 1413 AM है जी। आयशा अख्तर आपके लिए बहुत ही खूबसूरत सा प्रोग्राम इस वक्त पेश कर रही हैं। हमारे प्रोग्राम से आप महजूज हो रहे हैं ये, और फिर महजूज होते हैं, और ये जो यादें होती हैं प्रोग्राम्स की, ये जिंदगी के किसी भी मोड़ पर यकीन करें कुछ आपकी समेटी हुई, बचा के रखी हुई, जो आपकी जिसे आरा कहते हैं, फीडबैक कहते हैं, वो कहीं ना कहीं मुझे यकीन करें मौसूल हो ही जाती है। बहुत शुक्रिया आपका, हमेशा से प्रोग्राम्स को पसंद करने का बहुत शुक्रिया। सो फार अच्छी मुझे फीडबैक मिल जाती है, जस्ट इन केस अगर कोई ऐसी, ऑब्वियसली हम इंसान हैं, कोई बात होती है तो बड़े अच्छे अंदाज से मेरे तक पहुंचती है कि अगर हम इस बात को या इस चीज़ को ऐसे नहीं ऐसे कर लेते तो क्या खूब होता। बहुत ही अच्छा है, ज़रूर अपनी आरा दीजिएगा और दिया करें, ताकि हम अपने प्रोग्राम्स को, मैं स्पेशली अपने बारे में, कि अपने प्रोग्राम्स को मज़ीद बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करूं और आप तक वेरी इफ़ेक्टिव इंफॉर्मेटिव जो इंफॉर्मेशंस होती हैं, ऑब्वियसली इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशंस होती हैं, ज़रूर सोचिएगा इस बारे में, वो पहुंचाएं और जहनों को, दिलो दिमाग को तरोताज़ा रखने के साथ साथ तबीयत जो है वो खिली खिली रहे, अपने टॉपिक से भी इधर उधर ना हो हम, और बात कर भी लें, कह भी दें, बात बन भी जाए और बात जो है वो सह भी ली जाए। क्या बात है जी, यही तो होता है एक बात की खूबसूरती का राज, के खूबसूरत अंदाज में बात चाहे कड़वी ही क्यों ना हो लेकिन मीठे अंदाज से कर दी जाए तो उसकी जितनी भी त्रावत जिसे कहते हैं दूसरों तक पहुंच जाती है। लेकिन बात बहुत मीठी मीठी हो, कड़वे अंदाज में कह दी जाए तो सुर स्वाद ही बात दा ख़त्म हो जाता है। तो ऐत नहीं ना करना असीफे, क्योंकि फिर पंजाबी तड़का ना लगे तो फिर साड़ा रंग किदा सामने आवे जी। पंजाबी तड़का थोड़ा सा लगा देते हैं बातों बातों में, खूबसूरत सा नगमा तो नहीं, इस वक्त बहुत खूबसूरत गज़ल चले बताते हैं पंकज दास की। आपको पता है ये गज़लें जो है कुछ पसंद है आपको, किसी की गज़ल पसंद है बिल्कुल आप भी हमें फरमाइश कर सकते हैं, फ़िलहाल तो इस पर इक्तफा करें। तो आइए एक खूबसूरत सी गज़ल सुनते हैं।

0: बाकी सब गंगा।
1: जी बिल्कुल, हम सब ही धनवाल ही बनने की कोशिश करें, क्या ख्याल है? हम सबको मीठा मीठा बनते रहना चाहिए भाई, क्या ख्याल है? मीठा मीठा इन अ पॉजिटिव सेंस एंड धनवाल इन अ वेरी इफेक्टिव वे, क्या बात है? जी बिल्कुल, क्या बात है कि वो तभी तो कुछ लोगों से हम हजम हो पाएंगे और झेल सकेंगे हमें। ये बड़े स्किल स्ट्रॉन्ग वर्ड्स नहीं हो गए, क्योंकि कोशिश यही करनी है कि अच्छे वर्जन में रहते हुए यकीन करें कि बहुत से जब हालात से भी वास्ता पड़ता है और जगहों पे भी जाने का, तो पहले यूं करके हम झुरझुरी जिसे कहते हैं ना लेते हैं, लेकिन फिर कहते हैं नहीं, मध्यम तरीके से गुजर जाते हैं। और यकीन करें ऐसे ख्यालात के साथ उस सिचुएशन से बड़े अच्छे तरीके से निकल जाते हैं। खैर, ये बहुत कुछ कि हमें किसी को हमें झेलना ना पड़े, और धनवाल जो हैं वो हम बहुत खूबसूरती से बने, इंशाल्लाह कोशिश पूरी कोशिश होनी चाहिए। बहुत ही खूबसूरत वर्डिंग भी आजी हमारे प्रोग्राम में। अब कोशिश कर रही हूँ कि ये दिलकश सी जो हमने गज़ल समात फरमाई, तो इसके साथ एक खूबसूरत सा एक और सॉन्ग जो है वो सुना जाए, ताकि पहले गीतों का भी असर जो है ज़ायल ना हो, वो तबीयत में घायल हो जाए, क्या ख्याल है? जाए ताकि पहले गीतों का भी असर जो है ज़ायल ना हो, वो तबीयत में घायल हो जाए, क्या ख्याल है?

जी बिल्कुल मजे साहिर इकरम, मेरे पास एक गज़ल है और जैसा कि अभी मैंने कहा कि कुछ सिचुएशंस और हालात वाकियात में से गुज़रते हुए थोड़ी सी झुरझुरी तो आती है, लेकिन फिर कहते हो नहीं भाई हिम्मत बांधें आगे चलें, ये रियलिटीज़ ऑफ लाइफ होती है ना। तो मुझे हमेशा की तरह मैं कहती हूँ अच्छा लगता है कि हम रियल वर्ल्ड में रहते हुए इन सिचुएशंस का सामना करते हुए हम शेयर करें बातों को। अल्हम्दुलिल्लाह होती हैं, आपसे अनमोल मोती भी डिस्कस होते हैं, बड़ी बड़ी खूबसूरत बातें भी और देखें हमने की हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये रियलिटीज़ ऑफ लाइफ जो होती है ना, यकीन करें बहुत अच्छा लगता है समटाइम्स इनमें रहना। और मुझे ये गज़ल अच्छी लगी और उम्मीद करती हूँ कि आपको भी अच्छी लगेगी। चलें आए सुनते हैं और फिर कोई डिसीजन लेते हैं। अच्छी ही है, अच्छी है, बहुत अच्छी है जी, सुनते हैं।

जी मौजूद सामीन इकराम, प्रेफरेशन रेडियो 1413 AM की खूबसूरत नशरियात आप समात फरमा रहे हैं। हमारी वेबसाइट broadfederationradio.co.uk और स्टूडियो टेलीफोन नंबर 01274306677 है जी। जी ऐसा ही है, हालात वाकयात की वो जिसे कहते हैं जद में, मैं ये लफ्ज़ है एक्चुअली इस्तेमाल करते हुए थोड़ी हेजिटेशन फील कर रही थी कि हालात वाकयात की जद में आना। जी चाहते हुए ना चाहते हुए भी, लेकिन इससे रिलेटेड कुछ म्यूज़िक भी है हमारे पास, तो वो अभी शेयर करते हैं। लेकिन कुछ एहसास हमारे खुशी के ऐसे होते हैं कि जिसमें दिल जो है वो हमें झूमता नज़र आता है, और हम चाहते हैं के इन खूबसूरत लम्हों को कहीं ना कहीं से कैद कर लिया जाए। मेरे ख़्याल में आप लोगों को भी बहुत ज़्यादा इस सिचुएशन से भी समटाइम्स सामना करना पड़ जाता है। और फिर ये भी बात कहते हैं कि जी ओ जो अच्छे मोमेंट होते हैं बड़ी जल्दी गुजर जाते हैं। तो चलिए आए एक खूबसूरत सा भरपूर सा हम सॉन्ग सुनते हैं, होपफुली ज़िंदगी से भरपूर, और आप इसको इंजॉय करेंगे हमारे साथ इस म्यूज़िक को। आइए एक खूबसूरत सा नगमा सुनते हैं।

0: जी माजरत खा हूँ कि आपको इतनी खूबसूरत दमाल में मैंने इंटरफेरेंस की और बहुत ही दिलचस्पी से मौजूद सामईन इकराम जो है वो समात फरमा रहे हैं। एक तो वाकई बात कि जब सुनने वाले बाजौक हो तो प्रोग्राम करने में भी बहुत अच्छा लगता है। जी बिल्कुल जी, करेक्शन का बहुत शुक्रिया। और इतनी दिलचस्पी के साथ आप हमारा प्रोग्राम समाप्त फरमा रहे हैं, आप सबका बहुत शुक्रिया। फीडबैक आई है जी, ख्याल रखें कि धमाल संग, गजल, सूफी संग जो है, सूफी कलाम जो है, अल्हम्दुलिल्लाह आपको पता है कि ख्याल तो पूरा रखा जाता है लेकिन इंसान है, इधर उधर कोई अल्फाज हो जाते हैं। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया, मुझे बहुत अच्छा लगता है आप इतने खूबसूरत तरीके से वजाहत करते हैं। जी धमाल है शाजिया खुशिक की, और अभी फिर घड़ी की तरफ मैंने थोड़ा सा, मुझे अच्छा लगा कि मैं धमाल के अंदर आप अपनी करेक्शन कर लूं। ब्रेक पे जाएंगे मजे सामने क्राम अभी बातें करते हुए, और फिर आफ्टर द ब्रेक खूबसूरत सी धमाल को जैसे आप खूबसूरती से सुन रहे हैं, आपकी दिलचस्पी को मैं बिल्कुल भी इसमें खलल नहीं डालूंगी, और महवियत से जितना हम इसको धमाल को सुन रहे हैं और एक कैफियत सी तारी है उसे लुत्फानंदोज होंगे जी बिल्कुल। लेकिन आफ्टर द ब्रेक, क्योंकि अब ब्रेक में फिर इसके इसमें इंटरप्शन जो है मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है, क्योंकि वाकई लुत्फानंदोज होने वाले ये मोमेंट्स हैं। और मैनचेस्टर से हमें रुखसार अहमद साहब ने बड़ी देर के बाद ज्वाइन किया, और उनकी खूबसूरत फीडबैक का और करेक्शन का बहुत शुक्रिया। और हमेशा की तरह सब सलामत रहें, खुश रहें।
1: You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
2: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
3: And the winner is...
4: And the winner is...
5: And the winner is...
3: Your business being heard on the radio.
6: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
7: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक, आटा चावल दालें मसाला जात, रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड ब्रेडफोर्ड BD88JL। बुखारी पसंद आपकी और हमारी बुखारी। दुल्हन वो जो पिया मन भाए,
8: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
7: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां कंगन कांटे,
8: बालियां अंगूठियां और हार,
7: जो दुल्हन करे सिंगार,
8: आज ही मामू काकी की दुकान,
7: खालिस सोने की पहचान,
8: पाकिस्तान ज्वेलर्स से शरीफ लाइए
7: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
8: आपकी शान
7: हमारी आन,
8: क्वालिटी की पहचान।
7: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Duckworth Lane ब्रेडफोर्ड, BD95ER, 01274 491 442।
8: पाकिस्तान ज्वेलर्स। अरे बेटी की शादी करीब आ रही है, समझ नहीं आ रही कि जेवर कहाँ से लूँ।
9: अरे भोली, तुम्हें नहीं पता कि सोफी बहन ने ऑकलैंड पर सोफी ज्वेलर्स के नाम से गोल्ड जेवरात की दुकान खोल दी है।
8: सूफी ज्वेलर्स?
9: सूफी नहीं, सोफी, नित नए डिजाइन के जेवरात, जिनकी क्या है बात, इंश्योरेंस और वैल्यूएशन का भी इंतजाम, लेडी स्टाफ।
8: सोफी ज्वेलर्स, 121 ऑकलैंड, BD94QU, 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
10: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers, or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274-201-679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future. future.
5: Are you looking for nursery and after-school childcare in Bradford? Established in 2012, Raising Explorers provides outstanding childcare and education for children aged 0 to 16 years, all under one roof. From full-day nursery care for babies and young children to after-school pickups, homework support and exciting holiday clubs, language classes, madrasa services with locations in Manningham, Lister Hill Science Park, Thornbury and Hare Hills Leeds, Raising Explorers. Visit www.raisingexplorers.co.uk.
11: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
12: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
11: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
12: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
13: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।
1: You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
2: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
1: You're listening to Bradford Asian Radio,
14: 1413 AM and online.

जी बिल्कुल मोज़ेस, सामईन इकराम, बिल्कुल बिल्कुल ब्रेफरेशन रेडियो 1413 AM आपके लिए बहुत ही खूबसूरत ये लम्हात जो है प्रोग्राम की शक्ल में, एक इंफॉर्मेशन की शक्ल में शेयर कर रहा है। हमारी वेबसाइट brafordationradio.co.uk है और स्टूडियो टेलीफोन नंबर 01274306677। आपकी आरा हमारे लिए बहुत कीमती होती है और आपका प्रोग्राम के साथ जुड़े रहना यही हमारा मकसद होता है प्रोग्राम करने का यहाँ पे, और जहाँ कहीं भी हमारी आवाज़ जो है आपकी समातों से टकरा रही है, आप लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। और आप यकीन करें कि जो आज का टॉपिक रहा कि इंटेंशंस हमारी ट्रू हो, खालिस नीयत के साथ, अब यहाँ पे भी वो एंड पे कंक्लूजन के तौर पे मैं यही कहूँगी कि हमारी इंटेंशंस ट्रू हो तो हमें जो प्रोग्राम भी समाप्त कर रहे हैं उसमें से हम अपने पसंदीदा जो नुकात होते हैं वो चुन ही लेते हैं। क्या ख्याल है आपका इस बारे में? जैसा कि अभी हमारे मुअज़्ज़ज़ कॉलर भी हमसे ये बात शेयर कर रहे थे जो कि नबी अकरम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक का मफहूम है कि हिकमत और दानाई मोमिन की गुमशुदा मिरास है, इसे जहाँ कहीं पाओ, जहाँ कहीं इसे पाओ तो इसे समेट लो। तो अब ये बात है कि हमने किस जगह से कोई अच्छी चीज़ ले ली है, कहीं पे आप सफ़र में हैं, आपको अच्छी चीज़ अपने अंदर एब्जॉर्व करें। आप किसी महफिल में हैं, किसी जगह के ऊपर हैं, कहीं भी दुनिया के कोने के ऊपर, वो आप समझे कि ये खूबसूरत हिकमत व दानाई की कोई चीज़ है, हमें वो इंफॉर्मेशन फ्राहम कर रही है, हमारे अंदर एक जिसे कहते हैं ना कि खूबसूरत तब्दीली आ रही है, चेंज आ रही है, हम उससे न सिर्फ लुत्फ़अंदोज़ हुए बल्कि हम समझते कि ओ वाओ, इसकी तो मुझे तलाश थी, ओ वाओ, ये इन्फॉर्मेशन तो मुझे चाहिए थी, तो वो ले लें, वो हमारे लिए है। आप कोई इसका देखें, इंसानियत का भी यहाँ पे दर्स मिल गया। अब बात ये है कि ज़ूमानी बातें बिल्कुल भी नहीं है, ये क्लियर है, जिसमें ह्यूमैनिटी कम्स फर्स्ट, एक दुनिया ताहद नज़र दुनिया है, और बेहतरीन वो लम्हात हैं कि जिसमें हम कोई खूबसूरत सी चीज़ अपने अंदर अडॉप्ट कर लें तो वो हमारी शख्सियत जो है वो निखर जाए और हम कहें कि वाकई मुझे इस खूबसूरत इन्फॉर्मेशन की, इस खूबसूरत चीज़ की तलाश थी। जी बिल्कुल, पॉजिटिव रहते हुए वो अपनी ज़ात को पॉजिटिव करना है, निखारना है, ये खूबसूरतियों का सफ़र। अब घड़ी की तरफ मेरी नज़र है और मैं कहती हूँ कि एक खूबसूरत सा कलाम जिसे मैं अब इन अल्फाज के ऊपर ख़त्म करने का कहूँगी, आपसे इजाज़त भी लूँगी, अल्लाह हाफिज़ कहूँगी कि नाउ इज़ द टाइम टू क्लोज योर आइज़ एंड लेट योर सोल rest. Honestly, you will really enjoy this music. Music है या ये कहते हैं कि music के तार हैं, धुनें हैं, अब मैं ज़रा बहुत carefully selection करूँ अल्फाज की कि ये कोई धुन है जो आपके न सिर्फ दिमाग को तरावत और ठंडक पहुँचा रही है बल्कि वो कहते हैं कि when you close your eyes and you will feel wow, it's really a good musically आप या soulful सूफ़ी song कह लें तो सूफ़ी कलाम कह लें, अब ये मैंने आप पे छोड़ा है, but we have to close your eyes and ये ज़रूरी नहीं कि आप सचमुच क्लोज करें जहाँ कहीं भी हैं, obviously काम काज करनी है, लेकिन मीनिंग आपको समझ आ गए होंगे और क्या करना है, एंड लेट आवर सोल्स रेस्ट, लेट्स मूव ऑन नाउ।

0: winner is...
1: And the winner is...
2: And the winner is...
0: Your business being heard on the radio.
3: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
4: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिलनवाज,
5: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
4: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
5: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
6: ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो।
7: आओ असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चले।
8: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं।
7: अरे पगली, अब दुबई ब्रैडफोर्ड में ही आ गई। जी हाँ, दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है।
8: झिलमिल करते कांटे, बालियां, कंगन, गले के हार 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार।
7: टॉप क्वालिटी, बेहतरीन सर्विस, ओपन 7 डेज।
8: 30 वेटले हिल ब्रैडफोर्ड, BD8 8NG, फोन 01274 477 2577। दुबई ज्वेलर्स,
7: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका। पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ शोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक। आटा, चावल, दालें, मसाला जात, रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे। फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर, नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड, ब्रैडफोर्ड, BD8 8JL। बुखारी, पसंद आपकी और हमारी बुखारी।
9: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
8: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रैडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
7: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रैडफोर्ड, BD8 8DR, टेलीफोन 07885 428 3499, अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड रोड, ब्रैडफोर्ड 3।

0: Master Jewelers, 93 Hawthorne Grange Road, Bradford 7, 01274-414-760.
1: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
2: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
1: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग्स, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
3: हिसाबे उम्र का इतना सा गोशवारा है, तुम्हें निकाल के देखा तो सब खसारा है। मैं महमूद रिजवी अकाउंटेंट, जी हाँ, छोटे से छोटे टैक्सी अकाउंट से लेकर
4: बड़े अकाउंट। ब्रेकफोर्ड एशियन रेडियो ऑन 1413।

0: अजान का वक्त हुआ चाहता है इस अजान के लिए हमें तावन हासिल है कूपर हॉल सिलिस्टर्स लिस्टर हिल्स साइंस पार्क कैंपस रोड ब्रेडफोर्ड BD71HR
1: अजान दे गई हजरत बिलाल की हस्ती अजान दे गई हजरत बिलाल की हस्ती नमाज पढ़ गए दुनिया में करबला वाले सामीन ब्रेडफोर्ड और इसके मुजाफात में अजान का वक्त हुआ चाहता है।

أشهد أن لا

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: You're listening to Bradford Asian Radio.
1: 1413 AM and online. You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
2: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
3: And the winner is...
4: And the winner is...
5: And the winner is...
3: Your business being heard on the radio.
6: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
7: वाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद आदर, पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक, आटा चावल दालें मसाला जात, रोजाना ताज़ा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, वाइट एबी रोड ब्रेडफोर्ड BD88JL। बुखारी पसंद आपकी और हमारी बुखारी। दुल्हन वो जो पिया मन भाई,
8: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
7: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां कंगन कांटे,
8: बालियां अंगूठियां और हार,
7: जो दुल्हन करे सिंगार,
8: आज ही मामू काके की दुकान,
7: खालिस सोने की पहचान,
8: पाकिस्तान ज्वेलर्स से शरीफ लाइए
7: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
8: आपकी शान
7: हमारी आन,
8: क्वालिटी की पहचान।
7: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Duckworth Lane ब्रेडफोर्ड, BD95VR 01274 491 442।
8: पाकिस्तान ज्वेलर्स। अरे बेटी की शादी करीब आ रही है, समझ नहीं आ रही कि जेवर कहाँ से लूँ।
9: अरे भोली, तुम्हें नहीं पता कि सोफी बहन ने ऑकलैंड पर सोफी ज्वेलर्स के नाम से गोल्ड जेवरात की दुकान खोल दी है।
8: सोफी ज्वेलर्स?
9: सोफी नहीं, सोफी, नित नए डिजाइन के जेवरात, जिनकी क्या है बात, इंश्योरेंस और वैल्यूएशन का भी इंतजाम, लेडी स्टाफ।
8: सोफी ज्वेलर्स, 121 ऑकलैंड, BD94QU 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
10: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाई दिल नवाज,
11: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
10: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
11: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
12: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।
1: You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
2: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.

0: listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
1: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
2: You're listening to Bradford Asian Radio,
0: 1413 AM and online.
3: You're listening to
4: Bradford Asian Radio on 1413 AM.
3: And the winner is...
5: And the winner is...
6: And the winner is...
3: Your business being heard on the radio.
7: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
8: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
9: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
8: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
9: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
10: ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो।
11: आओ असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चले।
12: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं।
11: अरे पगली, अब दुबई ब्रैडफोर्ड में ही आ गई। जी हाँ, दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है।
12: झिलमिल करते कांटे, बालियां, कंगन, गले के हार 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार।
11: टॉप क्वालिटी, बेहतरीन सर्विस, ओपन 7 डेज।
12: 30 वेटले हिल ब्रैडफोर्ड, BD8 8NG, फोन 01274477257। दुबई ज्वेलर्स,
11: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका। पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक। आटा, चावल, दालें, मसाला जात, रोजाना ताज़ा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे। फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर, नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड, ब्रैडफोर्ड, BD8 8JL। बुखारी, पसंद आपकी और हमारी बुखारी।
13: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
12: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रैडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
11: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबी रोड, ब्रैडफोर्ड, BD8 8DR। टेलीफोन 07885 428349। अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड रोड।

0: Master Jewelers, 93 Hotham Grange Road, Bradford 7414760।
1: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
2: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
1: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो, और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डाइट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग्स, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
3: क्या आपकी आवाज़ खूबसूरत है? क्या आप में बोलने की जरूरत है? अगर ऐसी ही सूरत है तो ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो को आपकी जरूरत है। आज ही स्टूडियो नंबर 01274306677 पर कॉल कीजिए और अपनी आवाज सुनने वालों के दिलों तक पहुंचाइए और खुद को रेडियो स्टार बनाइए। याद रखिए, अगर आपको बड़ी बड़ी छोड़ने की आदत है तो ये आपके कल के बड़ा ब्रॉडकास्टर बनने की जमानत है। आज ही स्टूडियो नंबर 01274306677 पर कॉल कीजिए। एशियन रेडियो
4: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
5: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
4: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
5: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
6: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।
7: You're listening to Bradford Asian Radio,
8: 1413 AM and online.

ये ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो की आवाज़ है 1413 मीडियम वेव पर यॉर्कशायर की सस्तीन वादी में। दुनिया के चार कोनों में इस वक्त इसे ऑनलाइन सुना जा रहा है www.bradfordasianradio.co.uk पर। इसके अलावा हमारे वो अहबाब जिनका फेसबुक अकाउंट है, मेरा पेज है RJ रिफत अब्बास, इस पे तशरीफ लाइए, एक मरतबा लाइक कर लें और फिर आप हमारी लाइव नशियात में शामिल हो पाएंगे। साथ ही साथ हमारे वो अहबाब जो हमें आयरलैंड, स्कॉटलैंड या इंग्लैंड के किसी भी शहर में सुन रहे हैं और हमारी आज की इस बज़्म गज़ल उसने छेड़ी की जीनत और तौकीर बढ़ाना चाहें, हम उन्हें दिल की तमाम तर गहराइयों से अपने स्टूडियो के टेलीफोन नंबर 01274306677 पर खुश आमदीद कहेंगे।

0: और दोस्तों आप सुन रहे हैं गजल उसने छेड़ी, मैं हूँ रिफत अब्बास। हमारी नशियात आपकी खिदमत में 1413 मीडियम वेव पर यॉर्कशायर की सस्ती वादी में दुनिया के चार कोनों में इस वक्त इसे ऑनलाइन सुना जा रहा है www.bedfordasianradio.co.uk पर। इसके अलावा हमारे वो अहबाब जो हमें आयरलैंड, स्कॉटलैंड या इंग्लैंड के किसी भी शहर में सुन रहे हैं, हम उन्हें दिल की तमाम तर गहराइयों से गज़ल उसने छेड़ी में खुशामदीद कहते हैं। खुशामदीद कहना चाहेंगे हम हडर्सफील्ड की हसीन फ़जाओं से रियासत साहब तशरीफ़ ला चुके हैं, वेकफील्ड से वक़ार तशरीफ़ ला चुके हैं, सुमैरा बिटिया हमारी ब्रेडफोर्ड 3 से तशरीफ़ ला चुकी हैं और इनका एक उधार हम पर बाकी है जो हम इंशाल्लाह कमर्शियल के वक्फे के बाद इनकी नज़र करेंगे। लेकिन मौजूद हैं रियाज साहब ब्रेडफोर्ड की ससीन वादी से, डॉक्टर माहरुख साहिबा ब्रेडफोर्ड की ससीन वादी से, और अभी अभी तशरीफ़ लाए हैं हमारे बहुत ही मोहतरम लिसनर नज़ीर अहमद साहब लैया पंजाब पाकिस्तान से, जिन अहबाब के इस्माए ग्रामी मैंने लिए हैं उन सब को जानिब से तमाम ही सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत और अकीदत से लबरेज सलाम कबूल हो। साथ ही साथ उन्होंने ढेर दुआओं और प्यार का तोहफा भी भेजा है। और अब हम आप सबको खुशामदीद कहते हुए लिए चल रहे हैं लैया पंजाब पाकिस्तान, जहां मौजूद हैं हमारे मोहतरम नज़ीर अहमद साहब। ये इनकी मोहब्बत है, चाहत है और प्यार है कि इस कदर बाकायदगी के साथ हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाकर इसकी इज्जत और तौकीर बढ़ाते हैं। तो आइए हम ये खूबसूरत गीत इनके नाम करते हैं और आपकी इन मोहब्बत और दुआओं का बहुत शुक्रिया। हमेशा की तरह उनका पैगाम वही है कि अस्सलामु अलैकुम, सदा सलामत रहें, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, आप खुद बहुत अच्छे हैं, अल्लाह आपको भी सलामत रखे, सेहत से रखे और अपने हिज़्ज़ो अमान में रखे। आपका तोहफा लेकर हाजिर हूँ, जिस मोहब्बत से आप आते हैं उसी मोहब्बत से मैं एक खुसूसी गीत का तोहफा आपकी नज़र किया करता हूँ। नज़ीर अहमद साहब लैया पंजाब पाकिस्तान से आमद का दिल की गहराइयों से बहुत शुक्रिया।
1: मैं बड़ा चाहती कि पहला प्यार होता फिर व्याह।
2: मैं तो किधर प्यार करना?
1: थोड़े नाल। अगले जन्म की पता केड़ा पशु जानवर बन जाना?
3: ये तो है, उन्हें व्याह नहीं होता, उन्हें कला प्यार होता।
4: जानवर किसी थान

0: Bradford Asian Radio.
1: 1413 AM and online. You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
2: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
3: And the winner is...
4: And the winner is...
5: And the winner is...
3: Your business being heard on the radio.
6: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
7: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक, आटा चावल दालें मसाला जात, रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड ब्रेडफोर्ड BD88JL। बुखारी पसंद आपकी और हमारी बुखारी। दुल्हन वो जो पिया मन भाए,
8: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
7: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां कंगन कांटे,
8: बालियां अंगूठियां और हार,
7: जो दुल्हन करे सिंगार,
8: आज ही मामू काके की दुकान,
7: खालिस सोने की पहचान,
8: पाकिस्तान ज्वेलर्स से शरीफ लाइए
7: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
8: आपकी शान
7: हमारी आन,
8: क्वालिटी की पहचान।
7: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Duckworth Lane ब्रेडफोर्ड, BD95ER 01274 491 442।
8: पाकिस्तान ज्वेलर्स। अरे बेटी की शादी करीब आ रही है, समझ नहीं आ रही कि जेवर कहाँ से लूँ।
9: अरे भोली, तुम्हें नहीं पता कि सोफी बहन ने ऑकलैंड पर सोफी ज्वेलर्स के नाम से गोल्ड जेवरात की दुकान खोल दी है।
8: सोफी ज्वेलर्स?
9: सोफी नहीं, सोफी, नित नए डिजाइन के जेवरात, जिनकी क्या है बात, इंश्योरेंस और वैल्यूएशन का भी इंतजाम, लेडी स्टाफ।
8: सोफी ज्वेलर्स, 121 Oak Lane, BD94QU 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
10: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers, or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274-201-679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.
7: अरे ये पूरे ब्रेडफोर्ड में क्या है शोर?
11: आपको नहीं पता, ऑफर्स इन मेनी गो स्टोर, रोजाना ताजा सब्जियां, फल फ्रूट, सलाद, मीट, चिकन, आटा, दाल, चावल और मसाला, क्वालिटी में सबसे आला और सर्विस में सबसे बाला।
7: हर समत मचा है जिसका शोर, वो है मैनिंगम सुपर स्टोर। मैनिंगम सुपर स्टोर, कार्लाइल रोड ब्रेडफोर्ड, BD88AX, फोन ब्रेडफोर्ड 4955555। हफ्ते के सातों दिन आपकी खिदमत में पेश पेश, मैनिंगम सुपर स्टोर।
11: मैनिंगम सुपर स्टोर,
12: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
7: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
12: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
7: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
13: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।
1: You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
2: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.

और दोस्तों, इससे पहले कि हम हस्ब वादा मिडिल्स बरा की हसीन फ़ज़ाओं में ब्रेडफोर्ड से भेजा हुआ यह हसीन तोहफ़ा अपनी बावची खाने की रानी प्यारी सी बिटिया सुमैरा ब्रेडफोर्ड 3 का उनकी कज़न्स के हवाले करें, हम खुश आमदीद कहना चाहेंगे मोहम्मद हफीज़ साहब को, जिन्होंने ये नहीं बताया कि तशरीफ़ कहाँ से लाए हैं। बहरहाल हफीज़ साहब, मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप कहाँ से हमारी नशियात सुन रहे हैं। हम आपको दिल की गहराइयों से गज़ल उसने छेड़ी में खुश आमदीद कहते हैं। और चलते हैं मिडिल्सब्रा और पेश करते हैं सुमैरा बिटिया का तोहफ़ा उनकी प्यारी प्यारी कज़न्स के नाम। सुमैरा, हम माज़रत ख़्वाह हैं, कल आप बहुत ताख़ीर से आई थी, सो हम आपका तोहफ़ा पेश न कर सके थे, सो आज उस कर्ज को उतार रहे हैं। जीती रहो।

अभी अभी हमारी बज़्म में शामिल हुए हैं, पहली मर्तबा आज उनकी खूबसूरत आवाज़ हमने सुनी है। आबिद साहब कहते हैं कि हम बड़ी बाकायदगी के साथ आपका प्रोग्राम सुनते हैं, हमारी कोताही यह है कि हम फ़ोन नहीं कर पाते। कोई बात नहीं आबिद, देर आयत दुरुस्त आयत, आज तो हमारे नसीब जागे हैं और आपकी खूबसूरत आवाज़ सुनने को मिली है। हम इंशाल्लाह आपका गीत ढूंढ निकालेंगे और इसे आपकी नज़र करेंगे। वैसे भी जो पहली मर्तबा हमारी इस बज़्म में तशरीफ़ लाएं, उन्हें हम खाली हाथ वापस नहीं किया करते, लेकिन अभी हम जा रहे हैं बंडले, जहां मौजूद हैं शकील साहब और सुनना चाहते हैं ये खूबसूरत गीत। हाँ, एक बात बता दूं अभी, एम मुमकिन है कि आपका गीत जो है, क्योंकि इस गीत के बाद कमर्शियल का वक्त होगा और कमर्शियल के बाद मेरा सेगमेंट होता है वजूद जन से है तस्वीर कायनात में रंग, और वजूद जन से है तस्वीर कायनात में रंग हम खराज अकीदत ख़वातीन शुरा को पेश करते हैं, जो मौजूद हैं उन्हें खराज तहसीन पेश करते हैं, और जो इस जहान फ़ानी से कूच कर चुकी हैं उन्हें खराज अकीदत। सो एम मुमकिन है कि आपका तोहफ़ा हम उसके बाद नशर करें। और अब हम चलते हैं बिला किसी ताखीर के अपने मोहतरम लिसनर शकील साहब बंडले में। यही वो गीत है जिसे आपने सुनना चाहा था। इस खूबसूरत शेर के साथ मुझे मोहसिन नकवी का एक खूबसूरत शेर याद आ गया कि सीरतें बेकयास होती हैं, सूरतें गम शनास होती हैं, और दूसरा शेर भी इसका याद आ गया, कता है ये उनका। सीरतें बेकयास होती हैं, सूरतें गम शनास होती हैं, और जिनके होंठों पे मुस्कुराहट है उनकी आंखें उदास होती हैं। शकील भाई अहमद का बहुत शुक्रिया, तोहफा लेकर हाजिर हूँ, कबूल फरमाइए।

0: Master Jewelers, 93 Hawson Grange Road, Bradford, Severn, 01274-414-760.
1: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
2: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
1: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग्स, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
3: Do you know there are 170,000 new cases of cancer each year in Pakistan? Do you know that Imran Khan Cancer Appeal provides free cancer treatment to 75% of its patients? Do you know that the third specialist Shaukat Hanum Cancer Hospital is being built in Karachi? We need your support more than ever now. Please donate today by calling 01274 424444 or donate online at ikca.org.uk.
4: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
5: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
4: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
5: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
6: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।
7: You're listening to Bradford Asian Radio,
8: 1413 AM and online.

0: और दोस्तों वक्त हुआ है आपके पसंदीदा सेगमेंट वजूदे जन से है तस्वीरे कायनात में रंग। आज की हमारी मेहमान शायरा हमा सिफात शख्सियात की मालिक हैं। ये बैक वक्त एक्ट्रेस, डायरेक्टर, पोएट, राइटर और बे इंतहा नौजवानों में मकबूल फनकारा हैं। जब शायरी करती हैं तो दिल खुश हो जाता है। पाकिस्तानी नजाद बरतानवी शहरियत है इनकी। और आज हमारी मेहमान हैं, आप सबको मैं बता दूं, यासरा रिज़वी। तो आइए वजूदे जन से है तस्वीर कायनात में रंग खिराज तहसीन पेश करते हैं। इनकी शायरी नौजवान दिलों की धड़कन है, बेइंतहा मकबूल और दुनिया के चार कोनों में अपने फ़न का मुजाहरा कर चुकी हैं। और इनकी शायरी सुनकर यह एहसास होता है कि शायद आने वाला कल इनका है। तो मैं दावत दूंगा यासरा रिज़वी को कि तशरीफ़ लाएं और अपने खूबसूरत कलाम से हमारे लाखों सुनने वालों और देखने वालों को नवाजें। तशरीफ़ लाती हैं यासरा रिज़वी।
1: टैमने का काम है और इसके लिए बहुत सारा सो के और खा पी के आना चाहिए। जनाब सदर से इजाज़त के साथ, ये भी सीखा मैंने आज के मुशायरे में।
2: देखिए इसमें एक नई बात और सीखी आपने, कराची ने लाहौर से इजाज़त ली।
1: जी जी जी जी, एक्चुअली दरअसल मैं इस्लामाबाद से हूँ। और तमाम शोरा कराम से इजाज़त के साथ, क्योंकि आप ये लोग वाकई शायर हैं। मैंने कोई आज तक कुछ 50 से, अब ये भी एक मसला है कि ना मैं नज़म कहती हूँ ना मैं गज़ल कहती हूँ, तो आप ये समझ लें कि मैं गज़म कहती हूँ और वही कहूँगी मैं आज। अक्सर तनकीद का निशाना भी रहती हूँ क्योंकि लोग कहते हैं कि ये क्या शायरी है, ना रदीफ़ है, ना काफ़िया है, ना ख़याल है। लोग तो बहुत कुछ कह देते हैं, अक्सर ठीक भी कहते होंगे, लेकिन मैं जितना समझ और सीख पाई ज़िंदगी में उसके हिसाब से कह देती हूँ। मैं अदाकार, हिदायतकार और राइटर हूँ, स्क्रीन राइटर बुनियादी तौर पे, और शायरी तकदीर ने कुछ इस तरह से कुचला था कि चीख नहीं शेर दिल से निकला था, और ये मेरी कहानी है शायरी की।
2: वाह।
1: तो आगाज़ करते हैं एक नज़्म से जिसका उन्वान है तारीफ का शुक्रिया। इजाज़त है?
2: जी इरशाद।
1: खैर खा भी जल गए बेवजन सी एक नज़्म से, खैर खा भी जल गए बेवजन सी एक नज़्म से, अपने आप को आग लगा कर निकला जब वो बज़्म से। नाप रहे हो जिसकी बहर, वो कहर काट के आया है। शीन काफ भी ठीक नहीं है मेरा,
2: हो जाएगा इंशाल्लाह।
1: नाप रहे हो जिसकी बहर, वो कहर काट के आया है। अपने हिस्से की खुशियाँ वो शहर बांट के आया है।
2: वाह।
1: शायर बन के घूम रहा है पर लगता है कोई साया है। आँखों में जो दर्द है उसकी जाने कहाँ से लाया है।
2: वाह वाह।
1: शायद अपनी बलि चढ़ाकर, शायद अपनी बलि चढ़ाकर अंदाजे बयां ये पाया है। लफ्ज़ों की नौटंकी अब उसका कुल सरमाया है। छोड़ो हमको क्या मतलब, छोड़ो हमको क्या मतलब, जो भी उसने गवाया है। फिर से बस वो शेर कहे कल शब्द जो उसने सुनाया है। एक नज़्म कही थी मैंने, गज़म कही थी मैंने, बहुत लंबी। कामयाब मोहब्बत उनवान है उसका, उसके कुछ आखिरी अशार। लड़की है हिना, वो आई थिंक इस वक्त क्राउड में होगी। मैं सोशल मीडिया की शायर हूँ बुनियादी तौर पे, तो वो उस पे फॉलो करती हुई आई और उसकी सहेली रुबाब और उसने एक तोहफा दिया मुझे अभी, तो उसने याद कराया मुझे ये कुछ आखिरी अशार उस नज़्म के। तो नूर महताब है तुलू आफ्ताब है, तो नूर महताब है तुलू आफ्ताब है, मेरी धड़कनों का रक्स है मेरी रूह का रबाब है, मेरी चश्मे नम का सुरूर है और सुकून बेहिसाब है, मैं सब तज निकल पड़ूं तू ऐसा इनकलाब है। न मिल जो तेरा जी चाहे, न मिल जो तेरा जी चाहे, तू दिल में दस्तयाब है।
2: अरे वाह वाह,
1: ये मोहब्बत नाकाम कितनी कामयाब है।
2: वाह,
1: अब कुछ तीन छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कुछ मेरे लिए आपस में कनेक्टेड हैं, तो मैं उनको साथ ही पढ़ दूंगी। आपका जहाँ दिल चाहे आप दाद दीजिएगा,
2: अरे वाह,
1: मैं चलती जाऊंगी। वो कच्ची उम्र के प्यार भी, वो कच्ची उम्र के प्यार भी हैं तीर भी तलवार भी, ताज़ा हैं दिल पे वार भी और खूब यादगार भी। घर जाएं वैशतें, घर जाएं वैशतें, ऐसी भी कोई रात हो, सर सफेद हो गया लगता है कल की बात हो।
2: अरे वाह वाह वाह वाह, हरीश भाई इन मिसरों पर तवज्जो फरमाएं जी, फिर दोहरा दें आप यात्रा जी।
1: घर जाएं वैशतें, ऐसी भी कोई रात हो, सर सफेद हो गया लगता है कल की बात हो।
2: वाह,
1: ये कच्ची उम्र के प्यार भी बड़े पक्के निशान देते हैं, आज पे कम ध्यान देते हैं, बहके बहके बयान देते हैं।
2: अरे वाह,
1: उनको देखे हुए, उनको देखे हुए मुद्दत हुई और हम अब भी जान देते हैं।
2: अरे वाह,
1: तो इससे मेरे दिल में अगले ही रोज ख्याल आया कि क्या प्यार एक बार होता है, क्या प्यार एक बार होता है, नहीं ये बार बार होता है।
2: अरे वाह वाह,
1: तो फिर क्यों किसी एक का इंतजार होता है? वही तो सच्चा प्यार होता है। अच्छा, प्यार भी क्या इंसान होता है, कभी सच्चा कभी झूठा बेईमान होता है, उसकी रगों में भी क्या खानदान होता है और मकसद हयात नफा नुकसान होता है। प्यार तो प्यार होता है।
2: वाह वाह,
1: प्यार तो प्यार होता है, बिछड़ भी जाए तो दिलदार होता है। जब भी हो जिससे भी हो शानदार होता है, हो एक बार कि सौ दफा प्यार का भी कोई शुमार होता है। अब इस फलसफे पे, क्योंकि अगेन मैं सोशल मीडिया की शायर हूं तो कमेंटिंग आती है, तो इतराजात और सब साथ साथ लाइव चल रहा होता है, तो बहुत से लोग कहते हैं कि ये किस किस्म की बात हुई भाई, प्यार भी एक बार ही होता है और उसके अलावा जो होता है वो उसे प्यार नहीं कहते। मैंने इस पे सोचा, मैंने कहा ये भी बात कर रहे हैं, तो बार बार जो हो जाए, बार बार जो हो जाए, क्या उसे प्यार कहते हैं? अजी आप सो को लोग बद किरदार कहते हैं। हम जिन्हें तहजीब का ठेकेदार कहते हैं, वो आपको मजनून और बीमार कहते हैं।
2: वाह।
1: आवारगी सोच का आलमबरदार कहते हैं, शोरफा को रोक रोक के खबरदार कहते हैं। चलो बद किरदार सही, झूठे तो नहीं हैं। चलो बद किरदार सही, झूठे तो नहीं हैं। नसीब किसी के हमसे फूटे तो नहीं हैं। चलो बद किरदार सही, झूठे तो नहीं हैं। नसीब किसी के हमसे फूटे तो नहीं हैं। हसरतों के बोझ तले टूटे तो नहीं हैं। सवारे हैं फकत दिल, लूटे तो नहीं हैं। और एक आखिरी नज़्म, शायद आप लोगों को इस महफिल के, तुम कमाल करते हो, ये भी चंद अशार हैं आपकी फरमाइश पे इमाद साहब की। एक और लंबी गज़म, शायद आप लोगों को इस महफिल के, तुम कमाल करते हो, ये भी चंद अशार हैं आपकी फरमाइश पे इमाद साहब की।

0: मैं हो जाऊं, रंग रंग मैं हो जाऊं, तुम्हारा नाम ले कोई मैं खुद बखुद से हो जाऊं, आमदों में खो जाऊं और इस खुशी में रो जाऊं, तेरी दिल फरेब छाऊं मैं आज थक के सो जाऊं। आखिरी जो चीज़ मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी वो पता नहीं इस जगह के मयार के मुताबिक है कि नहीं, लेकिन वो एक ऐसी वीडियो थी जो मैंने अपलोड की तो अगली सुबह जब मैं उठी तो बहुत सारे लोगों ने उस पर रिस्पॉन्ड किया हुआ था एकदम से रातों रात। वो आइडेंटिटी सी बन गई मेरी, तो इसलिए वो मेरे दिल के बहुत करीब है। नज़्म का उन्वान है सब्ज़ बाग। ये मनगढ़ंत कहानी मसलहत की ज़ुबानी, ये मनगढ़ंत कहानी मसलहत की ज़ुबानी जो सुनाए जा रहे हो तुम। अब भी ये सब्ज़ बाग जाने क्यों दिखाए जा रहे हो तुम। ना मैं मुनसिफ हूँ ना हिसाब आता है मुझे, ना मैं मुनसिफ हूँ ना हिसाब आता है मुझे, बेवजह घबराए जा रहे हो तुम।
1: वाह,
0: भाई कह दो दिल भर गया है, कह दो दिल भर गया है, यूं रुक जाने से डर गया है, इतनी सी बात है और घुमाए जा रहे हो तुम।
1: अरे वाह वाह वाह, बहुत शुक्रिया।
2: और दोस्तों, ये थी हमारी आज की मेहमान शायरा यासरा रिजवी। आपने सादगी देखी, खूबसूरत ख्यालात हैं, आज़ाद नज़्म कहती हैं और बहुत खूबसूरत अंदाज है। और फिर हम जो तारीफ़ करेंगे वो ये कि जो बच्ची बरतानिया में पैदा हुई हो इस कदर खूबसूरत लफ्ज़ों का ताना बाना बूझे, ये बहुत ही काबिल तारीफ बात है। मुझे यकीन है कि आहिस्ता आहिस्ता ये उस मकाम पर पहुंच जाएंगी जहां आने वाले इनकी आज़ाद नज़मों को कोट किया करेंगे। अब आप अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा, इसलिए कि शायरी ऐसी चीज़ है जो दिल की आवाज़ होती है और उसमें न तसन्नो बनावट, न तरन्नुम, न चीख पुकार, अपने दिल का अहवाल लफ्ज़ों के ताने बाने के साथ बुनकर लोगों तक पहुंचाना ये बड़ा कमाल है। हस्बे वादा हम अपने उस मेहमान को याद रखे हुए हैं जो आज पहली मरतबा हमारी बज़्म में तशरीफ़ लाकर इसकी इज्जत व तौक़ीर बढ़ा रहे हैं। और आप हैं ब्रेडफोर्ड की ससीन वादी से हमारे मोहतरम लिसनर आबिद साहब। आबिद साहब, एक वादा कीजिए कि आइंदा भी आप हमें खिदमत का मौका देंगे। आपका पसंदीदा गीत आपकी नज़र कर रहा हूँ इस खूबसूरत शेर के साथ कि ज़बानों रंग के जब फासले सिमटते हैं, ज़बानों रंग के जब फासले सिमटते हैं, बहुत करीब के रिश्ते दिखाई देते हैं। आपकी पसंद देकर हाजिर हूँ आबिद, जीते रहिए, खुश रहिए, आइंदा भी तशरीफ़ लाकर हमें खिदमत का मौका दीजिए। ये महफिल तो सजती आप सब अहबाब की आमद से ही है। कबूल कीजिए आपका तोहफ़ा।

दोस्तों ये पसंद थी हमारे मोहतरम लिसनर आबिद साहब की, जो हमने उनकी नज़्र की। आप सुन रहे हैं ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो 1413 मीडियम वेव पर यॉर्कशायर की ससीन वादी में, दुनिया के चार कोनों में इसे सुना जा रहा है www.bradfordasianradio.co.uk पर। इसके अलावा शहरयार साहब अभी हमारी बज़्म में शामिल हुए हैं अपने अहल खाना के हमरा। आप नॉर्थ हॉल्ट लंदन से तशरीफ लाए हैं। हमने दिल की तमाम तर गहराइयों से खुशामदीद कहते हैं। तशरीफ लाए हैं हमारे मोहतरम लिसनर जनाब भगत सिंह साहब, जो हमारे हमरा लीज से मौजूद हैं। और इन दोनों अहबाब ने आप तमाम सामीन और नाज़रीन की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम पेश किया है। तो कमर्शल का वक्त करीब हुआ जा रहा है, ये याद दिलाते हुए कि आप सुन रहे हैं गज़ल उसने छेड़ी। मैं हूँ रिफत अब्बास, आपका हमारा साथ है 5 बजे तक। जिन अहबाब ने अभी हमारी महफिल में शिरकत की है, हम उन्हें दिल की गहराइयों से खुशामदीद कहते हैं और आदाब आप सब अहबाब की खिदमत में। साथ ही साथ हमारे वो अहबाब जो हमें दुनिया के चार कोनों में नादीदा लिसनर्स हमारे सुन रहे हैं, उनके लिए नवीजिए कि उनके लिए हम एक खूबसूरत गीत का तोहफा अपनी जानिब से पेश करेंगे, जो हमें ऑनलाइन सुन रहे हैं। कसीर तादाद है जो ऑनलाइन हमारी नशियात से लुत्फानंदोज़ हो रही है। जनाब सिराज मुनीर साहब ने एक बहुत खूबसूरत गज़ल सुनने की ख्वाहिश का इजहार किया है और मैं इंशाल्लाह ज़रूर आज 4 बजे से पहले ही इसे शामिल प्रोग्राम करूँगा, इसलिए कि उनका कहना यह है कि आज वो अपने किसी अजीज से मिलने जाने का उनका प्रोग्राम है। लेकिन कहते हैं कि यह ना समझिएगा कि हम आपका प्रोग्राम सुनेंगे नहीं, हम गाड़ी में भी आपका प्रोग्राम सुनते हुए जाएंगे। तो आपकी ख्वाहिश का एहतराम करते हुए मैं 4 बजे से पहले इंशाल्लाह आपकी पसंदीदा गज़ल आपके और आपके अहल खाना की नज़र कर दूंगा, ये मेरा वादा है। रफाकत साहब तशरीफ़ लाए हैं एडिनबरा से, हम उन्हें दिल की गहराइयों से खुशामदीद कहते हैं। उनका मोहब्बत भरा सलाम, प्यार और ढेरों दुआएं। गो हमारे भगत सिंह साहब और जनाब शहरयार साहब ने भी आप सबको मोहब्बत भरा सलाम भेजा है, मुझे याद आ गया। सो रफाकत, आपका गीत मैंने नोट कर लिया है और इंशाल्लाह उसे ज़रूर शामिल प्रोग्राम करेंगे। आप और आपके अहल खाना मेरी इस काविश को बहुत सराहते हैं, इसके लिए मैं तहे दिल से आपका शुक्रगुजार हूँ। मैंने गीत नोट कर लिया है, फिक्र मत कीजिएगा। और ये इतने दिनों की गैरहाजिरी ख़त्म कीजिए, बहुत दिनों के बाद आए हैं आप। मुझे याद है ज़रा ज़रा, तुम्हें याद हो कि ना याद हो। बढ़ते हैं कमर्शियल के वक्फे की जानिब।

0: और दोस्तों आप सुन रहे हैं गजल उसने छेड़ी, वक्त हुआ जा रहा है कमर्शियल्स का।
1: And online.
2: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
3: You're listening to Bradford Asian Radio.
1: 1413 AM and online.
4: You're listening to
5: Bradford Asian Radio on 1413 AM.
4: And the winner is...
6: And the winner is...
7: And the winner is...
4: Your business being heard on the radio.
8: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
9: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
10: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
9: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
10: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
11: ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो।
12: आओ असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चले।
13: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं।
12: अरे पगली, अब दुबई ब्रैडफोर्ड में ही आ गई। जी हाँ, दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है।
13: झिलमिल करते कांटे, बालियां, कंगन, गले के हार 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार।
12: टॉप क्वालिटी, बेहतरीन सर्विस, ओपन 7 डेज।
13: 30 वेटले हिल ब्रैडफोर्ड, BD8 8NG, फोन 01274477257। दुबई ज्वेलर्स,
12: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका। पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक। आटा, चावल, दालें, मसाला जात, रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे। फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की खुआरी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर, नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड, ब्रैडफोर्ड, BD8 8JL। बुखारी, पसंद आपकी और हमारी बुखारी।
14: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
13: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रैडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
12: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रैडफोर्ड, BD8 8DR। टेलीफोन 07885 428349। अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड्स रोड, ब्रैडफोर्ड

0: Master Jewelers, 93 Hotham Grange Road, Bradford 7414760.
1: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
2: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
1: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग्स, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078। शादी आ गई है सर पर और कोई फोटोग्राफर नहीं है घर पर।
2: लगता है आपने AsianWeddingsUK.com का नाम नहीं सुना, जो आपकी शादी के चलते फिरते हसीन लम्हात हमेशा के लिए फोटोज और वीडियोस के जरिए महफूज करते हैं और फिल्म ऐसी बनाते हैं दूल्हा दुल्हन जैसी चाहते हैं।
1: डिजिटल क्वालिटी, तेज और दोस्ताना सर्विस, मेल और फीमेल फोटोग्राफर्स,
2: जिंदगी के यादगार दिन को यादगार तरीन बनवाइए।
1: आज ही मुबीन का नंबर मिलाइए
2: 07548419678।
1: AsianWeddingsUK.com, जिनकी आम सी फिल्म भी बॉलीवुड से नहीं है कम।
3: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
4: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
3: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
4: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
5: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।
6: You're listening to Bradford Asian Radio,
7: 1413 AM and online. You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
8: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
9: और दोस्तों, आप सुन रहे हैं गजल उसने छेड़ी। आज बहुत ताखीर से तशरीफ लाए हैं हमारे बे इंतहा खूबसूरत लिसनर, जो सात समंदर पार पाकिस्तान में खारियां गुजरात से तशरीफ लाकर हमारे प्रोग्राम की इज्जत व तौकीर बढ़ाते हैं। आप हैं जनाब परदेसी मजीद साहब और हमेशा की तरह उनका पैगाम है असरार में। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है जी आपका चाचू जान, सबको मेरा सलाम कह दें। वालेकुम अस्सलाम भतीजे जान, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बख़ैर वाफियत हूँ और आपका मोहब्बत भरा सलाम मैंने तमाम सामीन और नाज़रीन की खिदमत में पेश कर दिया है। और अब हम चल रहे हैं उस गीत की जानिब जिसे, बल्कि ये गज़ल है और इसे सुनने की ख्वाहिश का इजहार किया है हमारे रफ़ाक़त साहब ने, जो अपने अहले खाना के हमराह एडिनबरा में इस वक्त स्कॉटलैंड में हमारी नशियात से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। रफ़ाक़त भाई, ये बिना बताए गैर हाज़िरी जो है ये हमें अच्छी नहीं लगती, हमें आपकी कमी महसूस होती रहती है, तशरीफ़ लाते रहा करें। अल्लाह आपको और आपके अहले खाना को हमेशा अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। आपकी पसंदीदा गज़ल लेकर हाजिर हूँ। आवाज़ मलका तरन्नुम नूरजहाँ की है, अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद फरमाए, जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। और लोगों को मैं ये बताता चलूँ कि इसकी मौसीकी भी खुद मलका तरन्नुम नूरजहाँ ने तरतीब दी थी। गज़ल हाजिर है, कबूल कीजिए।

राइज दोस्तों, अब हम आपको लिए चलते हैं ओल्डहम, जहाँ पर हमारे बहुत ही खूबसूरत, सादा, मासूम और दिलकश शख्सियत के मालिक मोहम्मद अय्यूब चौहान साहब अपनी पसंद का गीत सुनने के मंतजर हैं। आपका तोहफा लेकर हाजिर हूँ, कबूल फरमाइए।

दोस्तों, अब हम आपके लिए चल रहे हैं ब्रेडफोर्ड 18, जहां हमारी प्यारी सी बहना शहनाज मौजूद हैं। शहनाज, ढेरों दुआएं देने का बेइंतहा शुक्रिया। हमारी भी दुआएं हमेशा तुम्हारे साथ हैं। अल्लाह ताला तुम्हें खुश रखे, तुम्हारी जोड़ी सलामत रखे और बच्चों की बहारें दिखाए। कहती हैं, आज जो गीत मैंने मुंतखब किया है, जब अम्मी की याद आती है तो ये गीत सुनती हूँ और अश्क बहाती हूँ। अल्लाह ताला उनके दर्जात को बुलंद फरमाए, जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए और मगफरत फरमाए। आपकी पसंद लेकर हाजिर हैं। आमद का बेइंतहा शुक्रिया।

0: ये तो फतह हमारे नादीदा लिसनर्स और श्रोते मुजाहिदों के नाम जो हमें ऑनलाइन सुन रहे हैं। अल्लाह आप सबको खुश रखे, सेहत से रखे, सलामत रखे और यूं ही आप तशरीफ लाकर हमारे प्रोग्राम की इज्जत और तौकीर में इजाफा करते रहें। वक्त हुआ जा रहा है कमर्शियल का। कमर्शियल के बाद बहुत दिनों के बाद आज एडी चौधरी साहब आए हैं, कहते हैं कि नासाजिए तबीयत के बिना पर हाजिर ना हो सका। क्या कह रहे थे कमर्शियल के बाद?
1: You're listening to Bradford Asian Radio 1413 AM and online.
2: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
3: And the winner is.
4: And the winner is.
5: And the winner is.
3: Your business being heard on the radio.
6: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
7: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक, आटा चावल दालें मसाला जात, रोजाना ताज़ा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड ब्रेडफोर्ड BD88JL। बुखारी पसंद आपकी और हमारी बुखारी। दुल्हन वो जो पिया मन भाई,
8: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
7: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां कंगन कांटे,
8: बालियां अंगूठियां और हार,
7: जो दुल्हन करे सिंगार,
8: आज ही मामू काके की दुकान,
7: खालिस सोने की पहचान,
8: पाकिस्तान ज्वेलर से शरीफ लाइए
7: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
8: आपकी शान
7: हमारी आन,
8: क्वालिटी की पहचान।
7: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Duckworth Lane ब्रेडफोर्ड, BD95VR 01274 491 442।
8: पाकिस्तान ज्वेलर्स। अरे बेटी की शादी करीब आ रही है, समझ नहीं आ रही कि जेवर कहाँ से लूँ।
9: अरे भोली, तुम्हें नहीं पता कि सोफी बहन ने ऑकलैंड पर सोफी ज्वेलर्स के नाम से गोल्ड जेवरात की दुकान खोल दी है।
8: सोफी ज्वेलर्स?
9: सोफी नहीं, सोफी, नित नए डिजाइन के जेवरात, जिनकी क्या है बात, इंश्योरेंस और वैल्यूएशन का भी इंतजाम, लेडी स्टाफ।
8: सोफी ज्वेलर्स, 121 Oak Lane, BD94QU 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
10: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274-201-679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.
11: Are you looking for nursery and after-school childcare in Bradford? Established in 2012, Raising Explorers provides outstanding childcare and education for children aged 0 to 16 years, all under one roof. From full-day nursery care for babies and young children to after-school pickups, homework support and exciting holiday clubs, language classes, madrasa services with locations in Manningham, Lister Hill Science Park, Thornbury and Hare Hills Leeds, Raising Explorers. Visit www.raisingexplorers.co.uk.
12: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
13: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
12: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
13: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
14: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।
1: You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
2: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.

और दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कई दिनों की ताखीर के बाद आज हमारे खूबसूरत लिसनर जो मोटरवे M62 पर सुनते हुए अपना सफ़र तमाम करते हैं, हमारा प्रोग्राम AD चौधरी साहब तशरीफ़ लाए हैं। मैंने उनसे गिला किया था कि आप कहाँ गायब हैं, तो उन्होंने बताया कि तबीयत नासाज थी और मैं आपको बता भी ना सका, लेकिन आज मैं जा रहा हूँ और आपका प्रोग्राम सुन रहा हूँ हस्ब रिवायत। और उन्होंने सुनना चाहा है ये खूबसूरत गीत जो हम उनकी खूबसूरत साथों की नज़र कर रहे हैं, और दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला आपको सेहत कामला सेहत आजला नसीब फरमाए और आपके सफ़र को बखूबी आपकी मंजिल मकसूद तक पहुँचाए, तमाम करे अल्लाह।

और दोस्तों अब हम आपको लिए चलते हैं खाड़िया गुजरात पाकिस्तान, जहां मौजूद हैं परदेशी मजीद साहब। एक पैगाम उनका मुझे मिला, अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है जी आपका चाचू जान, जिसका मैंने जवाब भी दिया था, लेकिन वो कहते हैं कि और जो मैं पैगाम लिख रहा हूँ आप तक नहीं पहुँच रहे। यही बात अभी थोड़ी देर पहले व्हाट्सएप पे मुझे रिजवान रिजवी साहब ने बताई है। मुझे लगता है कुछ हमारे यहाँ इंटरनेट की आज गड़बड़ है, और वैसे भी दो मरतबा प्रोग्राम को बंद करके खोलना पड़ा है, तो शायद वो भी वजह रही होगी। बहरहाल अब हम चल रहे हैं खाड़िया गुजरात पाकिस्तान, जहाँ मौजूद हैं परदेशी मजीद साहब, और पेश करते हैं उनकी पसंद और उनके पसंदीदा फनकार मरातिब अली की आवाज़ में ये खूबसूरत गीत। मैं नहीं जानता, मुझे इल्म नहीं है कि क्या वजह है कि आपके और मजीद पैगाम हम तक नहीं पहुंच पा रहे। बहरहाल आपका तोहफ़ा लेकर हाजिर हैं, आपका पैगाम मुझे व्हाट्सएप पर मिल गया है और आपका तोहफ़ा आपकी नज़र कर रहा हूँ। परदेशी मजीद, जीते रहो, खुश रहो, सेहत से रहो, आमद का बहुत शुक्रिया।

0: Station Radio, 1413 AM and online.
1: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
2: You're listening to Bradford Asian Radio,
0: 1413 AM and online.
3: You're listening to
4: Bradford Asian Radio on 1413 AM.
3: And the winner is...
5: And the winner is...
6: And the winner is...
3: Your business being heard on the radio.
7: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
8: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज
9: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज
8: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज
9: हर वक्त आपके संग आपका दम साज
10: ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो मीडियम वेव 1413 AM ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो
11: आओ असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चले
12: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं
11: अरे पगली अब दुबई ब्रैडफोर्ड में ही आ गई जी हाँ दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है
12: झिलमिल करते कांटे बालियां कंगन गले के हार 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार
11: टॉप क्वालिटी बेहतरीन सर्विस ओपन 7 डेज
12: 30 वेटली हिल ब्रैडफोर्ड BD8 8NG फोन 01274477257
11: दुबई ज्वेलर्स व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ शोर होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक आटा चावल दालें मसाला जात रोजाना ताज़ा सब्जियां और फल फ्रूट हलाल गोश्त और चूजे फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले बचिए इधर उधर की ख्वारी से शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक व्हाइट एबी रोड ब्रैडफोर्ड BD8 8JL बुखारी पसंद आपकी और हमारी बुखारी
13: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है
12: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा मिलान की शेरवानी शलवार कमीज वेस्ट कोट प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं मर्दाना मलबूसात का ब्रैडफोर्ड का मुनफरिद मरकज जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे
11: मिलान दुल्हा हाउस 8183 व्हाइट एबे रोड ब्रैडफोर्ड BD8 8DR टेलीफोन 07885 428349 अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम 1304 लीड्स रोड ब्रैडफोर्ड 3

0: Master Jewelers, 93 Hawson Grange Road, Bradford 7, 01274-414-760.
1: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
2: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
1: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डाइट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
3: हिसाबे उम्र का इतना सा गोशवारा है, तुम्हें निकाल के देखा तो सब खसारा है। महमूद रिजवी अकाउंटेंट्स, जी हाँ, छोटे से छोटे टैक्सी अकाउंट से लेकर बड़ी से बड़ी कंपनी के अकाउंट्स बनवाने के लिए काबिल एतमाद नाम महमूद रिजवी अकाउंटेंट्स। ऑडिट एंड अकाउंटेंसी, टैक्सेशन, VAT, बुककीपिंग, पेरोल, फंडरेजिंग, कंपनी फॉर्मेशन, मॉर्गेजेस। अकाउंट्स के किसी भी मसले के लिए ना हो परेशान, क्योंकि आपकी मुश्किल करेंगे आसान महमूद रिजवी चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट्स। महमूद रिजवी, ग्रेट हॉटन रोड, ऑन ब्रैडफोर्ड, 424453। महमूद रिजवी,
4: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
5: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
4: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
5: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
6: ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो।
7: You're listening to Bradford Asian Radio,
8: 1413 AM and online.

0: You're listening to Bradford Asian Radio.
1: 1413 AM and online. You're listening to Bradford Asian Radio. 1413 AM and online.
2: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
3: And the winner is...
4: And the winner is...
5: And the winner is...
3: Your business being heard on the radio.
6: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
7: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक, आटा चावल दालें मसाला जात, रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड ब्रेडफोर्ड BD88JL। बुखारी पसंद आपकी और हमारी बुखारी। दुल्हन वो जो पिया मन भाए,
8: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
7: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां कंगन कांटे,
8: बालियां अंगूठियां और हार,
7: जो दुल्हन करे सिंगार,
8: आज ही मामू काकी की दुकान,
7: खालिस सोने की पहचान,
8: पाकिस्तान ज्वेलर्स से शरीफ लाइए
7: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
8: आपकी शान
7: हमारी आन,
8: क्वालिटी की पहचान।
7: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Duckworth Lane ब्रेडफोर्ड, BD95ER 01274 491 442।
8: पाकिस्तान ज्वेलर्स। अरे बेटी की शादी करीब आ रही है, समझ नहीं आ रही कि जेवर कहाँ से लूँ।
9: अरे भोली, तुम्हें नहीं पता कि सोफी बहन ने ऑकलैंड पर सोफी ज्वेलर्स के नाम से गोल्ड जेवरात की दुकान खोल दी है।
8: सोफी ज्वेलर्स?
9: सोफी नहीं, सोफी, नित नए डिजाइन के जेवरात, जिनकी क्या है बात, इंश्योरेंस और वैल्यूएशन का भी इंतजाम, लेडी स्टाफ।
8: सोफी ज्वेलर्स, 121 ऑकलैंड, BD94QU 01274056014। सोफी ज्वेलर्स,
10: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
11: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
10: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
11: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
12: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।
1: You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
2: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.

तुम एक बेगैरत इंसान हो जिसे बातें बनाने के सिवा कुछ नहीं आता। कुमार, ना तुम्हारा कोई कैरेक्टर है, ना ईमान, ना वफादारी,

0: listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
1: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
2: You're listening to Bradford Asian Radio,
0: 1413 AM and online.
3: You're listening to
4: Bradford Asian Radio on 1413 AM.
5: And the winner is...
6: And the winner is...
7: And the winner is...
5: Your business being heard on the radio.
8: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
9: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिलनवाज,
10: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
9: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
10: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
11: ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो।
12: आओ असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चले।
13: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं।
12: अरे पगली, अब दुबई ब्रैडफोर्ड में ही आ गई। जी हाँ, दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है।
13: झिलमिल करते कांटे, बालियां, कंगन, गले के हार 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार।
12: टॉप क्वालिटी, बेहतरीन सर्विस, ओपन 7 डेज।
13: 30 वेटली हिल ब्रैडफोर्ड, BD8 8NG, फोन 01274 477 2577। दुबई ज्वेलर्स,
12: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका। पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक। आटा, चावल, दालें, मसाला जात, रोजाना ताज़ा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे। फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर, नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड, ब्रैडफोर्ड, BD8 8JL। बुखारी, पसंद आपकी और हमारी बुखारी।
14: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
13: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रैडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
12: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रैडफोर्ड, BD8 8DR। टेलीफोन 07885 428 349। अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड्स रोड, ब्रैडफोर्ड।

0: Master Jewelers, 93 Hotham Grange Road, Bradford 7414760।
1: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
2: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
1: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग्स, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
3: क्या आपकी आवाज़ खूबसूरत है? क्या आप में बोलने की जरूरत है? अगर ऐसी ही सूरत है तो ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो को आपकी जरूरत है। आज ही स्टूडियो नंबर 01274306677 पर कॉल कीजिए और अपनी आवाज़ सुनने वालों के दिलों तक पहुंचाइए और खुद को रेडियो स्टार बनाइए। याद रखिए, अगर आपको बड़ी बड़ी छोड़ने की आदत है तो ये आपके कल के बड़ा ब्रॉडकास्टर बनने की जमानत है। आज ही स्टूडियो नंबर 01274306677 पर कॉल कीजिए। एशियन रेडियो
4: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
5: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
4: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
5: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
6: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।
7: You're listening to Bradford Asian Radio,
8: 1413 AM and online.
7: You're listening to Bradford Asian Radio,
8: the Hindi Urdu music show on Bradford Asian Radio.

0: You're listening to Bradford Asian Radio.
1: 1413 AM and online.
0: You're listening to Bradford Asian Radio.
1: 1413 AM and online. You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
2: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
3: And the winner is...
4: And the winner is...
5: And the winner is...
3: Your business being heard on the radio.
6: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
7: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेश खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक, आटा चावल दालें मसाला जात, रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड ब्रेडफोर्ड BD88JL। बुखारी, पसंद आपकी और हमारी बुखारी। दुल्हन वो जो पिया मन भाई,
8: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
7: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां कंगन कांटे,
8: बालियां अंगूठियां और हार,
7: जो दुल्हन करे सिंगार,
8: आज ही मामू काकी की दुकान,
7: खालिस सोने की पहचान,
8: पाकिस्तान ज्वेलर से शरीफ लाइए
7: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
8: आपकी शान
7: हमारी आन,
8: क्वालिटी की पहचान।
7: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Dufferin Lane ब्रेडफोर्ड, BD95VR 01274 491 442।
8: पाकिस्तान ज्वेलर्स। अरे बेटी की शादी करीब आ रही है, समझ नहीं आ रही कि जेवर कहाँ से लूँ।
9: अरे भोली, तुम्हें नहीं पता कि सोफी बहन ने ऑकलैंड पर सोफी ज्वेलर्स के नाम से गोल्ड जेवरात की दुकान खोल दी है।
8: सोफी ज्वेलर्स?
9: सोफी नहीं, सोफी, नित नए डिजाइन के जेवरात, जिनकी क्या है बात, इंश्योरेंस और वैल्यूएशन का भी इंतजाम, लेडी स्टाफ।
8: सोफी ज्वेलर्स, 121 ऑकलैंड, BD94QU 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
10: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers, or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274 201679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.
7: अरे ये पूरे ब्रेडफोर्ड में क्या है शोर?
11: आपको नहीं पता, ऑफर्स इन मेनी गो स्टोर, रोजाना ताजा सब्जियां, फल फ्रूट, सलाद, मीट, चिकन, आटा, दाल, चावल और मसाला, क्वालिटी में सबसे आला और सर्विस में सबसे बाला।
7: हर सम्त मचा है जिसका शोर, वो है मैनिंगम सुपर स्टोर। मैनिंगम सुपर स्टोर, कार्लाइल रोड ब्रेडफोर्ड, BD88AX, फोन ब्रेडफोर्ड 4955555। हफ्ते के सातों दिन आपकी खिदमत में पेश। मैनिंगम सुपर स्टोर,
11: मैनिंगम सुपर स्टोर।
12: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
7: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
12: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
7: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
13: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।
1: You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
2: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.

0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: अजान का वक्त हुआ चाहता है इस अजान के लिए हमें तावन हासिल है कूपर हॉल सिलिस्टर्स लिस्टर हिल्स साइंस पार्क कैंपस रोड ब्रेडफर्ड BD71HR
1: अजान दे गई हजरत बिलाल की हस्ती अजान दे गई हजरत बिलाल की हस्ती नमाज पढ़ गए दुनिया में करबला वाले सामीन ब्रेडफर्ड और इसके मुजाफात में अजान का वक्त हुआ चाहता है।

0: Master Jewelers, 93 Hawson Grange Road, Bradford 7, 01274-414-760.
1: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
2: तुम्हें पता है भाभी ने बॉबीज कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
1: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो, और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डाइक, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
3: Do you know there are 170,000 new cases of cancer each year in Pakistan? Do you know that Imran Khan Cancer Appeal provides free cancer treatment to 75% of its patients? Do you know that the third specialist Shaukat Hanum Cancer Hospital is being built in Karachi? We need your support more than ever now. Please donate today by calling 01274 424444 or donate online at ikca.org.uk.
4: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
5: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
4: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
5: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
6: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।
7: You're listening to Bradford Asian Radio,
8: 1413 AM and online.
7: You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.

0: You're listening to Bradford Asian Radio.
1: 1413 AM and online. You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
2: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
3: And the winner is...
4: And the winner is...
5: And the winner is...
3: Your business being heard on the radio.
6: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
7: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेश खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक, आटा चावल दालें मसाला जात, रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की खुआरी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड ब्रैडफोर्ड BD88JL। बुखारी पसंद आपकी और हमारी बुखारी। दुल्हन वो जो पिया मन भाई,
8: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
7: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां कंगन कांटे,
8: बालियां अंगूठियां और हार,
7: जो दुल्हन करे सिंगार,
8: आज ही मामू काके की दुकान,
7: खालिस सोने की पहचान,
8: पाकिस्तान ज्वेलर्स से शरीफ लाइए
7: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
8: आपकी शान
7: हमारी आन,
8: क्वालिटी की पहचान।
7: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Duckworth Lane ब्रैडफोर्ड, BD95VR 01274 491 442।
8: पाकिस्तान ज्वेलर्स। अरे बेटी की शादी करीब आ रही है, समझ नहीं आ रही कि जेवर कहाँ से लूँ।
9: अरे भोली, तुम्हें नहीं पता कि सोफी बहन ने ऑकलेन पर सोफी ज्वेलर्स के नाम से गोल्ड जेवरात की दुकान खोल दी है।
8: सोफी ज्वेलर्स?
9: सोफी नहीं, सोफी, नित नए डिजाइन के जेवरात, जिनकी क्या है बात, इंश्योरेंस और वैल्यूएशन का भी इंतजाम, लेडी स्टाफ।
8: सोफी ज्वेलर्स, 121 ऑकलेन, BD94QU 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
7: ब्रैडफोर्ड में फर्नीचर का सबसे खूबसूरत शोरूम लव फर्नीचर।
10: फर्नीचर तो आप घर घर देखते हैं, मगर जो देखते ही पसंद आ जाए वो है लव फर्नीचर, जहाँ पर ऑर्थोपेडिक डबल बेड सिर्फ 100 pounds से, जर्मन वार्डरोब, डाइनिंग टेबल, कॉफी टेबल, रग्स, कारपेट, मैट्रेसेस की वसी वैरायटी।
11: ओपन 7 days 10 till 6, फ्री डिलीवरी ऑल ओवर वेस्ट यॉर्कशायर। लव फर्नीचर, कार्लाइल रोड ब्रैडफोर्ड, अपोजिट बार्कलेज बैंक, पॉन्ड ब्रैडफोर्ड, 9627229622।
10: लव फर्नीचर, फर्नीचर यू लव।
12: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
13: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
12: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
13: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
14: ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो।
1: You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
2: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.

0: listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
1: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
2: You're listening to Bradford Asian Radio,
0: 1413 AM and online.
3: You're listening to
4: Bradford Asian Radio on 1413 AM.
5: And the winner is...
6: Your business being heard on the radio.
7: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
8: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिलनवाज
9: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज
8: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज
9: हर वक्त आपके संग आपका दम साज
10: ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो मीडियम वेव 1413 AM ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो
11: आओ असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चले
12: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं
11: अरे पगली अब दुबई ब्रैडफोर्ड में ही आ गई जी हाँ दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है
12: झिलमिल करते कांटे बालियां कंगन गले के हार 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार
11: टॉप क्वालिटी बेहतरीन सर्विस ओपन 7 डेज
12: 30 वेटले हिल ब्रैडफोर्ड BD8 8NG फोन 01274477257
11: दुबई ज्वेलर्स व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक आटा चावल दालें मसाला जात रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट हलाल गोश्त और चूजे फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले बचिए इधर उधर की ख्वारी से शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक व्हाइट एबी रोड ब्रैडफोर्ड BD8 8JL बुखारी पसंद आपकी और हमारी बुखारी
13: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है
12: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा मिलान की शेरवानी शलवार कमीज वेस्ट कोट प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं मर्दाना मलबूसात का ब्रैडफोर्ड का मुनफरिद मरकज जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे
11: मिलान दुल्हा हाउस 8183 व्हाइट एबे रोड ब्रैडफोर्ड BD8 8DR टेलीफोन 07885428349 अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम 1304 लीड रोड

0: Master Jewelers, 93 Hotham Grange Road, Bradford 7414760।
1: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
2: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
1: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो, और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग्स, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
3: शादी आ गई है सर पर और कोई फोटोग्राफर नहीं है घर पर।
4: लगता है आपने एशियन वेडिंग्स UK.com का नाम नहीं सुना, जो आपकी शादी के चलते
5: You're listening to Bradford Asian Radio

जर्रे ही सही कहो से टकरा तो गए हम, जर्रे ही सही कहो से टकरा तो गए हम। दिल लेके सारे बाम नजर आ तो गए हम, जर्रे ही सही कहो से टकरा तो गए हम। दिल लेके सारे बाम आ तो गए हम, और कहते थे जो अब कोई नहीं जहां से गुजरता, कहते थे जो अब कोई नहीं जहां से गुजरता, लो जहां से गुजर कर उन्हें झुटला तो गए हम। अस्सलाम वालेकुम सामीन, इस वक्त आप सुन रहे हैं आपका अपना ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो 1430 AM पर, 1430 AM के साथ साथ ये नशात आप ऑनलाइन भी सुनते हैं www.bradfordasianradio.co.uk, bradfordasianradio.co.uk हमारी वेबसाइट, और वेब के साथ साथ ये नशात आप डेप पे भी सुनते हैं। जी हाँ, डेप प्लस पे आप हमें BFT एशियन रेडियो के नाम से सर्च कर सकते हैं, और अगर आप स्मार्टफोन इस्तेमाल करते हो तो आप हमारा स्मार्ट ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, चाहे आप आईफोन इस्तेमाल करते हो चाहे आप एंड्रॉयड, दोनों पे हमारे ऐप्स मौजूद हैं। और हमारी इस समय की नशात आप लिंक FM शेफील्ड से 96.7 FM के जरिए भी सुन सकते हैं, और CVFM मिल्सबरा से 104.5 FM पे भी हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। और साथियों, अब प्रोग्राम रंगे महफिल के आपके मेज़बान सैयद हसन हाजिर हैं, और अपने सभी सुनने वालों की खिदमत में अपने दिल की अथाह गहराइयों से खलुस परा आदाब पेश करते हैं, तस्लीमात। उम्मीद करते हैं कि आप सुनने वाले इस वक्त जहां कहीं भी हमें सुन रहे होंगे, हमारी आवाज़ सुन रहे होंगे, और फजल खुदा आप सभी खैरियत से होंगे, और खुदा न खास्ता आज तबीयत कुछ अच्छी नहीं है तो हमारी बहुत सी दुआ कि अल्लाह पाक आपको सेहत और सलामती दे, और दुआ करते हैं कि यही दुआ आप हमें भी देंगे, क्योंकि मौसम की तब्दीली ने कुछ थोड़ा बहुत हम पे भी असर किया है।

और सामिन, अगर आज के इस प्रोग्राम में आप कॉल करना चाहें, शिरकत करना चाहें, तो आप कॉल कर सकते हैं। नंबर आप सभी जानते हैं, 01274306677, ब्रेडफोर्ड एरिया कोड है 01274, स्टूडियो का नंबर है 306677। कोई गीत सुनना चाहें, कोई पसंद हो, कोई फरमाइश हो, तो हमें ज़रूर बताइएगा, ताकि वो आज के इस प्रोग्राम का हम हिस्सा बना सकें।

मुद्दत के बाद पहुंचे हैं ए रहबरां जहां, मुद्दत के बाद पहुंचे हैं ए रहबरां जहां, मुझको यकीन है कि चले थे यहीं से हम।

और सामिन, अब एक खूबसूरत गीत सुनते हैं। आवाज़ है मोहम्मद रफ़ी की, शायरी है GL रावल की, मौसीकी है सोनिक ओमी की। कश्मीर है एक शेर मगर सोया हुआ है, कश्मीर है एक शेर मगर सोया हुआ है, उठेगा तो करेगा ये जहां को तहबाला।

0: 143am and online.
1: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
2: And the winner is...
3: And the winner is...
4: And the winner is...
2: Your business being heard on the radio.
5: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
6: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेश खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक, आटा चावल दालें मसाला जात, रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की खुआरी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड ब्रेडफोर्ड BD88JL। बुखारी पसंद आपकी और हमारी बुखारी। दुल्हन वो जो पिया मन भाए,
7: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
6: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां कंगन कांटे,
7: बालियां अंगूठियां और हार,
6: जो दुल्हन करे सिंगार,
7: आज ही मामू काकी की दुकान,
6: खालिस सोने की पहचान,
7: पाकिस्तान ज्वेलर्स से शरीफ लाइए
6: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
7: आपकी शान
6: हमारी आन,
7: क्वालिटी की पहचान।
6: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Duckworth Lane ब्रेडफोर्ड, BD95ER 01274 491 442।
7: पाकिस्तान ज्वेलर्स। अरे बेटी की शादी करीब आ रही है, समझ नहीं आ रही कि जेवर कहाँ से लूँ।
8: अरे भोली, तुम्हें नहीं पता कि सोफी बहन ने ऑकलैंड पर सोफी ज्वेलर्स के नाम से गोल्ड जेवरात की दुकान खोल दी है।
7: सोफी ज्वेलर्स?
8: सोफी नहीं, सोफी, नित नए डिजाइन के जेवरात, जिनकी क्या है बात, इंश्योरेंस और वैल्यूएशन का भी इंतजाम, लेडी स्टाफ।
7: सोफी ज्वेलर्स, 121 ऑकलैंड, BD94QU 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
9: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers, or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274-201-679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.
10: Are you looking for nursery and after-school childcare in Bradford? Established in 2012, Raising Explorers provides outstanding childcare and education for children aged 0 to 16 years, all under one roof. From full-day nursery care for babies and young children, to after-school pickups, homework support and exciting holiday clubs, language classes, madrasa services, with locations in Manningham, Lister Hill Science Park, Thornbury and Hare Hills Leeds, Raising Explorers. Visit www.raisingexplorers.co.uk.
11: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
12: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
11: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
12: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
13: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।
0: You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
1: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.

और तारिक भाई इस वक्त आप हमें राधरम में सुन रहे हैं, बेहद शुक्रिया आपका। आपने कश्मीर के हवाले से कुछ से गीत सुनना चाहे हैं, उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आ रहे होंगे।

मोहब्बत गोलियों से बो रहे हैं, मोहब्बत गोलियों से बो रहे हैं, वतन का चेहरा लहू से धो रहे हैं। गुमा तुमको के रास्ता कट रहा है, यकीन मुझको के मंजिल खो रहे हैं।

और सामिन, अभी आप अमजद भट्ट की आवाज़ में गीत सुन रहे थे दीवा। उम्मीद करते हैं कि गीत आपको पसंद आया होगा। अपनी देसी ज़ुबान में, पोठवारी ज़ुबान में, मीरपुरी ज़ुबान में खूबसूरत गीत था। और अमजद भट्ट का ताल्लुक कोटली से है, बड़ा अच्छा गाते हैं। और साथियों, आप लता की आवाज़ में एक खूबसूरत गीत आज के इस प्रोग्राम का हिस्सा बनाते हैं। गीत है आप सभी सुनने वालों के नाम।

और सामिन, अब ब्रेक से पहले इस घंटे का आखिरी गीत आप सभी सुनने वालों के लिए हम पेश कर रहे हैं। आवाज है मलका इतरन्नम नूरजहां की, शायरी है जनाबे हबीब जालिब की।

0: Find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
1: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिलनवाज,
2: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
1: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
2: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
3: ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो।
4: आओ असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चले।
5: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं।
4: अरे पगली, अब दुबई ब्रैडफोर्ड में ही आ गई। जी हाँ, दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है।
5: झिलमिल करते कांटे, बालियां, कंगन, गले के हार 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार।
4: टॉप क्वालिटी, बेहतरीन सर्विस, ओपन 7 डेज।
5: 30 वेटले हिल, ब्रैडफोर्ड, BD8 8NG, फोन 01274 477 2577। दुबई ज्वेलर्स,
4: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका। पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक। आटा, चावल, दालें, मसाला जात, रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे। फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर, नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड, ब्रैडफोर्ड, BD8 8JL। बुखारी, पसंद आपकी और हमारी बुखारी।
6: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
5: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रैडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
4: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रैडफोर्ड, BD8 8DR, टेलीफोन 07885 428 349, अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड रोड, ब्रैडफोर्ड 3।

0: Master Jewelers, 93 Hawson Grange Road, Bradford 7, 01274-414-760.
1: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
2: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
1: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग्स, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
3: हिसाबे उम्र का इतना सा गोशवारा है, तुम्हें निकाल के देखा तो सब खसारा है। मैं महमूद रिज़वी अकाउंटेंट, जी हाँ, छोटे से छोटे टैक्सी अकाउंट से लेकर
4: बड़े से बड़े कंपनी के अकाउंट तक। 01274201679 और विजिट safewayrider.co.uk। Safeway Rider, helping you secure your future.
5: Do you know there are 170,000 new cases of cancer each year in Pakistan? Do you know that Imran Khan Cancer Appeal provides free cancer treatment to 75% of its patients? Do you know that the third specialist Shaukat Hanum Cancer Hospital is being built in Karachi? We need your support more than ever now. Please donate today by calling 01274 424 444

0: और सामिन ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी सुनने वालों को आज करेंगे महफिल में दिल की यथा गहराइयों से वेलकम, खुश आमदेद जी आया अनु। और अगर अभी अभी आपने हमारा ये रेडियो स्टेशन सुनना शुरू किया तो आपको बताते चलें कि आप इस वक्त सुन रहे हैं ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो 1430 AM। हमारी वेबसाइट है www.bradfordasianradio.co.uk, bradfordasianradio.co.uk। और वेबसाइट के साथ साथ ये नशात आप डेब प्लेटफॉर्म पे भी सुनते हैं। जी हाँ, आप हमें सुन सकते हैं BFD एशियन रेडियो के नाम से ब्रेडफोर्ड और इसके मजाफात में डिजिटल साउंड में। और यही नशात अगर आप चाहें तो आप अपने मोबाइल पे डाउनलोड भी कर सकते हैं। हमारा खूबसूरत सा छोटा सा ऐप, ज़्यादा मेमोरी भी नहीं लेता, और फिर जब आप सुनना चाहें सुन सकते हैं। और हमारी ये नशात इस वक्त आप सुन रहे हैं लिंक FM शेफील्ड से 96.7 FM पर, और CV FM एल्सबरा से 104.5 FM पे भी ये नशात पेश की जा रही हैं। और सामिन आज का ये खसूसी प्रोग्राम हम नाम करते हैं आज़ाद कश्मीर के बहन भाइयों के, और दुआ है कि अल्लाह पाक अपना फजल करम रखे और ये मामलात, ये हालात, इनका कोई हल निकल आए। और समीन अब लाइव कॉल्स का सिलसिला शुरू करते हैं और आज के अपने पहले मेहमान को खुश आमदेद करते हैं। अस्सलाम वालेकुम।
1: जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह व बरकातहू।
0: जनाब शकील साहब, आप खैरियत से ठीक है?
1: मतलब मेहरबानी, शुक्र है, आपकी दुआएं हैं। आप सुनाए कैसे हैं?
0: अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का एहसान है। थोड़ा सा आज नजला जुकाम की कोई शिकायत आवाज से लग रही है या नहीं? कुछ नजला जुकाम की शिकायत मेरी आवाज से लग रही है या नहीं?
1: कोई थोड़ी सी बात भी
0: है। कहते ना कि जी जी कहते ना कि बहुत मुश्किल मेरी पहचान होगी, बदल डालूं अगर मैं अपना ले जा। अल्लाह ख्याल करे। वालेकुम अस्सलाम। जी जी
1: चौधरी मुजफ्फर साहब, महबूब अलाई हैं, उस्मान भाई हैं, तारिक जुल्फी साहब है, अगर सर ये बहन सुन रहे हैं उनको भी आदाब।
0: जी जी वालेकुम अस्सलाम और तस्लीमात उनकी जानिब से भी।
1: तो ये गजल है, ये शारिक बिलावी इनका नाम है।
0: जी जी इनायत कीजिए।
1: मिले जो गम भी तो उसको दर्द खुशी की तरह,
0: वाह
1: मिले जो गम भी तो उसको दर्द खुशी की तरह, गुजारो जिंदगी दोस्तों जिंदगी की तरह।
0: बहुत खूब।
1: जहाँ पे हक हो वहाँ हक की बात कह दीजिए,
0: जहाँ पे हक हो वहाँ हक की बात कह दीजिए।
1: खामोश रहना भी जुर्म खुदकुशी की तरह।
0: बहुत खूब, बहुत खूब। कहते ना कि मिट जाएगी मखलूक तो इंसाफ करोगे, मुनसिफ हो तो फिर हश्र उठा क्यों नहीं देते।
1: जहाने हिरसो हवस का तो है गिला ताहम, जहाने हिरसो हवस का तो है गिला ताहम, मिले हैं मुझको इंसान भी आदमी की तरह।
0: बहुत खूब, बहुत खूब।
1: जो बात शीरी जबानी शीरी बयानी का अक्स रखती है, जो बात शीरी बयानी का अक्स रखती है, वो बात दिल में उतरती है रोशनी की
0: तरह। रोशनी की तरह। वाह वाह।
1: रस्म जहांदारी ये हयात यूं निभाओ, रस्म जहांदारी ये हयात यूं निभाओ, किसी को चाहो तो चाहो बंदगी की तरह।
0: बहुत खूब।
1: वफा की हुरमत है हद का पास था मुझको, तुम्हारे शहर से गुजरा हूँ अजनबी की तरह।
0: बहुत खूब।
1: तो आखिरी शेर मत है, मैं अपना आप मुकम्मल वजूद हूँ शारिक,
0: वाह वाह,
1: मैं अपना आप मुकम्मल वजूद हूँ शारिक, मुझे गर्ज ही नहीं कि बनूं किसी और की तरह।
0: बहुत खूब, बहुत
1: ये शुक्रिया। तो एक गजल है मेहरबान अमरोही।
0: जी जी इनायत कीजिए।
1: कहते हैं मेरे हालात से मुंह मोड़ के जाने वाले,
0: मेरे हालात से मुंह मोड़ के जाने वाले,
1: तुझसे कुछ पूछ रहे हैं ये जमाने,
0: क्या कहने क्या कहने, अच्छा है, वाह वाह।
1: मेरे हालात से मुंह मोड़ के जाने वाले
0: तुझसे कुछ पूछ रहे हैं
1: ये जमाने वाले, देख कर मुझको अब राह बदल लेते हैं,
0: वाह वाह,
1: मेरी
0: بہت اچھے بہت اچھے, شروع سے پڑھیے گا, خوبصورت کلام ہے بابا.
1: کر مجھ کو اب راہ بدل لیتے ہیں, میری آواز سے
0: آواز ملانے والے.
1: تو بھی آ جائے گا حالات کی زد میں ایک دن,
0: تو بھی آ جائے گا حالات کی زد میں ایک دن,
1: میری بربادی کے افسانے
0: سنانے والے. بہت خوب. میں اگر آج زد پہ ہوں, میں اگر آج زد پہ ہوں تو خوش گمان نہ ہو, چراغ سب کے بجھیں گے, ہوا کسی کی نہیں.
1: پھر کہتے ہیں جانب شہر وفا سوچ سمجھ کر جانا.
0: واہ واہ.
1: جانب شہر وفا سوچ سمجھ کر جانا, لوٹ کے آتے نہیں ہیں وہاں جانے والے.
0: بہت خوب بہت خوب.
1: دل کے اس ٹوٹتے رشتے کا بھرم رہ جائے.
0: واہ واہ.
1: دل کے اس ٹوٹتے رشتے کا بھرم رہ جائے, ایک نظر دیکھ لے اے روٹ کے جانے والے.
0: بہت اچھے بہت اچھے.
1: آ کبھی دیکھ میرا حال جدائی, حال جدائی آ کر.
0: آ کبھی دیکھ میرا حال جدائی آ کر.
1: غیر کی بزم میں اے ہنسنے ہسانے والے.
0: ہاں ہاں ہاں. غیر کی بزم میں اے ہنسنے ہسانے والے. واہ واہ.
1: وقت سے سیکھا ہے میں نے یہ ہنر جینے کا.
0: وقت سے سیکھا ہے میں نے یہ ہنر جینے کا.
1: خود ہی گر جاتے ہیں اور کو گرانے والے.
0: واہ واہ واہ واہ. پھر سے پڑھیے گا.
1: وقت سے سیکھا ہے میں نے یہ ہنر جینے کا.
0: آہا.
1: خود ہی گر جاتے ہیں
0: اوروں کو گرانے والے.
1: تو آپ یہ کہتے ہیں مہربان دل کا ہے نازک یہ ذرا خیال رہے.
0: واہ واہ.
1: مہربان دل کا ہے نازک یہ ذرا خیال رہے, میرے دل پہ نئے زخم لگانے والے.
0: بہت خوب بہت خوب.
1: یہ مہربان امروہی سے ان کی غزل تھی.
0: اس غزل کا پہلا شعر پھر پڑھیے گا, بہت ہی اچھا شعر تھا. مطلب
1: میرے حالات سے منہ موڑ کے جانے والے.
0: میرے حالات سے منہ موڑ کے جانے والے.
1: تجھ سے کچھ پوچھ رہے ہیں آئی خواہ.
0: تجھ سے کچھ پوچھ رہے ہیں یہ زمانے والے. کیا کہنے, خوبصورت ہے. اس کا اگلا, اس سے سیکنڈ والا شعر بھی اچھا تھا, وہ بھی پڑھیے. آواز آواز ملانے والے.
1: دیکھ کر مجھ کو اب راہ بدل لیتے ہیں.
0: آہا کیا کہنے,
1: میری آواز سے آواز
0: ملانے والے. بہت اچھے بہت اچھے. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ پاک آپ کو صحت و سلامت رہے. اللہ حافظ. اور سامعین, ابھی ٹیلی فون لائن پہ ہمارے ساتھ تھے جناب شکیل صاحب. ہمیشہ اسبیال کلام لاتے ہیں اور آپ سبھی کے لیے پیش کرتے ہیں. شکریہ ادا کرتے ہیں ہم ان کا.

और सामिन, अगर आज के इस प्रोग्राम में आप शिरकत करना चाहें तो आप तशरीफ़ ला सकते हैं। स्टूडियो का नंबर आप सभी के लिए हाजिर है 01274306677।

और जी हाँ, रक्स जंजीर पहन कर भी किया जाता है। तू के नावाकफ़ आदाब गुलामी है अभी। और सामिन, अब टेलीफोन लाइन पे हमारे अगले सामिन तशरीफ ला चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम। जंजीर पहन कर भी किया जाता है, तू के नावाकफ़ आदाब गुलामी है अभी। और सामिन, अब टेलीफोन लाइन पे हमारे अगले सामिन तशरीफ ला चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम।

0: शुक्रिया
1: पता
0: अल्लाह का,
1: करिए आप।
0: लाख लाख शुक्रिया एहसान है। सब खैरियत, आप सुनाइए, ठीक है आप?
1: वो अल्लाह का करम है, और माशाल्लाह आप जैसे अनमोल लोगों की माशाल्लाह दुआएं हैं। बिल्कुल मैं ठीक हूँ। अल्लाह ताला आपको अपनी जुमान में रखे। अल्लाह ताला हमारे मुल्क पाकिस्तान और कश्मीर में रहने वाले मुसलमानों की मुहाफ़त फरमाए। तो सबसे पहले तो आपकी पूरी टीम को अथाबिंदी रहने से सलाम पेश करता हूँ, जिनमें हैं हमारे न्यूज ब्रॉडकास्टर हैं पीर सैयद डॉक्टर शाह साहब,
0: जी जी
1: तो उनको बहुत बहुत सलाम। तो मोहतरम शकील साहब आए थे माशाल्लाह, उस्ताद मोहतरम क्या खूबसूरत शायरी लेके आते
0: हमेशा,
1: हैं,
0: हमेशा
1: उनका अंदाज भी इतना खूबसूरत है ना, वो लाजवाब। मैं कहता हूँ कि अब उनके बाद पढ़ना जो होता है ना, वो कहते हैं कि वो
0: सूरज को चिराग दिखाने वाली बात, सही है, ऐसे हमेशा
1: बहुत खूबसूरत अंदाज में वो कहते हैं। अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती वाली जिंदगी अता फरमाए, ऐसे बुजुर्गों का साया हमेशा हमारे सरों पर कायम हो जाए। हमारे तो चौधरी मुजफ्फर साहब हैं, महबूबुल्लाह साहब हैं, चौधरी फयाज साहब है, राना नसीर साहब हैं, और भी जहाँ जहाँ तक आपके माशाल्लाह इतने खूबसूरत और इतने पॉपुलर वीडियो की नशरियात जहाँ जहाँ तक जा रही है, सभी को मेरी तरफ से अथाह दिल की गहराइयों से बहुत बहुत सलाम आदाब।
0: वालेकुम अस्सलाम।
1: तो मैं एक दौरे आगरा के लिए एक गजल लेके आया हूँ छोटी सी, और मैं आपकी तमाम और माताओं की नजर
0: जी जी जी इनायत कीजिए।
1: जहाँ से सर मैं अपने सारे मोहतरम से भी जाद चाहता हूँ, क्योंकि उनके सामने उनकी मुझे पढ़ना जो होता है वो मेरे लिए तो यकीन करें कि मैं आपको भी घबरा चाहता हूँ कि सालों के सामने कैसे पढ़ूँ।
0: जी जी बहुत शुक्रिया आप।
1: क्या लिखते हैं? सर झुकाए हुए सरदार नहीं हो सकते।
0: सर झुकाए हुए सरदार नहीं हो सकते,
1: मांगने वाले मददगार नहीं हो सकते।
0: क्या कहने, क्या कहने, हस्बे हाल शेर है। वाह वाह वाह वाह वाह, फिर से पढ़िएगा। वाह वाह,
1: बहुत शुक्रिया सर। वादा करता हूँ, सर झुकाए हुए सरदार नहीं हो सकते, मांगने वाले मददगार नहीं हो सकते।
0: हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ, कहते हैं ना कि साहिल के तमाशाई हर डूबने वाले पर अफसोस तो करते हैं, इमदाद नहीं करते।
1: वाह वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, क्या खूब कहा है आपने। शेर अगले चापन
0: जी जी इनायत।
1: जिस पे एक खेमे की बुनियाद ना रखी जाए, वो किसी मुल्क के ममार नहीं हो सकते।
0: क्या कहने, खुद जिनकी हथेली में हूँ सोराख हजारों, खुद जिनकी हथेली में हूँ सोराख हजारों, वो देना भी चाहे तो क्या देंगे किसी को।
1: सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या कह दो मुझे काका, आपने पकड़ लिया, उसी के बाद क्या करेंगे।
0: सही।
1: तो शेर अली बच्चा साहब, तुम तमाते हुए सितारों से शिकायत क्या की।
0: आहा,
1: खुद कभी बासी और नवार नहीं हो सकते।
0: बहुत अच्छे, फिर से पढ़िए। गवा वा
1: तमाते हुए सितारों से शिकायत कैसी, खुद कभी बासे इनवार
0: नहीं हो सकते।
1: अपनी मुस्कान को नफरत में छिपाने वाले,
0: आहा,
1: हम तेरे पैर के फनकार नहीं हो सकते।
0: बहुत अच्छे, बहुत अच्छे।
1: मेरे किरदार की हर खास उजागर करके,
0: आहा,
1: आप उसे भी किरदार नहीं हो सकते।
0: क्या कहने, क्या कहने,
1: वो जो चाहे तो अबादील को कर दे जंगजू।
0: आहा,
1: हम तो इंसान है, बेकार नहीं हो सकते,
0: बेकार नहीं हो सकते, बेशक।
1: आखिरी शेर है आपकी सुनाते भी नजर करना चाहता हूँ शाह साहब, मेरी जन्नत मेरे दोस्त पे शुक्र है मौला, मेरे बंदे मेरे मुख्तार नहीं हो सकते।
0: बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। कहते हैं ना कि दस्तार के हर पेज की तहकीक है लाजम, मेरे बड़े भाई का फेवरेट शेर, के दस्तार के हर पेज की तहकीक है लाजम, हर साहिब किरदार मुअज्जज़ नहीं होता। और तुमने, तुमने इस मट्टी में इंसानों के सर बोए हैं, तुमने इस मट्टी में इंसानों के सर बोए हैं, अब जमी खून उगलती है तो शिकवा कैसा।
1: सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। अगर अगर आप तो प्लीज माना करो तो इसको दोबारा प्लीज आप मुकर्रर कर सकते हैं
0: कि तो
1: भी खूबसूरत आपने
0: तुमने तुमने इस मट्टी में इंसानों के सर बोए हैं, तुमने इस मट्टी में इंसानों के सर बोए हैं, अब जमी खून उगलती है तो शिकवा कैसा।
1: सुभान अल्लाह, क्या बात, ये क्लाइंट बनती है चाचा साहब के लिए। वाह वाह वाह,
0: अल्लाह सलामत रखे, सलामत रखे,
1: अल्लाह तआला आपको सलामत रखे।
0: ये शायरी दिल से निकलती है, ये कहीं नहीं जाती, ये दिल से ये चीजें आती हैं, ज़हन में जाहिर है मौजूद हैं, लेकिन ये हालात इस तरह के बना दिए गए हैं कि जहाँ प्यार मोहब्बत होता है वहाँ नफरतें बांटी जा रही हैं, और जहाँ नफरतें बांटनी चाहिए वहाँ प्यार मोहब्बत दिया जा रहा है। और जो दूसरों के ऑर्डर लेने के पाबंद है वो आजकल ऑर्डर दे रहे हैं, तो उनकी क्या कह सकते हैं, हम क्या कह सकते हैं, अल्फाज साथ नहीं देते कि جنہیں دوسروں کے تابعداری کی جاب ہے کہ آپ نے سننا ہے کہ آپ کو کیا حکم دیا جاتا ہے،

वो बजाय इसके कि वो हुक्म सुने, वो हुक्म सुना रहे हैं। यही तो हमारी बदकिस्मती है कि हमें हमें 80 सालों से भेड़िए जो है नोच के इस मुल्क को खा रहे हैं, हमारे भेड़ियों के रूप में बैरूपिए, हमारे बैरूपिए हमें खा गए हैं, और अब इनके चेहरे खुल के सामने आते जा रहे हैं कि किस तरह ये इस मुल्क के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं ये। अल्लाह इन्हें तबाह बर्बाद करे, जो जो हमारे इस पाक धरती पाक पाकिस्तान और पाक कश्मीर पे जो जुल्म कर रहे हैं, अल्लाह पाक इन्हें निस्तो नाबूद करे और इन्हें इनकी मिसालें दुनिया दे इंशाल्लाह एक दिन आएंगे। हमारे इनके सामने क्या मिसालें नहीं है कि जो जो जिस जिसने इससे पहले इस मुल्क को नोचा उनके साथ क्या हुआ, किसी को कहाँ आग लगी और कोई कहाँ, आज उनका नाम लेने वाला कोई नहीं है, शर्म आती है, उनकी औलादें उनका नाम नहीं ले रही, तो ये किस बात की मूल्य है। वो अपने है ना अनवर मकसूद साहब कराची वाले, तो वो बड़ी अच्छी एक बात उनकी तहरीर आजकल सामने है सोशल मीडिया पे लिखते हैं कि देखें कि मिस्र का जो फिरौन था उसकी वजह से मिस्र को अरबों डॉलर्स का नुकसान फायदा हो रहा है, और हमारे जो फरवाने या हमारे उल्टा खा रहे हैं। जी जी बहुत शुक्रिया आपका अदा करते हैं, सलामत रहें, तशरीफ लाते रहिएगा, अल्लाह पाक आपको भी सेहत और सलामत रखे। अल्लाह हाफिज़।

0: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक, आटा चावल दालें मसाला जात, रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड ब्रेडफोर्ड BD88JL। बुखारी पसंद आपकी और हमारी बुखारी। दुल्हन वो जो पिया मन भाए,
1: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
0: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां कंगन कांटे,
1: बालियां अंगूठियां और हार,
0: जो दुल्हन करे सिंगार,
1: आज ही मामू काके की दुकान,
0: खालिस सोने की पहचान,
1: पाकिस्तान ज्वेलर्स से शरीफ लाइए
0: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
1: आपकी शान
0: हमारी आन,
1: क्वालिटी की पहचान।
0: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Dufferin Lane ब्रेडफोर्ड, BD95ER, 01274491442।
1: पाकिस्तान ज्वेलर्स। अरे बेटी की शादी करीब आ रही है, समझ नहीं आ रही कि जेवर कहाँ से लूँ।
2: अरे भोली, तुम्हें नहीं पता कि सोफी बहन ने ऑकलैंड पर सोफी ज्वेलर्स के नाम से गोल्ड जेवरात की दुकान खोल दी है।
1: सोफी ज्वेलर्स?
2: सोफी नहीं, सोफी, नित नए डिजाइन के जेवरात, जिनकी क्या है बात, इंश्योरेंस और वैल्यूएशन का भी इंतजाम, लेडी स्टाफ।
1: सोफी ज्वेलर्स, 1 Dufferin Lane BD94QU, 01274056014। सोफी ज्वेलर्स, आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
3: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
1: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
3: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
4: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।
5: You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
6: Listen on your PC or laptop, the best Asian music online.

मैंने अब तक तुम्हारे कसीदे लिखे, मैंने अब तक तुम्हारे कसीदे लिखे और आज अपने नगमों से शर्मिंदा हूँ। मैंने अब तक तुम्हारे कसीदे लिखे और आज अपने नगमों से शर्मिंदा हूँ। अपने शेरों की हुरमत से हूँ मुनफ़इल, अपने फन के तकाजों से शर्मिंदा हूँ। मैंने अब तक तुम्हारे कसीदे लिखे और आज अपने नगमों से शर्मिंदा हूँ। अपने शेरों की हुरमत से हूँ मुनफ़इल, अपने फन के तकाजों से शर्मिंदा हूँ। बाबा जंजीर यारों से नादम हूँ मैं, अपने दिलगीर प्यारों से शर्मिंदा हूँ। जब कभी मेरी दिल ज़दा खाक पर सायाए गैर या दस्ते दुश्मन पड़ा, जब भी कातल मुकाबल सफारा हुए, सरहदों पे मेरी जब भी रन पड़ा, मेरा खून ने जिगर था कि हरफे हुनर नजर मैंने किया मुझसे जो बन पड़ा। आंसुओं से तुम्हें अलविदाएं कहीं, रिज़्म-गाहों ने जब भी पुकारा तुम्हें, तुम जफरमंद तो खैर क्या लौटते, हारने पे भी ना जीत से उतारा तुम्हें। तुमने जा के इवज़ आबरू बेच दी, हमने फिर भी किया है गवारा तुम्हें। सीना चाकाने मशरक भी अपने ही थे, जिनका खून मुंह पे मलने को तुम आए थे, ममताओं की तकदीस को लूटने या बगावत कुचलने को तुम आए थे। उनकी तकदीर तुम क्या बदलते, मगर उनकी नस्लें बदलने को तुम आए थे। उसका अंजाम जो हुआ सो हुआ, शब गई ख्वाब नीम, उसका अंजाम जो हुआ सो हुआ, शब गई ख्वाब तुमसे परेशान हुए, किस जलालो रौनियत से वारद हुए, किस खजालत से तुम सुए जिंदा गए। तेग दर दस्त कफ दर वहां आए थे, तोक दर गदना पाबा जोलां गए। फिर भी मैंने तुम्हें बेखता ही कहा, खलकते शहर की दिलदही के लिए, अपनी बे आसरा खाक के वास्ते, अपने बे आस लोगों के जी के लिए। गो मेरे शहर जख्मों के मरहम न थे, फिर भी एक सही चारा गरी के लिए। और याद होंगे तुम्हें वो अय्याम भी, तुम असीरी से जब लौट कर आए थे, हम दरीदा जिगर रास्तों पे खड़े, अपने दिल अपनी आंखों में भर लाए थे, अपनी तहकीर की तलखियां भूलकर तुम पे तोकीर के फूल बरसाए थे। क्या खबर थी कि तुमसे शिकस्ता ना, अपने जख्मों को बस चाटने आएंगे, जिनके जबड़ों को अपनों का खून लग गया, जुल्म की सब हदें पाटने आ गए। और मर गए बंगाल के बाद बोलान में, शहरियों के गले काटने आ गए। आज सरहद से पंजाबो मैरान तक तुमने मक्तल सजाए हैं क्यों गाजियों, इतनी गारत गरी किसकी इमां पे है, किसके आगे हो तुम सर नगूं गाजियों। किस शहनशाह आली का फरमान है, किसकी खातर है ये कश्तो खून गाजियों। क्या खबर थी कि है शपरक जिंदगां, तुम मलामत बनोगे शबदार की, कल भी गासिब के तुम तख्त परदार थे, आज भी पासदारी है दरबार की। एक आमर की दस्तार के वास्ते, सबकी शहरग पे है नोक तलवार की। क्या ही खूबसूरत शेर की, एक आमर की दस्तार के वास्ते, सबकी शहरग पे है नोक तलवार की। और तुमने देखे हैं झम्मूर के काफले, तुमने देखे हैं जम्मूर के काफले, उनके हाथों में परचम बगावत के हैं, पपड़ियों पे जमी पपड़ियां खून की, कह रही हैं कि ये मंजर कयामत के हैं। कल तुम्हारे लिए प्यार सीनों में था, अब जो शोले उठे हैं वो नफरत के हैं। आज शायर पे भी कर्ज मट्टी का है, अब कलम में लहू है स्याही नहीं। खोल उतरा तुम्हारा तो साबित हुआ, पेशावर कातलो तुम सिपाही नहीं।

हबीब जालब ने क्या ही खूब कहा था कि मुत्तहिद हो के बदल डालो निजामे गुलशन, मुत्तहिद हो के बदल डालो निजामे गुलशन, मुंतशिर हो तो मरो शोर मचाते क्यों हो।

0: ये वादियों का काफिला रवा दवा रवा रहे
1: रवा दवा रवा रहे
0: वतन का पास।

जहाद अपने घर का घर लिए, हसन का हौसला लिए, हुसैन का जिगर लिए, बड़े कदम जहां जहां वहां वहां अमा रहे, ये बाजियों का काफिला रवा दवा।

रजिया सामिन, आज का ये प्रोग्राम हम अपने उन भाइयों के नाम करते हैं जो पूरे कश्मीर से काफले रवानदवा हैं रावलाकोट की तरफ, और फिर उनका उससे अगला पड़ाव होगा मुजफ्फराबाद। अल्लाह पाक उन सब की हिफाजत फरमाए जो अपने हुकूक के लिए निकले हैं, और ना ही वो कोई तहरीक है और ना ही वो किसी के मुखालिफ हैं, वो सिर्फ और सिर्फ अपने हुकूक मांग रहे हैं, और हुकूक मांगना उनके लिए जुर्म बना दिया गया है। अल्लाह पाक जराइम पेशा जथे से उनकी हिफाजत फरमाए जो कि कुछ भी ड्रामा कर सकते हैं, उनसे कुछ भी बईद नहीं है। बहुत सी दुआओं के साथ के अल्लाह पाक हमारे प्यारे पाकिस्तान और हमारे प्यारे कश्मीर की हिफाजत फरमाए और जराइम पेशा लोगों से इसे महफूज फरमाए। बहुत सी दुआएं जो इस वक्त इस गर्म मौसम में खुले आसमान तले अपने हकूक के लिए धरना देके बैठे हैं, अल्लाह पाक उनकी हिफाजत फरमाए। बहुत सी दुआओं के साथ आज के इस प्रोग्राम से आप सभी सुनने वालों से इजाजत चाहते हैं। ये अपना हुस्ने जनू था कि हम जहां पहुंचे, ये अपना हुस्ने जनू था कि हम जहां पहुंचे, खिजां को मौसम में गुल में बदल के आए हैं।

0: to the winner is...
1: And the winner is...
2: And the winner is...
0: Your business being heard on the radio.
3: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
4: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिलनवाज,
5: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
4: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
5: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
6: ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो।
7: आओ असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चले।
8: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं।
7: अरे पगली, अब दुबई ब्रैडफोर्ड में ही आ गई। जी हाँ, दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है।
8: झिलमिल करते कांटे, बालियां, कंगन, गले के हार 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार।
7: टॉप क्वालिटी, बेहतरीन सर्विस, ओपन 7 डेज।
8: 30 वेटले हिल ब्रैडफोर्ड, BD8 8NG, फोन 01274477257। दुबई ज्वेलर्स,
7: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका। पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक। आटा, चावल, दालें, मसाला जात, रोजाना ताज़ा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे। फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर, नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड, ब्रैडफोर्ड, BD8 8JL। बुखारी, पसंद आपकी और हमारी बुखारी।
9: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
8: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रैडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
7: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रैडफोर्ड, BD8 8DR, टेलीफोन 07885 428 349, अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड रोड।

0: Master Jewelers, 93 Hotham Grange Road, Bradford 7414760।
1: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
2: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
1: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो, और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
3: क्या आपकी आवाज़ खूबसूरत है? क्या आप में बोलने की जरूरत है? अगर ऐसी ही सूरत है तो ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो को आपकी जरूरत है। आज ही स्टूडियो नंबर 01274।

0: listening to Bradford Asian Radio.
1: 1413 AM and online. You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
2: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
3: And the winner is...
4: And the winner is...
5: And the winner is...
3: Your business being heard on the radio.
6: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
7: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेश खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक, आटा चावल दालें मसाला जात, रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की खुआरी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड ब्रेडफोर्ड BD88JL। बुखारी पसंद आपकी और हमारी बुखारी। दुल्हन वो जो पिया मन भाई,
8: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
7: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां कंगन कांटे,
8: बालियां अंगूठियां और हार,
7: जो दुल्हन करे सिंगार,
8: आज ही मामू काके की दुकान,
7: खालिस सोने की पहचान,
8: पाकिस्तान ज्वेलर से शरीफ लाइए
7: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
8: आपकी शान
7: हमारी आन,
8: क्वालिटी की पहचान।
7: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Dufferin Lane ब्रेडफोर्ड, BD95VR 01274 491 442।
8: पाकिस्तान ज्वेलर्स। अरे बेटी की शादी करीब आ रही है, समझ नहीं आ रही कि जेवर कहाँ से लूँ।
9: अरे भोली, तुम्हें नहीं पता कि सोफी बहन ने ऑकलैन पर सोफी ज्वेलर्स के नाम से गोल्ड जेवरात की दुकान खोल दी है।
8: सोफी ज्वेलर्स?
9: सोफी नहीं, सोफी। नित नए डिजाइन के जेवरात, जिनकी क्या है बात, इंश्योरेंस और वैल्यूएशन का भी इंतजाम, लेडी स्टाफ।
8: सोफी ज्वेलर्स, 121 Oak Lane, BD94QU, 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
10: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers, or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274 201 679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.
7: अरे ये पूरे ब्रेडफोर्ड में क्या है शोर?
11: आपको नहीं पता, ऑफर्स इन मेनी गो स्टोर, रोजाना ताजा सब्जियां, फल फ्रूट, सलाद, मीट, चिकन, आटा, दाल, चावल और मसाला, क्वालिटी में सबसे आला और सर्विस में सबसे भाला।
7: हर समत मचा है जिसका शोर, वो है मैनिंगम सुपर स्टोर। मैनिंगम सुपर स्टोर, कार्लाइल रोड ब्रेडफोर्ड, BD88AX, फोन ब्रेडफोर्ड 4955555। हफ्ते के सातों दिन आपकी खिदमत में पेश। मैनिंगम सुपर स्टोर।
11: मैनिंगम सुपर स्टोर,
12: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिलनवाज,
7: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
12: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
7: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
13: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।
1: You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
2: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
0: You're listening to Bradford Asian Radio,
1: the Hindi Urdu music show on Bradford Asian Radio.
14: बागों में बाहर है?
15: हैं?
14: मैंने पूछा बागों में बाहर है?
15: हैं?
14: कदमों पे निहार है? तो
15: तुमको मुझसे प्यार है?

0: सोमवार
1: है,
0: आज सोमवार है, तुमको मुझसे प्यार है।
2: दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
3: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
2: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
3: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
4: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: अजान का वक्त हुआ चाहता है इस अजान के लिए हमें तावन हासिल है कूपर हॉल सोलिसिटर्स लिस्टर हिल्स साइंस पार्क कैंपस रोड ब्रेडफोर्ड BD71HR
1: अजान दे गई हजरत बिलाल की हस्ती अजान दे गई हजरत बिलाल की हस्ती नमाज पढ़ गए दुनिया में करबला वाले सामीन ब्रेडफोर्ड और इसके मुज़ाफ़ात में अजान का वक्त हुआ चाहता है।

أشهد أن لا

0: You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
1: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
2: You're listening to Bradford Asian Radio,
0: 1413 AM and online.
3: You're listening to
4: Bradford Asian Radio on 1413 AM.
5: And the winner is...
6: Your business being heard on the radio.
7: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
8: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिलनवाज,
9: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
8: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
9: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
10: ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो।
11: आओ, असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चले।
12: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं।
11: अरे पगली, अब दुबई ब्रैडफोर्ड में ही आ गई। जी हाँ, दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है।
12: झिलमिल करते कांटे, बालियां, कंगन, गले के हार 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार।
11: टॉप क्वालिटी, बेहतरीन सर्विस, ओपन 7 डेज।
12: 30 वेटले हिल, ब्रैडफोर्ड, BD8 8NG, फोन 01274 477 2577। दुबई ज्वेलर्स,
11: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका। पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक। आटा, चावल, दालें, मसाला जात, रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे। फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की खुआरी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर, नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड, ब्रैडफोर्ड, BD8 8JL। बुखारी, पसंद आपकी और हमारी बुखारी।
13: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
12: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रैडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
11: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रैडफोर्ड, BD8 8DR। टेलीफोन 07885 428 3499। अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड रोड, ब्रैडफोर्ड 3।

0: Master Jewelers, 93 Hawthorne Grange Road, Bradford 7, 01274-414-760.
1: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
2: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
1: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग्स, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
3: Do you know there are 170,000 new cases of cancer each year in Pakistan? Do you know that Imran Khan Cancer Appeal provides free cancer treatment to 75% of its patients? Do you know that the third specialist Shaukat Hanum Cancer Hospital is being built in Karachi? We need your support more than ever now. Please donate today by calling 01274 424444 or donate online at ikca.org.uk.
4: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिलनवाज,
5: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
4: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
5: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
6: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।
7: You're listening to Bradford Asian Radio,
8: 1413 AM and online.
7: You're listening to Bradford Asian Radio,
8: the Hindi Urdu music show on Bradford Asian Radio.

0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: listening to Bradford Asian Radio.
1: 1413 AM and online. You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
2: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
3: And the winner is...
4: And the winner is...
5: And the winner is...
3: Your business being heard on the radio.
6: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
7: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक, आटा चावल दालें मसाला जात, रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड, ब्रेडफोर्ड, BD88JL। बुखारी पसंद आपकी और हमारी बुखारी। दुल्हन वो जो पिया मन भाई,
8: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
7: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां कंगन कांटे,
8: बालियां अंगूठियां और हार,
7: जो दुल्हन करे सिंगार,
8: आज ही मामू काके की दुकान,
7: खालिस सोने की पहचान,
8: पाकिस्तान ज्वेलर से शरीफ लाइए
7: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
8: आपकी शान
7: हमारी आन,
8: क्वालिटी की पहचान।
7: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Dufferin Lane, ब्रेडफोर्ड, BD95VR, 01274491442।
8: पाकिस्तान ज्वेलर्स। अरे बेटी की शादी करीब आ रही है, समझ नहीं आ रही कि जेवर कहाँ से लूँ।
9: अरे भोली, तुम्हें नहीं पता कि सोफी बहन ने ऑकलेन पर सोफी ज्वेलर्स के नाम से गोल्ड जेवरात की दुकान खोल दी है।
8: सोफी ज्वेलर्स?
9: सोफी नहीं, सोफी, नित नए डिजाइन के जेवरात, जिनकी क्या है बात, इंश्योरेंस और वैल्यूएशन का भी इंतजाम, लेडी स्टाफ।
8: सोफी ज्वेलर्स, 121 Oak Lane, BD94QU, 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
7: ब्रेडफोर्ड में फर्नीचर का सबसे खूबसूरत शोरूम लव फर्नीचर।
10: फर्नीचर तो आप घर घर देखते हैं, मगर जो देखते ही पसंद आ जाए वो है लव फर्नीचर, जहाँ पर ऑर्थोपेडिक डबल बेड सिर्फ 100 pounds से, जर्मन वार्डरोब, डाइनिंग टेबल, कॉफी टेबल, रग्स, कारपेट, मैट्रेसेस की वसी वैरायटी।
11: ओपन 7 days, 10 till 6, फ्री डिलीवरी ऑल ओवर वेस्ट यॉर्कशायर। लव फर्नीचर, कार्लाइल रोड, ब्रेडफोर्ड, अपोजिट बार्कलेज बैंक, फोन ब्रेडफोर्ड 9627222, 9627222।
10: लव फर्नीचर, फर्नीचर यू लव।
12: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
13: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
12: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
13: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
14: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।
1: You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
2: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
1: You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
2: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.

0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.

0: listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
1: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
2: You're listening to Bradford Asian Radio,
0: 1413 AM and online.
3: You're listening to
4: Bradford Asian Radio on 1413 AM.
3: And the winner is...
5: And the winner is...
6: And the winner is...
3: Your business being heard on the radio.
7: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
8: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिलनवाज
9: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज
8: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज
9: हर वक्त आपके संग आपका दम साज
10: ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो मीडियम वेव 1413 AM ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो
11: आओ असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चले
12: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं
11: अरे पगली अब दुबई ब्रैडफोर्ड में ही आ गई जी हाँ दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है
12: झिलमिल करते कांटे बालियां कंगन गले के हार 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार
11: टॉप क्वालिटी बेहतरीन सर्विस ओपन 7 डेज
12: 30 वेटले हिल ब्रैडफोर्ड BD8 8NG फोन 01274477257 दुबई ज्वेलर्स
11: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक आटा चावल दालें मसाला जात रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट हलाल गोश्त और चूजे फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले बचिए इधर उधर की ख्वारी से शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक व्हाइट एबी रोड ब्रैडफोर्ड BD8 8JL बुखारी पसंद आपकी और हमारी बुखारी
13: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है
12: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा मिलान की शेरवानी शलवार कमीज वेस्ट कोट प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं मर्दाना मलबूसात का ब्रैडफोर्ड का मुनफरिद मरकज जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे
11: मिलान दुल्हा हाउस 8183 व्हाइट एबे रोड ब्रैडफोर्ड BD8 8DR टेलीफोन 07885428349 अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम 1304 लीड रोड ब्रैडफोर्ड 3

0: Master Jewelers, 93 Hotham Grange Road, Bradford 7414760.
1: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
2: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
1: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग्स, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078। शादी आ गई है सर पर और कोई फोटोग्राफर नहीं है घर पर।
2: लगता है आपने एशियन वेडिंग्स UK.com का नाम नहीं सुना, जो आपकी शादी के चलते फिरते हसीन लम्हात हमेशा के लिए।
3: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो ऑन 1413 AM।

0: You're listening to Bradford Asian Radio.
1: 1413 AM and online. You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
2: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
3: And the winner is...
4: And the winner is...
5: And the winner is...
3: Your business being heard on the radio.
6: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
7: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेश खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। ऑल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक। आटा, चावल, दालें, मसाला जात, रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे। फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की खुआरी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर, नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड, ब्रेडफोर्ड, BD88JL। बुखारी, पसंद आपकी और हमारी बुखारी। दुल्हन वो जो पिया मन भाई,
8: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
7: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां, कंगन, कांटे,
8: बालियां, अंगूठियां और हार,
7: जो दुल्हन करे सिंगार,
8: आज ही मामू काके की दुकान,
7: खालिस सोने की पहचान,
8: पाकिस्तान ज्वेलर से शरीफ लाइए
7: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
8: आपकी शान
7: हमारी आन,
8: क्वालिटी की पहचान।
7: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Dufferin Lane, ब्रेडफोर्ड, BD95ER, 01274491442।
8: पाकिस्तान ज्वेलर्स। अरे बेटी की शादी करीब आ रही है, समझ नहीं आ रही कि जेवर कहाँ से लूँ।
9: अरे भोली, तुम्हें नहीं पता कि सोफी बहन ने ऑकलैंड पर सोफी ज्वेलर्स के नाम से गोल्ड जेवरात की दुकान खोल दी है।
8: सोफी ज्वेलर्स?
9: सोफी नहीं, सोफी, नित नए डिजाइन के जेवरात, जिनकी क्या है बात, इंश्योरेंस और वैल्यूएशन का भी इंतजाम, लेडी स्टाफ।
8: सोफी ज्वेलर्स, 1 Dufferin Lane, BD94QU, 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
10: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers, or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274-201-679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.
11: Are you looking for nursery and after-school childcare in Bradford? Established in 2012, Raising Explorers provides outstanding childcare and education for children aged 0 to 16 years, all under one roof. From full-day nursery care for babies and young children, to after-school pickups, homework support and exciting holiday clubs, language classes, madrasa services, with locations in Manningham, Lister Hill Science Park, Thornbury and Hare Hills Leeds, Raising Explorers. Visit www.raisingexplorers.co.uk.
12: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिलनवाज,
13: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
12: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
13: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
14: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।
1: You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
2: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
3: You're listening to
15: Bradford Asian Radio on 1413 AM.

0: You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
1: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
2: You're listening to Bradford Asian Radio,
0: 1413 AM and online.
3: You're listening to
4: Bradford Asian Radio on 1413 AM.
3: And the winner is...
5: And the winner is...
6: And the winner is...
3: Your business being heard on the radio.
7: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
8: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
9: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
8: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
9: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
10: ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो।
11: आओ असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चलें।
12: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं।
11: अरे पगली, अब दुबई ब्रैडफोर्ड में ही आ गई। जी हाँ, दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है।
12: झिलमिल करते कांटे, बालियां, कंगन, गले के हार 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार।
11: टॉप क्वालिटी, बेहतरीन सर्विस, ओपन 7 डेज।
12: 30 वेटले हिल, ब्रैडफोर्ड, BD8 8NG, फोन 01274 477 2577।
11: दुबई ज्वेलर्स, व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका। पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक। आटा, चावल, दालें, मसाला जात, रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे। फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर, नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड, ब्रैडफोर्ड, BD8 8JL। बुखारी, पसंद आपकी और हमारी बुखारी।
13: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
12: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रैडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
11: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रैडफोर्ड, BD8 8DR। टेलीफोन 07885 428 349। अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड रोड, ब्रैडफोर्ड 3।

0: Master Jewelers, 93 Hawthorne Grange Road, Bradford 7, 01274-414-760.
1: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
2: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
1: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग्स, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
3: हिसाबे उम्र का इतना सा गोशवारा है, तुम्हें निकाल के देखा तो सब खसारा है। मैं महमूद रिज़वी अकाउंटेंट्स, जी हाँ, छोटे से छोटे टैक्सी अकाउंट से लेकर बड़ी से बड़ी कंपनी के अकाउंट्स बनवाने के लिए काबिले एतमाद नाम महमूद रिज़वी अकाउंटेंट्स। ऑडिट एंड अकाउंटेंसी, टैक्सेशन, VAT, बुककीपिंग, पेरोल, फंडरेजिंग, कंपनी फॉर्मेशन, मॉर्गेजेस, अकाउंट्स के किसी भी मसले के लिए ना हो परेशान, क्योंकि आपकी मुश्किल करेंगे आसान महमूद रिज़वी चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट्स। महमूद रिज़वी, ग्रेट हॉटन रोड, ऑन ब्रैडफोर्ड, 424453। महमूद रिज़वी,
4: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
5: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
4: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
5: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
6: ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो।
7: You're listening to Bradford Asian Radio,
8: 1413 AM and online.
9: You're listening to Bradford Asian Radio on 1413 AM.